हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नहीं अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकहिना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6 बजने वाले हैं और अब समाचार का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

श्री गणपति आराधना के बाद आइए सुने प्रभु श्री शिव भगवान को समर्पित ये भजन।

0: आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर 6:30 हुए हैं। और अब आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है खेती के साथ पशुपालन से अतिरिक्त आय के अवसर, वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का।
1: आज के हमारे विषय है खेती के साथ बकरी का। संगी हुआ राम राम, जय जोहार। आपने सुना था कार्यक्रम खेती के बाद, संगी हुआ खेती के बाद कार्यक्रम में हम किसान भाई बहनी मन बर खेती किसानी बर नवा नवा तकनीक के जानकारी लेके आथन। आज के हमार विषय हवा खेती के संग बकरी गाय और भैंस पालन ले अतिरिक्त आय के अवसर। आवा जानिन कैसे खेती के संग पशुपालन अपना के किसान मन अपन आमदनी ला बढ़ा सकत है। तसंगी हुआ आज के समय में सिर्फ खेती ऊपर निर्भर रहना अब आसान नहीं है। मौसम के बदलाव, फसल के दाम में उतार चढ़ाव और प्राकृतिक आपदा के कारण कई बेर किसान मन ला नुकसान हो जाते। एकरे से तीर खेती के संगे संग पशुपालन करना अतिरिक्त आय के बढ़िया जरिया बन गए। अगर किसान अपन खेती के संग बकरी गाय या भैंस पालन करत है तब उला साल भर कुछ न कुछ आमदनी होवत रही थे। एला हमन मिश्रित खेती कही सकत हन, जेन में खेती और पशुपालन दोनों एक दूसर के सहयोग करते। सबले पहली बात करबो बकरी पालन के। संगी हुआ बकरी ला गरीब मन के ATM घलो कहे जाते, काबर की बकरी पालन बर बहुत ज्यादा जमीन या पूंजी के जरूरत नहीं पड़े। दो चार बकरी ले घलो शुरुआत हम कर सकत हन। बकरी के दूध के मांग बढ़त जावत है, एकर बर एकर दाम भी बहुत अच्छा मिलते। और तिहार शादी बिहार ए समय में बकरी के कीमत और बढ़ जाते। और दूसर बात करबो कि बकरी है बहुत जल्दी जल्दी बच्चा देते, एकर से ओकर संख्या भी बहुत जल्दी बढ़ते और आमदनी में फिर बढ़ोतरी होते। अब बात करबो गाय के। गाय हर किसान ला दूध के संगे संग गोबर और गोमूत्र घलो देते। दूध बेच के रोज के नगद आमदनी हो सकत है। गोबर ला जैविक खाद बना के खेत में प्रयोग कर सकत हन और एकर से रासायनिक खातु के खर्चा कम होते। और किसान गोबर ले वर्मी कंपोस्ट गोबर गैस बना के अतिरिक्त आमदनी कर सकत है। अब बात करबो भैंस पालन के। तो भैंस के दूध में वसा ज्यादा होते, फैट जिला कथन, एकर से डेयरी में अच्छा दाम मिलते। अगर किसान के इलाका में दूध के मांग ज्यादा है तब भैंस पालन बहुत लाभकारी साबित होते। संगी हुआ खेती और पशुपालन एक दूसर के पूरा खावे। खेत से निकले भूसा पराली और हरा चारा पशु मन के भोजन बन गए। अब पशु मन ले निकले गोबर गौमूत्र एहर बढ़िया जैविक खाद बन गए। एकर से खेती के लागत भी कम होते और जमीन के उर्वरता के क्षमता भी बढ़ते। तहिया जमाना ला सुरता करा हमार बाबा दाई मन हर घर में गरुआ रखना जरूरी रहे और घर के कोंटा में घुरुआ बने रहे। ओमा जम्मो गोबर ला डालन, गौमूत्र ला डालन और घर के बाचे खोचे कचरा भी ला डालन और तहां गर्मी में गाड़ा फंदाए और जम्मो जन खातू डालत रहे, तभे बढ़िया खेती और सार गर्भित खेती हुआ। अगर किसान मन अपन खेत के किनारे में नेपियर घास या बरसीम और हरा चारा लगाते हैं तब पशु मन पर तो साल भर में चारा के व्यवस्था हो जाते। आज शासन के तरफ से घलो पशुपालन ला बढ़ावा दे जाते। पशु टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, डेयरी के विकास, पशुपालन प्रशिक्षण और कई प्रकार के योजना के माध्यम ले किसान मन ला सहायता मिला थे। ये योजना के जानकारी अपन नजदीक के पशु चिकित्सा अस्पताल, पशु विकास विभाग या कृषि विभाग ले आपन प्राप्त कर सकत हो। और सबले ज्यादा अच्छा जानकारी आप रेडियो के माध्यम ले प्राप्त कर सकत हो। तो चेत करके रोज रेडियो सुना और बढ़िया बढ़िया जानकारी अपन मोटरी गठरी में गठियावाओ। तो संगी हुआ पशुपालन में सफल हो बर कुछ बात के ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि बढ़िया नस्ल के पशु हुआ, समय समय में टीका और इलाज करवावा, साफ सफाई के विशेष ध्यान रखा, संतुलित आहार पर्याप्त पानी देवा और दूध दुहाई या पशु के देखभाल के सही तरीका अपनावा। किसान ये बात मन लग के पालन करत है तो निश्चित रूप से खेती के संग पशुपालन ले अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकत है। तो संगी हुआ छोटे स्तर ले शुरुआत करके घलो बड़े काम करे जा सकत है। आज कई किसान खेती के संग बकरी और गाय भैंस पालन करके अपन परिवार के आर्थिक स्थिति ला मजबूत बनावत है। तो संगवारी हुआ खेती के बाद कार्यक्रम में हम जानें कि खेती के संग बकरी गाय भैंस पालन करके

0: कैसे अतिरिक्त आय कमाया जा सकत हे। खेती के बात मा आज अतके, कल नवा विषय के संग फिर भेंट होही। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
1: खेती के बाद अभी आपने सुना वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 6:35 हुए हैं और अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कविश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड गुरु रूप श्री शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीय का बालचंद्र, कंठ में हलाहल विष तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। भस्म से विभूषित शरीर, देवताओं में श्रेष्ठ, संहारकर्ता तथा भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापी, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हों। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और धनुष शोभित हैं, उन रघुवंशनाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।

श्री रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। और अब आइए सुनते हैं आज का चिंतन।

आधुनिक काल में सेवा शब्द का जितना दुरुपयोग हुआ है और होता है उतना कभी नहीं हुआ। बात बात में लोग सेवा का मौका देने की बात करते हैं। किसी भी प्रकार का चुनाव हो, शिक्षा संस्थानों में छात्र संघ के चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक के चुनावों में सेवा शब्द का बोलबाला रहता है। सभी उम्मीदवार आपसे सेवा का एक मौका चाहते हैं। कम चतुर उम्मीदवार कहता है, मुझे सेवा करने का एक मौका दीजिए, और अधिक चतुर उम्मीदवार कहेगा, सेवा का मौका दें। मात्र इतना कहने से यह समझ में नहीं आता कि उम्मीदवार अपनी सेवा करने का मौका चाह रहा है या जिस व्यक्ति से वोट मांग रहा है उसकी सेवा करने का। और यह तो जग जाहिर ही है कि इस प्रकार की सेवा के मौके की मांग करने वाले लोग अधिकांशतः अपनी ही सेवा करते हैं। सेवा शब्द जितनी सहजता से मुख से उच्चारित होता है उसको कार्य रूप में उतारना उतना ही कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास तो यहां तक कह देते हैं कि सबते सेवक धर्म कठोरा, अर्थात सबसे कठोर यदि कोई बात है तो वह है सेवक धर्म। सेवा भावी संस्थाएं जानती हैं कि सेवा कार्यों का संचालन कैसा कठिन होता है। सेवा में साधन जुटाने की कठिनाई को मैं गौण मानता हूं। मुख्य कठिनाई दो बातों की है, एक है सेवा करने वाले व्यक्ति का निरुत्साहित हो जाना और दूसरी है उसके उत्साह का अतिरेक हो जाना। पहली स्थिति तब आती है जब हमारी सेवा का कोई ठोस प्रतिफल होता नहीं दिखाई देता तथा जब हम देखते हैं कि हमें प्रशंसा के बदले उपेक्षा मिल रही है। तब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और स्वयं सेवक दल का सदस्य था। हम लोग प्रति रविवार को लगभग 5 मील दूर एक गांव को जाते और वहां लगभग 3 घंटे तक गांव की सफाई करते, कचरा इकट्ठा कर एक गड्ढे में डालते, गांव वालों को गांव कैसे साफ रखना तथा कचरे की खाद कैसे बनाना यह सब सिखाते तथा उन्हें स्वास्थ्य रक्षण संबंधी मोटी मोटी बातें बतलाते। फिर दशहरा दिवाली की छुट्टी हो गई तो 5 रविवार हम लोगों का उस गांव में जाना नहीं हुआ। छुट्टी के बाद जब कॉलेज खुला और 5 सप्ताह बाद 6 रविवार को हम लोग उस गांव में गए तो सर्वत्र गंदगी का आलम देख हम लोग चकरा गए। गांव के लोगों से जरा डांट के स्वर में गंदगी का कारण पूछा तो जो उत्तर मिला उसने हम लोगों को और भी विस्मित तो किया ही साथ ही निरुत्साहित भी कर दिया। वे बोले, बाबू साहब, हम लोग तो इतने दिन आपका ही रास्ता देख रहे थे, आप लोग तो 5 इतवार आए ही नहीं। अब हम लोग गांव की सफाई करने जाते थे या कि गांव वालों को गांव की सफाई सिखाने। जिनकी सेवा की जाए उनका ऐसा रुख देख सेवा करने वालों का दिल बैठ जाता है। काम की प्रशंसा मिलना तो दूर, उपेक्षा मिलती है। ऐसे समय सेवा करने वाले को ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दृष्टांत ध्यान में ले आना चाहिए। वे अपनी दयालुता, परोपकार और सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे कहा, अमुक व्यक्ति आपको बहुत बुरा भला कह रहा था। कुछ देर सोचकर विद्यासागर बोले, पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने उसका कोई भला किया है। अर्थात जिसका भी उन्होंने भला किया उसी ने उनकी निंदा की, उन्हें गालियां दी, पर उनकी दयालुता में कमी न आई। सेवा में दूसरी बाधा है सेवा करने वाले के उत्साह का अतिरेक। जब वह ऐसा सोचने लगता है कि वह अपने सेवा कार्यों द्वारा समाज को बदल डालेगा, उसे ध्यान रखना चाहिए कि समाज को एकदम बदला नहीं जा सकता। एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से कहा, महाराज, आपकी वाणी में अद्भुत शक्ति है, जादू है, बिजली है, आप

0: भारत का दौरा कर सर्वत्र व्याख्यान देकर देश को सीधा कर डालिए। स्वामी जी हंसकर बोले, अरे यह दुनिया तो कुत्ते की पूंछ है, इसे भला कौन सीधा कर सकता है। वह व्यक्ति अपने को अपमानित अनुभव कर कुछ रुष्ट हो बोला, जब आप मानते हैं कि दुनिया कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है, तब आप इतने आश्रम क्यों बना रहे हैं और क्यों नवयुवकों का जनता जनार्दन की सेवा के लिए आह्वान कर रहे हैं। स्वामी जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इसलिए कि ऐसा करने से वे स्वयं सीधे हो जाएंगे। क्या ही अद्भुत दृष्टि है। हमें स्मरण रखना होगा कि हमारी सेवा से समाज सीधा नहीं होगा, हम स्वयं सीधे होंगे। यदि ये दो उदाहरण हम अपने सामने रखकर सेवा के क्षेत्र में उतरेंगे तो हमारी सेवा सचमुच में फलवती बनेगी और हमें निरुत्साह का सामना नहीं करना पड़ेगा।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। और कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर डॉक्टर के साथ, संदर्भ त्वचा रोग, सहकारिता ही क्यों, इस विषय पर प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:05 पर। सुबह 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ बच्चों में, सामायिक चर्चा, हमारे छोटे छोटे प्रयास धरती को हरा भरा बना सकती हैं, प्रायोजित कार्यक्रम डिजिटल पब्लिक स्कूल बिलासपुर के बच्चों की प्रस्तुति। 10:30 पर आप सुनेंगे नए तराने कार्यक्रम। 11 से हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। प्यारेलाल गुप्त सृजनपीठ बिलासपुर रतनपुर का सहकारिता ही क्यों, इस विषय पर प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह में प्रायोजक विजय कुमार। शाम की सभा में आज शाम 7:30 पर आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। चित्रपट संगीत का आप आनंद लेंगे शाम 7:00। दिल्ली केंद्र से रात 9:15 पर आप सुनेंगे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। जिले की चिट्ठी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से शाम 6:05 पर। शाम 5:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। ग्राम सभा का समय होगा शाम 5:05 पर, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा मोटा अनाज की खेती। फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत आप सुनेंगे। इसके साथ ही क्रम होगा मौसम मंडी भाव और सामायिक सुझाव का। शाम 5:35 और शाम 6:20 पर आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आपको एक बार फिर बता दें आज शाम 7:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा हाल।

बताता हूँ, आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर। सदाबहार नगमे का आप आनंद लेंगे शाम सुबह 7:40 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6:55 होने वाले हैं और समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: बजकर 55 मिनट होने को हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन।

0: शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकण्डक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि

0: महत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत 26,000-2,000-तम वर्षान्तं यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21तमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्द क्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23-दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्व चषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में

0: देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम में 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

श्रोताओं नमस्कार। सहकारिता के विषय में आपने जरूर सुना होगा। सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि सामूहिक विकास, विश्वास और साझी प्रगति का सशक्त माध्यम है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक देश भर में सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों में सहकारिता के सिद्धांतों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे शहर बिलासपुर में भी इस संबंध में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सहकारिता का मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास और सबकी भागीदारी। जब लोग मिलकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं तब संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और विकास के नए अवसर पैदा होते हैं। कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, लघु उद्योग, बैंकिंग और महिला स्वसहायता समूह जैसे अनेक क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। आज देश में सहकार से समृद्धि का मंत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। सहकारी समितियां किसानों को ऋण, बीज, उर्वरक, विपणन और भंडारण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न पहल के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सहकारिता सप्ताह के दौरान प्रतिज्ञा दिवस, किसान सम्मान कार्यक्रम, महिला एवं युवा सम्मेलन, जन जागरूकता अभियान, तकनीकी संवाद, वृक्षारोपण और सहकारी संस्थाओं के सम्मान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य लोगों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ना और सामूहिक विकास की भावना को मजबूत बनाना है। श्रोताओं, सहकारिता हमें यह सिखाती है कि मिलजुल कर किया गया प्रयास व्यक्तिगत सफलता को सामूहिक समृद्धि में बदल सकता है। गुजरात के आनंद जिले में स्थित आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल सहकारिता के माध्यम से सफलता का एक बड़ा ही उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत के ऐतिहासिक श्वेत क्रांति का में यह एक प्रमुख केंद्र है।

श्रोताओं, सहकारिता के विषय में बाबू प्यारेलाल गुप्त सृजन पीठ बिलासपुर द्वारा सहकारिता क्यों विषय पर प्रायोजित कार्यक्रम के माध्यम से और जानकारी दी जा रही है। आलेख विजय कुमार गुप्त का है। आज मुझे सहकारिता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। इस संबंध में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, संगच्छौं संवदध्वौं संतो मनासि जानतम, अर्थात मिलकर चलो, मिलकर बोलो और मिलकर सोचो। यही सहकारिता का मूल मंत्र है। सहकारिता केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसका अर्थ है एक दूसरे का हाथ थामकर सबके विकास का मार्ग प्रशस्त करना। कहा भी गया है, एक और एक 11 होते हैं। भारत की संस्कृति सदैव सहयोग की संस्कृति रही है। गांव में कुएं, तालाब, धर्मशालाएं, गौशालाएं और मंदिर समाज के सामूहिक सहयोग से ही बनते हैं। आज उसी भावना को संगठित रूप देने का नाम सहकारिता है। आज देश में सहकारी समितियां किसानों को उन्नत बीज, खाद, ऋण उचित मूल्य में उपलब्ध करा रही हैं। दुग्ध सहकारी समितियों में लाखों ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति बदली है। महिला स्व सहायता समूहों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। बैंकिंग, आवास, विपणन और उपभोक्ता क्षेत्र में भी सहकारिता ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हमारे देश में सहकारिता को नई ऊर्जा देने के लिए अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य सहकार से समृद्धि अर्थात प्रत्येक व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। महात्मा गांधी जी का विचार था कि स्वयं का विकास तभी सार्थक है जब उसमें समाज का कल्याण जुड़ा हो। यही सहकारिता का सार है। सहकारिता का अर्थ केवल साथ मिलकर कार्य करना नहीं है, बल्कि विश्वास, सहभागिता, समानता और सेवा के भाव से समाज को आगे बढ़ाना है। यही कारण है कि सहकारिता को लोकतंत्र की आर्थिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। हमारे देश में सहकारिता आंदोलन को सफल बनाने में सहकारी बैंकों का बड़ा योगदान है, क्योंकि सहकारी बैंक केवल धन का लेन देन करने वाले संस्थान नहीं है। यह समाज के विश्वास का प्रहरी, किसानों का सहयोगी, छोटे व्यापारियों का संबल, महिलाओं की आर्थिक शक्ति तथा मध्यम वर्गीय परिवारों का विश्वसनीय साथी है। जब कोई किसान समय पर ऋण प्राप्त कर फसल बोता है, जब कोई युवा छोटे व्यवसाय का सपना साकार करता है, जब कोई महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनती है, तब उसके पीछे सहकारी बैंक की मौन लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सहकारी बैंकिंग का आधार केवल पूंजी नहीं, विश्वास है। जिस दिन जनता का विश्वास कम होता है, उसी दिन से संस्था की शक्ति भी कम होने लगती है। वास्तव में सहकारिता कोई योजना नहीं, यह विश्वास का सेतु है। यह कोई संस्था नहीं, बस समाज की शक्ति है। सहकारिता कोई नारा नहीं, यह राष्ट्र निर्माण का सशक्त आधार है। आज जब समाज में एकाकीपन बढ़ रहा है, तब सहकारिता हमें जोड़ने का कार्य करती है। यह केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भाव, विश्वास और मानवीय संवेदनाओं की आधारशिला भी है। बिलासपुर में सहकारिता आंदोलन के तहत सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी बैंक की स्थापना सन 1915 में बिलासपुर सहकारी केंद्रीय अधिकोष मर्यादित के

नाम से हुई थी। इस बैंक के संस्थापक सदस्य सर्वश्री मोतीचंद, एम एन बिलमोरिया, मोहम्मद सिद्दीकी, रघुनंदन प्रसाद मिश्र, एस एन डे, शरद चंद्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद, गंगा प्रसाद वाजपेयी, बैजनाथ सिंह, कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री, अयोध्या प्रसाद आदि थे। इस बैंक का स्थापना काल से ही प्रथम मैनेजर के पद पर महान साहित्यकार तथा इतिहासकार बाबू प्यारेलाल गुप्त ने अपनी सेवाएं दी तथा अपने पूर्ण कार्यकाल तक वे वहीं मैनेजर रहे। सन 1915 से 1946 तक उन्होंने बेदाग बैंक में अपनी सेवाएं दी। उनके कार्यकाल में बैंक का चहुमुखी विकास हुआ। इसी दौरान जांजगीर, मुंगेली, अकलतरा, खड़गोरा तथा पेंडा रोड में शाखाओं का विस्तार हुआ। सन 1947 तक बैंक को अपने अधीनस्थ सहकारी सभाओं को ऋण देने के लिए कहीं से कोई राशि ऋण स्वरूप लेने की आवश्यकता नहीं हुई। आज की आवश्यकता है कि हम सहकारिता से युवाओं को जोड़ें ताकि सहकारिता का भविष्य सुदृढ़ हो और आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिलता रहे। अंत में सहकारिता के संबंध में इतना ही कहूंगा कि जहां सहयोग है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहीं विकास है, और जहां विकास है वहीं समृद्ध राष्ट्र का निर्माण है। विजय कुमार गुप्त का आलेख अभी आपने सुना। प्रायोजक प्यारेलाल गुप्ता, सृजन पीठ बिलासपुर।

श्रोताओं, आज 5 जुलाई है और आज एक विशेष दिन भी है। आज विश्व बैडमिंटन दिवस है और विश्व बैडमिंटन दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। इसकी घोषणा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा मार्च 2022 में की गई थी। 5 जुलाई 1934 को अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संचालन संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना हुई थी, जिसे आज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हर वर्ष 5 जुलाई को विश्व बैडमिंटन दिवस मनाया जाता है। विश्व बैडमिंटन दिवस का उद्देश्य है दुनिया भर में बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक लोगों को खेल से जोड़ना, स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, खेल भावना, समावेशिता और सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करना और खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का उद्देश्य है इस दिन दुनिया भर के लोग रेजर रैकेट अर्थात रैकेट उठाइए अभियान के माध्यम से बैडमिंटन से जुड़े और खेल का आनंद लें। भारत में बैडमिंटन का इतिहास गौरवशाली रहा है। एक समय था जब क्रिकेट के मुकाबले इस खेल को सीमित पहचान प्राप्त थी, लेकिन आज भारतीय खिलाड़ी विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। उनकी उपलब्धियों ने देश के लाखों युवाओं को प्रेरित किया है कि वे खेलों को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। भारतीय बैडमिंटन की चर्चा महान खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण के बिना अधूरी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद साइना नेहवाल ने विश्व बैडमिंटन में भारत का नाम रोशन किया और विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान तक पहुंचकर इतिहास रचा। आज भारतीय बैडमिंटन की सबसे बड़ी पहचान पीवी संधु है, जिन्होंने ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं। वे बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं और ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल है। पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन ने अपनी प्रतिभा और संघर्ष के दम पर विश्व स्तर पर भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। युवा खिलाड़ियों के लिए वे एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। युगल वर्ग में सात्विक सलराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अपना नाम रोशन किया है। भारतीय बैडमिंटन को इन खिलाड़ियों ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह जोड़ी विश्व नंबर 1 बनने वाली भारत की पहली पुरुष युगल जोड़ी है और एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों तथा कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्णिम सफलता हासिल कर चुकी है। इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां हमें यह संदेश देती है कि कठिन परिश्रम, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

होता है। खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे हमें अनुशासन, धैर्य, संघर्ष और टीम भावना का पाठ भी पढ़ाते हैं। विश्व बैडमिंटन दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, बच्चों और युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा स्वस्थ और सक्रिय समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

0: श्रोताओं, अब आइए सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: प्रतिदिन की तरह यातायात संबंधी सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ मैं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में आज दोपहर 12 बजे स्थानीय देवती नंदन दीक्षित सभागार एवं लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में इसके कार्यकर्तागण एवं युवा शामिल होंगे। कार्यक्रम के पश्चात सभी अवाहित सदस्यों के द्वारा पथ संचलन निकाला जाएगा। पथ संचलन शाम 4 बजे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण से प्रारंभ होगा, जो कोतवाली चौक, गोल बाजार, सदर बाजार, सिम चौक एवं देवकी नंदन चौक होते हुए तिलक नगर स्थित हनुमान जी मंदिर पहुंचकर संपन्न होगा। हमेशा की तरह आकंठ अनुशासन को आत्मसात कर चलने वाले पथ संचलन में चल रहे सभी सदस्यों से पुनः अनुरोध है, सड़क के एक भाग में चलें ताकि शेष यातायात सकुशल चलता रहे। विशेषकर युवा साथियों से विशेष अनुरोध है, पथ संचलन के प्रस्तावित मार्ग में आतिशबाजी न करें। साथ ही पथ संचलन विसर्जन स्थान तिलक नगर हनुमान जी मंदिर के पास इस प्रकार खड़े हों ताकि यहां किसी भी प्रकार से यातायात बाधित न हो। इसके साथ ही शहर से लेकर सभी गांव की सभी सड़कों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। मित्रों, ये सच है कि हमारे शहर के कुछ चौक में वाहनों की संख्या की तुलना में चौक सकरे हैं, जिससे यहाँ रेड सिग्नल के समय चौक में लेफ्ट फ्री रखने में कठिनाई होती है, जगह कम पड़ती है। लेकिन यह भी सच है कि शहर में तमाम ऐसे भी चौक हैं जो आकार में बड़े हैं, यहाँ की सड़कें भी चौड़ी हैं, फिर भी कुछ मात्र को छोड़कर शेष तमाम लोग जो आदत से विवश हैं लेफ्ट फ्री वाले स्थान में भी अपने वाहन लेकर खड़े हो जाते हैं, जिससे बाएं तरफ जाने वाले वाहन चालक हॉर्न देते खड़े रहते हैं, जिससे बाईं तरफ जाने वाले लोग परेशान होते हैं। यही कारण है कि कुछ चौक में कभी कभी जाम की स्थिति भी बन जाती है। पुनः आप सभी से निवेदन है, अब आप स्मार्ट सिटी के स्मार्ट नागरिक हैं, स्मार्ट सिटी की मर्यादा बनाए रखें, नियमों के अनुसार ही चलें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। और अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ, संदर्भ त्वचा रोग, भेंटकर्ता महावीर बरगा।
1: कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में हमारे साथ हैं अंचल के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अजय पांडे। सर स्वागत है आपका। आज हम त्वचा संबंधी विभिन्न बीमारियों के क्रम में चर्चा करेंगे खुजली या स्केबीज ये क्या है, साथ ही जानेंगे कि इतनी धूप इतनी गर्मी, हम कहें कि आजकल 12 महीने में 8 महीने धूप चिलचिलाती है, तो उसके दुष्प्रभाव हमारे स्किन पर हमारे त्वचा पर किस प्रकार का होता है। और एक और बात हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि नाखून में भी जो इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या है। तो पहले जानेंगे कि खुजली है जो कि आमतौर पर छोटे बच्चों से लेके वृद्ध से लेके युवा महिलाओं सभी को होती है, तो ये क्या बीमारी है या एक सामान्य प्रक्रिया ही है?
2: इचिंग एक मैनिफेस्टेशन है स्किन के इरिटेट होने का। यदि आपके स्किन को प्रॉब्लम हुई, जैसे छोटे बच्चे को कुछ भी चाहिए रहता है तो वो चाहे दूध चाहिए चाहे पानी चाहिए चाहे मम्मी चाहिए तो रोके बताता है, वैसे कि यदि स्किन को कोई भी इरिटेशन हुआ या दिक्कत हुई तो वो खुजली करेगी, लाल पड़ेगी या उसमें दर्द होगा।
1: अच्छा,
2: है ना, ये इनिशियल होता है, उसके बाद की चीजें बाद में होती हैं, जैसे घाव वाव बनना, गठान बनना, ये सब बाद में होता है। सबसे शुरुआत होती है इचिंग से, चकत्ता से या फिर दर्द से, है ना। तो चमड़ी की कम से कम 6,500 बीमारियां हैं। अब ये खुजली क्यों हुई है, इसका कारण जानने के लिए हमको उम्र देखना रहता है। मेल है फीमेल है, उम्र क्या है, बच्चा है कि यंग है, और ये देखना रहता है कि वो दिन में ज्यादा हो रही कि रात में ज्यादा हो रही है।
1: अच्छा,
2: हाँ, और ये देखना रहता है कि क्या करने, कहाँ जाने, क्या खाने के बाद, मतलब कि किन चीजों से वो खुजली आई है या बढ़ी है, जिसको हम एग्रेवेशन फैक्टर देख बोलते हैं। तो इन सब चीजों को देख के हम डिसाइड करते हैं कि इसका कारण क्या है और फिर उसके हिसाब से दवाई देते हैं। खुजली का कारण क्या है ये तो देखने के बाद और हिस्ट्री लेने के बाद ही हम बता पाएंगे कि भाई खुजली हो रही तो कहाँ पे है खुजली। जैसे जांग में है तो जांग में मोटा मोटा वो फंगस के कारण होता है, एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो। यदि बच्चों में करें तो बच्चों में अक्सर खुजली हाथ और पैर, जहां पे उनका बॉडी पार्ट खुला रहता है, कपड़े से खुला रहता है, तो वहां पे उड़ने वाले कीट पतंगे आते हैं, छूते हैं, तो उनके छूने से जो केमिकल टच होता है, कीड़े का जो केमिकल आपकी स्किन से जो टच होता है, उससे जो एलर्जी होती है उसको हम पैपिलर एटिकेरिया कहते हैं। तो बच्चों में जो खुजली होती है वो अक्सर खुले हाथ और पैर के पार्ट में होती है। जो एक मौसमों में अक्सर बरसात और जो गर्मी में जो खुजली होती है जांघों में, वो अक्सर फंगल इन्फेक्शन होती है। तो ये डिपेंड करता है कि उम्र क्या है, कहाँ पे खुजली है, मौसम क्या है, तो ये सब फैक्टर देख के ही बता पाएंगे कि क्या करना। हाँ, फिर भी यदि आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और कोई दवा लेना चाहें, तो जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि आप एंटी हिस्टामिन जो सिट्रिजिन या सिट्रिजिन जैसी जो दूसरी चीजें हैं, उसका आप ले सकते हैं, वो दिक्कत नहीं करती।
1: अच्छा,
2: हाँ उससे, हाँ, लेकिन सिट्रिजिन या सिट्रिजिन जिसको हम एंटीस्टामिन कहते हैं, सिट्रिजिन, लोरेटिडिन, फेक्सोफेनाडिन, ये सब ये ब्रांड नेम नहीं, ये मॉलिक्यूलर नेम है,
1: जी जी,
2: है ना। हाँ। लिवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन, ये फेक्सोफेनाडिन, लोरेटिडिन, बिलास्टिन, इबास्टिन, ये इनको हम एंटीस्टामिन कहते हैं। तो ये आप ले सकते हैं और ये बीपी शुगर को ज्यादा प्रभावित नहीं करती। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात और भी है कि सबसे सेफ एंटीस्टामिन कौन सी है, तो वह है बिलास्टिन। क्योंकि यदि किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो बाकी सारी जो एंटीस्टामिन है वो थोड़ा अनसेफ हो जाती है। यदि किसी को लीवर डिसीज है तो उसके लिए फेक्सोफेनाडिन और सिट्रिजिन सेफ होती है, लेकिन यही चीज जो है वो किडनी वाले के लिए सेफ नहीं होती। यदि आप एक कोई दवाई पूछना चाहें मुझसे कि कौन सी दवाई खुजली होने पे हम ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, तो यदि आप प्रेग्नेंट नहीं है, फीड नहीं कराती हैं, तो बिलास्टिन ले सकती हैं।
1: अच्छा।
2: या ले सकते हैं, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप लोरेटिडिन ले सकती हैं।
1: जी,
2: है ना।
1: तो सुना आपने श्रोताओं कि खुजली में कौन सी दवाई आमतौर पर ले सकते हैं, लेकिन उसके

0: बाद डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि चिकित्सक से जरूर मिले यदि वो खुजली बार बार फिर परेशान कर रही है या उसका स्वरूप बदल रहा है, चकते बन रहे हैं या कुछ बन रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आगे जानना चाहेंगे कि धूप जो सनरेज है उसके कारण भी शरीर का टैन होना तो अलग चीज है, किसी का चेहरा पूरा लाल हो जाता है, किसी के काले धब्बे पड़ जाते हैं या ड्राइनेस आती है या त्वचा फटने जैसा लगता है, तो ये क्या है या ये भी बीमारी है या केवल धूप तक ही सीमित रहता है?
1: धूप में यूवी रेज होती हैं जो बेसिकली चमड़ी को नुकसान पहुंचाती हैं।
0: अच्छा,
1: तो मौसम कोई सा भी हो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर जाएं। और
0: डॉक्टर साहब, इसी में थोड़ा समय रोकना चाहूंगा कि आमतौर पर यह भी सलाह दी जाती है कि आप धूप का प्रकाश लें,
1: हाँ,
0: और ये भी कह रहे हैं कि हम धूप से बचें, तो इसमें थोड़ा सा अंतर बताएंगे हमारे श्रोता, कब लें यदि लें तो?
1: धूप हमें क्यों लेना चाहिए
0: जी?
1: क्योंकि हमारी चमड़ी पे जब धूप पड़ती है तो वो चमड़ी विटामिन डी बनाती है।
0: अच्छा,
1: और विटामिन डी आप खाने के माध्यम से नहीं ले सकते, या तो दवा के माध्यम से ले सकते हैं या तो फिर आपकी स्किन बनाएगी।
0: अच्छा,
1: तो गोरे लोगों में बहुत कम समय में सफिशियंट अमाउंट में 15 मिनट से 20 मिनट का एक्सपोजर पर डे का पर्याप्त होता है। अच्छा, विटामिन डी बनाने के लिए। जबकि सांवले लोगों में ये ड्यूरेशन 1 से 2 घंटे का होता है।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो विटामिन डी का डिफिशियंसी अक्सर किसमें देखा जाता है? गोरे की तुलना में सांवलों में देखा जाता है, क्योंकि हमको ज्यादा देर का सन एक्सपोजर चाहिए होता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: ठीक है
0: जी।
1: और कब का धूप सबसे अच्छा विटामिन डी बनाता है? तो सुबेरे 9 से 11 और दोपहर को 1 से 3 के बीच का धूप।
0: अच्छा,
1: ये ज्यादा अच्छा माना गया है विटामिन डी के बनाने के लिए।
0: हाँ,
1: विटामिन डी बनाने के लिए जो हमको धूप लेनी चाहिए वो कब कैसे लेना चाहिए? तो प्रेफरेबली जब इस समय जो है आप पीठ के साइड, पीठ या पैर में ले, चेहरे में ना ले।
0: अच्छा,
1: हाँ, चेहरे में थोड़ा अवॉइड करें। जब धूप लेने के लिए आप जाते हैं 5-10 मिनट, तो आप टोपी पहन के और सनस्क्रीन लगा कर जाएं। क्यों? पेट, पीठ, हाथ पैर की चमड़ी और चेहरे की चमड़ी अलग होती है। मीन्स पीठ, पेट और हाथ पैर की चमड़ी जो रहती है वो मोटी रहती है, उसकी तुलना में चेहरे की चमड़ी नाजुक और पतली रहती है।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, जो धूप विटामिन डी बना रही है हाथ पैर पेट पीठ में, वो आपके चेहरे को नुकसान पहुंचा सकती है।
0: हाँ,
1: तो धूप में जाए तो चेहरे को बचा के धूप का सेवन करें।
0: ठीक है, आपने बचाव में एक और बताया कि सनस्क्रीन लगाएं, तो उसमें बहुत से प्रकार रहते हैं। आमतौर पर व्यक्तियों को समझ नहीं आता कि हम कौन सा लगाएं, किस प्रकार का लगाएं, तो इसका कुछ उपाय है?
1: सनस्क्रीन दो तरह की होती है, सरल शब्दों में एक आम व्यक्ति के लिए, एक सूखी एक गीली।
0: अच्छा,
1: सूखी जिसको मैट फिनिशिंग बोलते हैं और गीली जिसको हम लोग लोशन या क्रीम के फॉर्म में बोलते हैं। तो गर्मियों में आपको पसीना आता है,
0: हाँ,
1: तो गर्मियों में हम अक्सर सूखी सनस्क्रीन लिखते हैं मैट फिनिशिंग वाली, ताकि वो आपके पसीने से वॉश आउट ना हो। और जाड़े के मौसम में आपकी स्किन सूखी रहती है, तो उसमें हम गीली सनस्क्रीन लिखते हैं, जैसे लोशन या क्रीम, लोशन के फॉर्म वाली, जिसमें यूं कही कि वो हाइड्रेशन या मॉइस्चराइजर मिला हुआ रहता है। तो जाड़े के मौसम में गीली सनस्क्रीन और गर्मी के मौसम में सूखी सनस्क्रीन देते हैं। यदि किसी व्यक्ति का सन एक्सपोजर ज्यादा है, जैसे आउटडोर वर्क ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम मैट फिनिशिंग सनस्क्रीन देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो पसीने से या वर्कआउट से यूजुअली वॉश आउट नहीं होती। इनफैक्ट स्विमिंग से भी वॉश आउट नहीं होती, जैसे आप स्विमिंग जाते हैं तो भी वॉश आउट नहीं होती। तो यदि कोई स्विमिंग करने जा रहा है या खिलाड़ी है, तो ऐसे लोगों को जो है हमें ड्राई मीन्स मैट फिनिशिंग सनस्क्रीन ही देनी चाहिए। अब आते हैं SPF पे, सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF। ये 18 से लेकर अब तो 100 तक SPF तक आने लगे हैं।
0: अच्छा,
1: है ना, बाजार में अप टू 100 SPF तक मौजूद हैं। और ये अल्ट्रावायलेट रेज से आपको कितना बचा पाती है सनस्क्रीन, उसका एक पैमाना होता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: थ्योरेटिकली हम बात करें तो 18 SPF की सनस्क्रीन अप टू 90% प्रोटेक्शन दे देती है।
0: अच्छा,
1: अब और ये बड़ी सस्ती मिलती है, बहुत ही सस्ती, लेकिन यूजुअली मार्केट में हम देखते हैं कि 30 या 30 अबव वाली सनस्क्रीन आपको देखने को मिलती है। लोग 50, 60, 70, या हम अक्सर आके बोलते हैं कि हाईएस्ट SPF की सनस्क्रीन दीजिए। ऐसा क्यों, उसका क्या लॉजिक और सेंस है? क्या होता है कि 18 SPF की सनस्क्रीन पर्याप्त तो है, है ना, मोर देन 90% 90 to 95% 90 to 95% प्रोटेक्शन 18 SPF की सनस्क्रीन आपको दे सकती है, लेकिन उसको आपको सफिशियंट क्वांटिटी में लगाना होता है।
0: अच्छा,
1: और जब आप सफिशियंट क्वांटिटी में लगाते हैं उसको, ओ तो एक फिंगर हाफ लगाना रहता है। यदि आप उस जितनी मात्रा आपको लगानी रहती है आप उतना लगाते हो, तो आप वो आपको काफी अनकंफर्टेबल ग्रीजी फील कराती है।
0: जी, जी, हाँ।
1: तो हम उतना लगाते नहीं, हम मटर के या चने के दाने के बराबर लगाते हैं
0: जी।
1: जो कि जितना लगा

0: चाहिए उसका एक चौथाई क्वांटिटी होती है ना। तो इसलिए हम हायर एसपीएफ को चुनते हैं ताकि हम लगाते तो कम है, तो कम भी लगाए तो कम से कम
1: प्रभावशाली
0: हाँ
1: रहे
0: कुछ,
1: जी।
0: हाँ उतना प्रभावशाली रहे।
1: अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इन तमाम जानकारियों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारियां आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

सेहत की बात कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। भेंट करता महावीर बरगा, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। और अब आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म श्री 420 का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें थी, शैलेंद्र के लिखे बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत सुनिए फिल्म मंजिल।

1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत जावेद अख्तर के लिखे बोल और आर डी बर्मन का संगीत, और इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 8 बजने वाले हैं, और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा

0: कि भारत की नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक

0: टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए।

0: गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम माटी के स्वर में। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का आज निधन हो गया। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति से पंडवानी शैली से देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

आज पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई को आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि देते हुए आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ ये पाणवानी गीत।

0: बे अंधा, ये सारे खेल हकीबे नहीं तो कृष्ण के सवा दूसरा काकरो नहीं।
1: अच्छा,
0: कृष्ण के जरियत ले भीमसेन मन हा जिंदा हवे, पांचो भाई सदा जीवित भये। सबो भाई कारो मन नास हो गे कहे अंधा, तोरे दिही के दिया भूता एक खाती कृष्ण जी नगर द्वार का ले आए रही से ये बात ले अंधा के पास मा सुंदर गोठियावत रहे। वही वक्त में का करे,

0: रही सब एक का। मुरलीधर कन्हैया कहने लगे धृतराजन धा, ये सब खेला हमार कह के बदनाम ल मत बोझा लगा। काबर ये सारी खेल राजा दुर्योधन के हुई से।
1: अच्छा,
0: अरे जब मैं पांच गांव मंगाए के आस लगा के लगे दरबार में जब पहुँचे गुरु द्रोणा भीष्म पितामह ये सब राजों के बीच बीच में, यंतना देवो राजा की के कही तब के दरी मैं मन में सोच के और पांच सने भाई बर

0: नहीं देव जमीन की के पांडो मन बर परन करे रही सवे ये पांडो मन के करनी नो है न मोर करनी नो है दादा मोर फोकट के कलंक मत लगा।
1: अच्छा
0: ये तो राजा दुर्योधन के करनी है।
1: हाँ?
0: ये बात ले सुनकर बड़ा प्रेम के साथ धृतराज अंधाले और आत्मा में ज्ञान हो जावे शिरतोन बातें मोरे बेटा ये बात ला ध्यान निधीश नहु समझाए भीष्म पितामह गुरु द्रोणाय और कृष्ण जी भी समझाए पर काकरो वचन में ध्यान न लगाई। ये कहकर यंधा धृतराज के मन में आनंद आ गए। वह वक्त बड़ा हर्ष होके कहने लगे भैया कृष्ण जी मोर पांचों

0: ये अंधा बड़ा प्यार के साथ कहे बेटा। अरे मैं जत का भी अपन मन में क्रोध करे रहे धर्मराज, ये तबला दूर करके आज मोर गले के पास में आकर मिल जा।
1: अच्छा,
0: ये बात ला सुने तो पांचों भाई बड़ा सुंदर अकन दौड़ के चले।
1: हाँ।
0: तब गले ले लगावे।

कर धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज बड़ा खुशी के साथ बोलने लगे हैं। यंधाले दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, पिताजी जत कभी गलत कर डारे मोर तजरिया से होए हैं, ये कर से तीता मोला बार बार क्षमा दे दे बेगा।

0: यंधा के पास ले मिल के
1: हाँ?
0: और ये पांचों भाई
1: अच्छा
0: कृष्ण के सही
1: हाँ?
0: और धीरे धीरे बड़ा प्रेम के साथ माता संग मिले भर चले हैं
1: भाई।
0: अरे सौ भाई कारों के नाच सुनने वाली गंधारी
1: हाँ?
0: तब बता रहा के बोला।

काहे के सूचना देख के गंधारी अलग बिलाप कर कर के मन में क्रोध भरी वाणी और घुसा के साथ आँखी ललियावत हवे वो गंधारी के जब आँख लाल हो गए पांडव मल्ला शराब दे के नाश कर डर हुंकी के वही समा का हो जाते हाथ कमंडल उठा हाथ में कमंडल उठा के

ये सब है कारो लपुत्र ना जान के आजकल ये समझ ले गंधारी पांचों झने बेटा तोर प्राण के आधार आए आँखों के तारा तय समझ ले बाई ऐसे कह कर व्यास जी बड़े सुंदर धीरज धरावत व्यास जी के कहे हुए वचन ले सुनकर गंधारी या मन में हर्ष तो यवस मनाई रहे काका पर मन ही मन सोच के कथे का करो व्यास जी मोला यही बात के गजब दुख लागेगा का के भीमसेन के करनी ला तो जरा देख ली वो अनर्थ लड़ाई करी राजा दुर्योधन के जंघाला ये टोरे के मौका नहीं रही वह समय भीमसेन पर

तीजनबाई के गाए इस पांडवानी गीत के बाद आइए सुनते हैं हमारे श्रोताओं के कुछ फरमाइशी गीत। और फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ग्राम पाहरा अहिरावारा जिला दुर्ग से हैं पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया बंछोर, ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश, कीर्ति, संध्या और डिकेश कुमार साहू, कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा, शिव कुमारी, हेमलता, वेद किरण, ग्राम पंचायत बठेना से है बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति और रेखा और धनेश्वरी वर्मा, मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू, युग कुमार झेरिया, भाटापारा छत्तीसगढ़ से राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश, कार्तिक और युवराज राउत, सिहारा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन, अमरपुर पेंड्रा से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा, रूही, दिव्यांश और लवी श्रीवास्तव, भाटापारा से हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम टेलर, मारवाही कुआं भाटापारा से है सियाराम टेलर, अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा, रायपुर से नीलू मेघ। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत, स्वर लखन देवानंद का।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल लाइफ इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: श्रोताओं, गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं ओवरी भाटा भाटापारा से अनीता साहू, वीना साहू, नेहा साहू, मोनिशा साहू, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, माया राम रजक, पुनीश्वर रजक, फनेश्वर, मुकेश कुमार रजक, तानिया रजक, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी पेंशनबाड़ा रायपुर से हैं, सोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्यप्रकाश, शीला, कनक, गुनगुन, बेबी अदिति, तन्मा, भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी, शुभम, सौरभ, नीरज रावत, बिलगहना शक्ति बहरा से हैं, श्याम शंकर मिस्त्री, बाबा विजय पायलट, रागिनी गीता देवी, कैलाश चंद्रबाई, कुसुम काशीपुरी, राधा पड़वार, पेंड्रा धनगवा से हैं, बरपरा छत्तीसगढ़ से कैलाश चंद्रबाई, सुरेंद्र, संजना, श्याम शंकर, प्यारे लाल सोनवानी, बाबा और बबली, रागिनी गीता देवी, कैलाश चंद्रवती, कुसुम, ये हैं बेलगहना शक्ति बहरा से, महमदपुन भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त, और दतरंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत, स्वर रामायण वस्त्रकार और साथियों का।

रामायण वस्त्रकार और साधु के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही माटी के स्वर कार्यक्रम से ही हमें दीजिए अनुमति। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 9 बजे हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में यारियां फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे बैंगिस्तान फिल्म का गाना। लीजिए सुनिए लव ब्रेकअप्स जिंदगी। इस फिल्म का गाना बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज़ों में, गीतकार हैं जावेद अख्तर और तर्ज बनाई है सलीम सुलेमान ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम ने लिखा है इसे और संगीत से संवारा है देवी श्री प्रसाद ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सूरज पे मंगल भारी इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं मोहसिन शेख, ज्योतिका टांगरी मेलोडी और ऐश्वर्या भंडारी की। दानिश साबरी ने लिखा इसे और संगीतकार हैं जावेद मोहसिन।

तो दोस्तों, आज के चित्रलोक प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से आवाज़ें हैं विशाल ददलानी, हंसिका अय्यर की, और इस गाने का तमिल रैप कांश गाया है श्रीचरण कस्तूरी रंगन ने। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य और निरंजन अयंगर के, संगीत विशाल शेखर का। तो मैं कहता हूँ आपसे, लेट्स गो ना ऑन द डांस फ्लोर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों

0: फिल्म पुकार के बाद साल 2001 में वो लेकर आए महिलाओं से जुड़े विषय पर एक बड़ी ही प्रखर फिल्म लज्जा।
1: तंग न

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष भूमिका में थी।

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:55 हुए हैं और प्रादेशिक समाचार के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी, उनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था। उन्होंने आज तड़के करीब 3:15 अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख जताते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णिक क्षति है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कला जगत से जुड़े लोग और अनेक गणमान्य नागरिक एम्स पहुंचे और तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई का निधन न केवल लोक कला जगत के लिए बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ तथा समस्त देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अपूर्णिक क्षति है। अपनी अद्वितीय गायन शैली, विलक्षण प्रतिभा और लोक परंपराओं के संरक्षण के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। उनका अतुलनीय योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। गौरतलब है कि तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ में सुशासन और अभिसरण विभाग और आईआईएम रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के

0: अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस शिविर का कल शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर का उद्देश्य शासन प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले शुरू की गई। शिविर में सुशासन, उभरती तकनीकों, कृषि समृद्धि, प्राकृतिक खेती और नेतृत्व विकास जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इस शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हो रहे हैं। इस चिंतन शिविर का आज समापन होगा। मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत भाड़म में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और उसके दो पुत्र शामिल हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे पुलिस के अनुसार व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे से रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जीआरपी ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आप रायपुर केंद्र से सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 10 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए नन्हे बच्चों का कार्यक्रम आओ बच्चों।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: आप सभी को आपकी दीदी लिंटा का प्यार। आशा करते हैं अपना अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और मस्त हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है बच्चों, जो कि आप सभी का फेवरेट भी है। बारिश के पानी में भीगना और उछल कूद करना, वो भी दोस्तों के साथ, वाकई उस पल का आनंद हमारे सभी नन्हे बच्चे उठाते हैं, है ना? जरूर बच्चों, मस्ती कीजिए और कुछ बातों का ध्यान भी रखिए। खाली जगहों, मैदानों में ज्यादा देर तक नहीं रुकें। किनारों पर जो पेड़ वगैरह लगे रहते हैं उनके नीचे भी बारिश से बचने के लिए खड़े नहीं रहे बच्चों, क्योंकि बिजली और आंधी में पेड़ों के गिरने का भी डर रहता है। इसी प्रकार मम्मी पापा या बस वाले भैया नहीं पहुंचे हैं आपको लेने, तो आप स्कूल के हॉल या क्लासरूम में उनका इंतजार कर सकते हैं। रास्ते में भी चलते समय साफ सुथरे जगहों पर चलें, जहां पानी भरा है या गड्ढे हैं वहां पर नहीं चलें। हमेशा कीड़े मकोड़ों और जंतुओं से सावधान भी रहें। जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें भी सफाई का ध्यान रखें। बाहर मिलने वाले खाद्य पदार्थों को कम से कम खाएं। शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखें बच्चों, और अपने आसपास को भी स्वच्छ रखें। आप देखिएगा इस सुहावने मौसम का आनंद इन छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। वैसे बच्चों, बारिश के मौसम की एक खास बात ये भी होती है कि हमें चारों ओर हरियाली देखने को मिलती है। यही नहीं, हर साल जुलाई महीने का पहला सप्ताह वन महोत्सव यानी पेड़ों का उत्सव भी कहलाता है। ये वो समय है बच्चों, जब हम सब मिलकर प्रकृति के सबसे बड़े उपहार वृक्षों के महत्व और लाभ को समझते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं, एक तरह से हमारी धरती को सजाते हैं। बच्चों, वन महोत्सव केवल पेड़ लगाने का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन एक ऐसा अभियान है, हमारी जिम्मेदारी है, जो कि हम सभी को हमारी प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है, जिससे हमारे चारों ओर हरियाली और खुशहाली हो। और इस प्रक्रिया में आप प्यारे बच्चों की भूमिकाएं भी खास होनी चाहिए।

ये है ना, जैसे पौधे लगाना लेकिन जिम्मेदारी से। आप अपने घरों के आंगन, गलियों में, स्कूल में या पार्क में पौधे लगाएं, उनमें पानी दें और समय समय पर उनकी देखभाल भी करें। आप चाहें तो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ग्रीन क्लब भी बना सकते हैं और हर सप्ताह इसमें क्लब के मेंबर्स के लिए काम भी तय करें, जैसे गार्डन की सफाई, पेड़ों की गिनती, पक्षियों के लिए दाना और पानी रखना और बीजों को बोना। इस प्रकार के छोटे छोटे काम भी बच्चों बड़े बदलाव ला सकते हैं। और यही नहीं, आपके स्कूलों में भी इस संदर्भ में यदि कोई प्रतियोगिता वगैरह होती है तो उसमें जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिए, जिसमें आप अपने विचारों को भाषण के रूप में या पेंटिंग्स के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब आप घर पर होते हैं तब मम्मी पापा से बोलकर उनके सहयोग से मिनी गार्डन तैयार कर सकते हैं। घर की छत या बालकनी में कुछ गमले आप लगा सकते हैं और किचन में उपलब्ध धनिया, टमाटर, मिर्ची या पुदीने से किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ फलों और सब्जियों से बने व्यंजन का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इस तरह से बच्चों, आपके और हमारे इस प्रकार के छोटे प्रयासों से हम अपनी धरती को हरा भरा बना सकते हैं। बच्चों, वन महोत्सव सप्ताह हमें जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख भी देती है, जिसमें सबसे पहली सीख है प्रकृति से हमें प्रेम करना सिखाती है। पेड़ पौधे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, जो कि हमें बिना किसी स्वार्थ के शुद्ध हवा, फल, फूल, छाया और जीवन देते हैं। ये आप सभी जानते हैं, इसलिए हमें भी इनसे प्यार करना चाहिए। दूसरी सीख है जिम्मेदारी निभाना। तीसरी सीख है बच्चों, पर्यावरण की रक्षा करना, क्योंकि जब हम पेड़ लगाते हैं तब हम स्वच्छ हवा, सुंदर वातावरण और सुरक्षित भविष्य बनाने में अपना योगदान देते हैं। चौथी सीख है बच्चों, मिलजुल कर काम करना। जब आप अपने शिक्षक, माता पिता सभी के साथ मिलकर इस प्रकार के काम करते हैं तो एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों, पेड़ लगाना एक अच्छी आदत है, लेकिन पेड़ बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिससे हम अपनी धरती को सुंदर और सुरक्षित बना सकें। हमें विश्वास है आप सभी प्यारे हैं, ऐसा जरूर करेंगे। और इस छोटी सी बातचीत के बाद आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बच्चों आइए जुड़ते हैं हमारे उन साथियों से जो कि अपनी प्यारी प्यारी बातों और मनमोहक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम का रौनक बढ़ाएंगे। और आप हैं डिजिटल पब्लिक स्कूल धुर्रीपारा मंगला बिलासपुर के बच्चे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इनसे बातचीत का सिलसिला।
1: नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं डिजिटल पब्लिक स्कूल मंगला से बैरागी मैम बोल रही हूँ। डिजिटल पब्लिक स्कूल मंगला की स्थापना क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्वक एवं संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। विद्यालय ने अपने प्रारंभिक वर्षों से ही शिक्षा अनुशासन और नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कम संख्या में विद्यार्थियों के साथ शुरू किया हुआ यह विद्यालय आज नर्सरी से कक्षा 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने वाला एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बन चुका है। समय के साथ विद्यालय ने अपनी शैक्षणिक एवं भौतिक सुविधाओं का विस्तार किया है तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कला वाणिज्य विज्ञान एवं कृषि विज्ञान संकाय की शिक्षा भी उपलब्ध कराई है। विद्यालय का उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है बल्कि क्या है, जिससे वे शिक्षा के साथ साथ खेल सांस्कृतिक गतिविधियों और नैतिक मूल्यों में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते। ज्ञान मेवामृतम के आदर्श वाक्य के साथ डिजिटल पब्लिक स्कूल मंगला निरंतर उज्ज्वल भविष्य के निर्माण हेतु कार्यरत है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।
0: बच्चों कार्यक्रम की शुरुआत में आइए हम जुड़ते हैं परी सिहोरे से। परी कौन सी क्लास में पढ़ती है?
2: दीदी मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: और आप क्या सुना रहे हैं?
2: मैं आज अरपा पैरी के धार गाना सुनाना चाहती हूँ।
0: सुनाइए।

0: जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। धन्यवाद।
1: आइए बात करते हैं नवदीप कश्यप से। नवदीप कौन से क्लास में पढ़ते हैं?
2: मैम सिक्स्थ में।
1: और स्कूल जाकर क्या क्या करते हैं नवदीप?
2: मैम पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत मस्ती करता हूँ।
1: मस्ती में क्या करते हैं?
2: जैसे कि खेल कूद।
1: कौन सा खेल नवदीप?

0: पसंद है?
1: दीदी क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है।
0: स्कूल में क्रिकेट ग्राउंड है नवदीप?
1: जी दीदी, स्कूल में क्रिकेट ग्राउंड है और मैं और मेरे कुछ दोस्त वहां जाके खेलते हैं।
0: आपका क्रिकेट में फेवरेट खिलाड़ी कौन है?
1: विराट कोहली।
0: क्यों अच्छे लगते हैं वो आपको?
1: दीदी कुछ दिन पहले आईपीएल मैच चल रहा था, आरसीबी मेरा फेवरेट टीम था, विराट कोहली उसमें मुझे सबसे अच्छे लगे। वो बहुत अच्छा खेलते हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वाह, नवदीप आप क्या सुना रहे हैं?
1: दीदी मेरे दोस्तों को मैं कविता सुनाऊंगा जो कि शिक्षा पर केंद्रित है।
0: सुनाइए नवदीप।
1: शिक्षा से जीवन में आता ज्ञान और सम्मान, पढ़ लिख कर हर बालक पाता उज्जवल का एक पहचान। शिक्षा देती नई दिशा, सपनों को देती उड़ान, मेहनत करके आगे बढ़ो बन जाओ तुम महान। गुरुजन का आदर करना, माता पिता का मान, सच्चाई की राह पर चलना यही है सच्ची शान। आओ मिलकर पढ़े सभी, बढ़ाए ज्ञान का मान, शिक्षित होकर हम बनाए भारत देश महान, शिक्षित होकर हम बनाए भारत देश महान। धन्यवाद।
0: और आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं शिवराज कुर्रे से। शिवराज कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
2: दीदी मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ।
0: शिवराज ये बताइए, अभी इस वक्त हम कौन सा सप्ताह मना रहे हैं?
2: दीदी हम सभी मिलकर वन महोत्सव मना रहे हैं।
0: आपके घर में पेड़ पौधे हैं?
2: जी दीदी, मेरे घर में तो बहुत सारे पौधे हैं, फूलों के भी और फलों के भी।
0: फूलों के कौन कौन से हैं शिवराज?
2: गुलाब का है और गेंदे का है, मोगरा है।
0: अच्छा, तो किन किन फलों के पेड़ हैं आपके यहाँ?
2: अनार है और अमरूद है और रामफल का पेड़ है।
0: अरे वाह, आप उनकी देखरेख करते हैं शिवराज?
2: जी दीदी, मैं उनकी देखरेख जरूर करता हूँ। स्कूल निकलने से पहले मैं उन्हें रोज पानी देकर स्कूल जाता हूँ।
0: वाह, बहुत अच्छी बात हमें बताई शिवराज ने। और शिवराज आप क्या सुना रहे हैं?
2: दीदी मैं अपने दोस्तों से पहेलियाँ पूछूंगा।
0: जी पूछिए।
2: दोस्तों क्या आप सभी तैयार हैं? तो बताइए दोस्तों, ऐसा कौन है जिसके दांत है पर वह खाता नहीं है?
3: मैं बताऊं।
2: ठीक है श्रेया, आप बताइए।
4: शिवराज इस पहेली का उत्तर है कंघी।
2: सही उत्तर। दोस्तों और पूछता हूँ।
3: हाँ जरूर।
2: यह बताइए दोस्तों, एक पैर है काली धोती, सर्दी गर्मी रोज है सोती।
3: मैं बताऊं।
2: ठीक है त्रिशा, आप बताइए।
5: शिवराज इस पहेली का उत्तर काले बादल है क्या?
2: नहीं त्रिशा, ये गलत उत्तर है।
3: मैं बताऊं।
2: ठीक है सोहम, आप बताइए।
6: एक पैर है काली धोती, सर्दी गर्मी रोज है सोती। शिवराज इस पहेली का उत्तर है छाता।
2: सही उत्तर दिए सोहम। दोस्तों एक और पूछूं?
3: पूछिए।
2: ऐसी कौन सी चीज है जो खुद तो चलती नहीं लेकिन सबको चलाती है?
3: मैं बताऊं।
2: ठीक है प्रिंसी, अब बताइए।
7: शिवराज जो खुद तो चलती नहीं लेकिन सबको चलाती है वो है सड़क।
2: एकदम सही उत्तर दिए प्रिंसी। दोस्तों एक और पूछता हूँ। हरा है पर पत्ता नहीं, लाल है पर गुलाब नहीं, खाने में तीखा लगता है, बताओ वह क्या कहलाता है?
3: मैं बताऊं।
2: ठीक है आचल, अब बताएं।
8: बहुत आसान पहेली है शिवराज। हरा है पर पत्ता नहीं, लाल है पर गुलाब नहीं, खाने में तीखा लगता है, वो चीज है मिर्च।
2: सही उत्तर। थैंक यू।
0: आइए बच्चों, अब जुड़ते हैं त्रिशा यादव से। त्रिशा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
9: दीदी मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, त्रिशा के घर में पेड़ पौधे हैं?
9: मेरे घर में तो है
0: जी।
9: गर्मी के छुट्टियों में मैं नानी यहाँ गई थी, वहाँ भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
0: नानी के घर आप कहाँ गए थे त्रिशा?
9: दीदी नानी भरनी में रहती है।
0: तो नानी के घर में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं?
9: नानी के घर में पपीता, बीही, केला, आम, अनार, ये सभी पेड़ है दीदी।
0: अच्छा,
9: इनके अलावा गुलाब का फूल है, गेंदा, मोगरा और भी सजावट वाले फूल है।
0: तो आपने देखा नानी किस तरह से पौधों की देखरेख करती हैं?
9: जी दीदी, रोज सुबह नानी उठकर फूलों को और पेड़ों को खाद वगैरह देती है।
0: अच्छा,
9: यही नहीं दीदी, हमारे गांव में वर्षा के मौसम में वर्षा जल को इकट्ठा भी करके रखते हैं। ताकि हम लोग

0: गर्मी के मौसम में उसको उपयोग कर सके।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी हमें त्रिशा ने अपने गांव के बारे में। और त्रिशा, अब आप हमारे नन्हे दोस्तों को क्या सुना रही हैं?
0: दीदी, मैं हमारे नन्हे दोस्तों को, जैसा कि मेरे सभी दोस्त जानते हैं कि अभी फीफा वर्ल्ड कप हम सभी एंजॉय कर रहे हैं फुटबॉल गेम को, उस बारे में अपने दोस्तों को बताना चाहूंगी।
1: सुनाइए।
0: दोस्तों, फुटबॉल केवल एक खेल नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन की महत्वपूर्ण बातें भी सिखाता है। ये खेल हमें दोस्ती, सहयोग और मेहनत का सही अर्थ समझाता है। दोस्तों, जब हम बच्चे एक ही टीम में खेलते हैं तो हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, बातें करते हैं और मिलजुल कर खेलते हैं। इससे हमारे बीच में दोस्ती मजबूत होती है और हम सभी एक टीम के सदस्य होते हैं। इस तरह से दोस्तों, फुटबॉल हमें सिखाता है अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि फुटबॉल अकेले नहीं जीता जाता। अगर खिलाड़ी खुद गोल करने के बारे में सोचे तो टीम हार सकती है। जीत तभी मिलती है दोस्तों, जब सभी खिलाड़ी मिलकर एक साथ खेले, एक दूसरे को पास दे, साथ में काम करें। इससे दोस्तों हम ये सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी, चाहे वो परिवार हो या स्कूल हो, मिलजुल कर काम करना कितना जरूरी है। और यही नहीं दोस्तों, एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए हमेशा अभ्यास करना पड़ता है। गिरना, फिर संभल कर उठना, दोबारा कोशिश करना, यही मेहनत है और अंत में यही चीज हमें सफलता की ओर ले जाती है। इस तरह से दोस्तों, फुटबॉल का खेल हमें यह संदेश देता है कि सफलता पाने के लिए मेहनत, अनुशासन, धैर्य बहुत जरूरी है। थैंक यू।
1: और आइए अब हम बात करते हैं प्रिंसी साहू से। प्रिंसी कौन सी क्लास में पढ़ती है?
2: मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ।
1: अच्छा, क्या क्या विषय आपको पढ़ाए जा रहे हैं प्रिंसी?
2: दीदी, हमको ये विषय पढ़ाए जा रहे हैं, गणित, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत आदि विषय।
1: और आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
2: इंग्लिश।
1: पढ़ाई के अलावा स्कूल में और क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं प्रिंसी?
2: खेल कूद, डांस, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीजें भी होती है।
1: अच्छा, आप लोग जो प्रतियोगिता वगैरह होती है उसमें भाग लेते हैं?
2: जी दीदी, हमारे स्कूल में सभी बच्चे भाग लेते हैं।
1: वाह, और क्या सुना रही हैं प्रिंसी आप?
2: दीदी, मैं हमारे दोस्तों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है ईमानदारी का फल।
1: सुनाइए।
2: दोस्तों, एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती व ईमानदार था। वह रोज स्कूल जाता और मन लगाकर पढ़ाई करता था। एक दिन उसे स्कूल जाते समय रास्ते में बटुआ मिला। उस बटुए में बहुत सारे पैसे और जरूरी कागज थे। मोहन चाहता तो पैसे अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह बटुआ लेकर अपने शिक्षक के पास गया। शिक्षक ने बटुए के मालिक को बुलाया और उनको बटुआ लौटा दिया। बटुए का मालिक मोहन की ईमानदारी देख बहुत खुश हुआ और उसने मोहन को इनाम दिया और उसकी पढ़ाई में मदद करने का वचन दिया। मोहन ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, हमें ईमानदारी और अच्छाई के मार्ग में चलना चाहिए। दोस्तों, हमें इस छोटी सी कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और अच्छाई के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को हमेशा सम्मान और सफलता मिलती है। धन्यवाद।
1: आइए बच्चों, बात करते हैं सोहम कुर्रे से। सोहम, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
3: मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ।
1: सोहम को क्या करना अच्छा लगता है?
3: जी, डांस करने का बहुत शौक है।
1: स्कूल में जब सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं, आप डांस में भाग लेते हैं?
3: जी दीदी, भाग लेता हूँ और प्रतियोगिता में भी भाग लेता हूँ। दीदी, मैं पिछले साल हमारे स्कूल में जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, मैंने डांस प्रतियोगिता में भाग लिया था और पुरस्कार भी जीता था। 4-5 गानों का मिक्स गीत था दीदी, उसमें मैंने डांस किया था।
1: वाह, और क्या सुना रहे हैं आज आप?
3: दीदी, मैं दोस्तों को विज्ञान के ऊपर एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा।
1: सुनाइए।
3: विज्ञान ने है कमाल दिखाया, जीवन को आसान बनाया, नई नई खोजों के द्वारा सारा जगह जगमगाया। बिजली, कंप्यूटर और मोबाइल सब विज्ञान की देन है। रॉकेट लेके चांद पे पहुँचे वैज्ञानिक कितने

0: महान है। विज्ञान हमें यह शिक्षा देता, सच की राह पर चलना है, मेहनत, ज्ञान और अनुभव से जीवन में आगे बढ़ना है। आओ मिलकर विज्ञान पढ़े, नित नए आविष्कार करें, ज्ञान बढ़ाकर अपने देश का ऊंचा हम सम्मान करें। थैंक यू।
1: आइए बातें करते हैं आंचल वर्मा से। आंचल कौन सी क्लास में पढ़ती है?
2: दीदी क्लास 9th में पढ़ती हूँ।
1: अच्छा, क्या दिनचर्या रहती है स्कूल में आंचल?
2: दीदी हमारा स्कूल 11:30 बजे से लगता है। हम सभी इकट्ठा होकर प्रेयर करते हैं। प्रेयर के बाद कक्षा में जाते हैं। अलग अलग शिक्षक हमें अलग अलग विषय की ज्ञान देते हैं। उसके बाद दीदी लंच ब्रेक होता है, हम सभी दोस्त मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद फिर से पढ़ाई होती है। खेल का भी पीरियड होता है दीदी, और फिर उसके बाद हम लाइब्रेरी में भी जाते हैं और अपने पसंद की पुस्तकें पढ़ते हैं।
1: वाह, बहुत अच्छी बात बताई हमें आंचल ने। और क्या सुना रहे हैं आप आज हमें आंचल?
2: दीदी मैं अपने दोस्तों को सुबह स्थानीय श्लोक सुनाऊंगी।
1: सुनाइए।
2: गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवे महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों इस श्लोक का अर्थ है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और महेश भी है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है और ऐसे गुरु को हमारा प्रणाम है। दोस्तों दूसरा श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दोस्तों इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहें, सभी सुख देखें और किसी को भी दुख नहीं मिले। धन्यवाद।
1: आइए बात करते हैं श्रद्धा सूर्यवंशी से। श्रद्धा आपकी हॉबी क्या है?
3: ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, रंगोली बनाना अच्छा लगता है।
1: अच्छा, तो रंगोली आप कब बनाती हैं?
3: जब घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तब मैं रंगोली बनाती हूँ।
1: अच्छा, और क्या सुना रही हैं आप?
3: मैं हमारे दोस्तों को दीदी कविता सुनाऊंगी जिसका नाम है समय का सदुपयोग। समय बड़ा अनमोल है, जीवन का यह अमोल है, जो इसका सम्मान करे सफलता उसके साथ चले। बीता समय न लौटे फिर यह बात समझ लो मेरे मित्र, पल पल का सदुपयोग करो, अपने सपनों को साकार करो, सुबह सवेरे उठो सभी, आलस को तुम दूर करो, मेहनत और अनुशासन से जीवन को भरपूर करो। समय के संग जो चलता है ऊंचाइयों को पाता है, हर मुश्किल को जीत कर अपना नाम कमाता है। आओ हम ये प्रण करे, समय कभी न व्यर्थ करे, हर क्षण का उपयोग करे, जीवन को उज्जवल करे। थैंक यू।
1: आइए अब हम बातें करते हैं यशस्वी पटेल से। यशस्वी, आप जानते हैं आपका नाम बहुत फेमस है।
4: जी दीदी जानता हूँ, हमारे क्रिकेट में भी मेरे नाम से एक प्लेयर खेलते हैं, यशस्वी जायसवाल।
1: अच्छा, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है यशस्वी?
4: हाँ, जी दीदी बहुत अच्छा लगता है।
1: और क्या सुना रहे हैं आप?
4: दीदी मैं हमारे दोस्तों को चाचा नेहरू जी पर प्रेरक प्रसंग सुनाऊंगा। दोस्तों चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। हम सभी बच्चों के वो बहुत प्रिय थे, बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू करके बुलाते थे। वे मानते थे बच्चे देश का भविष्य हैं। उनके जन्मदिन को पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मैं उन्हीं के जीवन से जुड़ी एक रोचक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है दोस्तों, चाचा नेहरू किसी कार्यक्रम में गए, वहाँ बहुत सारे बच्चे उनसे मिलने आए। सभी बच्चे उनसे हाथ मिलाना बात करना चाहते थे। तभी एक छोटे बच्चा उदास होकर कोने में खड़ा था। चाचा नेहरू ने उसे देखा, प्यार से अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम उदास क्यों हो? बच्चे ने कहा, मेरे पास चाचा जी आपको देने के लिए कोई फूल नहीं है, उपहार भी नहीं है। यह सुनकर चाचा नेहरू मुस्कुराए और बोले, आपकी प्यारी मुस्कान ही बेटा मेरे लिए सबसे सुंदर फूल है। यह सुनकर दोस्तों बच्चा खुश हो गया। इस तरह से इस रोचक कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा प्यार अपनापन किसी उपहार से बड़ा होता है। धन्यवाद।
1: और आइए अब हम बात करते हैं श्रेया सूर्यवंशी से। श्रेया आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
5: दीदी मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
1: अच्छा, और क्या सुना रही हैं आप?
5: दीदी मैं हमारे दोस्तों को पुस्तकों के महत्व के बारे में बताना चाहूंगी। दोस्तों किताबों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। किताबें हमें ज्ञान देती है, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ाती है, हमें सही और गलत का फर्क सिखाती है और साथ ही एक बेहतर इंसान भी बनाती है।

0: जब हम किताब पढ़ते हैं दोस्तों, तब एक नई दुनिया में चले जाते हैं। कभी राजा रानी की कहानी, कभी जंगल की सैर, कभी अंतरिक्ष की यात्रा या विज्ञान की बातें। इसलिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत डालें, मोबाइल और टीवी का समय कम करें, अच्छी कहानियाँ और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें। याद रखिए दोस्तों, एक अच्छी किताब एक अच्छे दोस्त की तरह होती है। दीदी, अब मैं हमारे दोस्तों को हमारी प्यारी धरती ये छोटी सी कविता भी सुनाना चाहूंगी।
1: जरूर श्रेया, सुनाइए।
0: धरती हमारी प्यारी है, सबकी ये जिम्मेदारी है, पेड़ लगाओ जल बचाओ यही हमारी तैयारी है। नदियाँ साफ, हवा भी शुद्ध, जीवन हो खुशहाल बहुत। आओ मिलकर वचन ये ले, धरती को रखेंगे हम सभी सुरक्षित। आज हम सब ये वादा करें, धरती का सम्मान करें, ना फेंके कचरा इधर उधर, हर कोने को साफ करें। थैंक यू।
1: बच्चों, ये शानदार प्रस्तुति थी डिजिटल पब्लिक स्कूल धुर्रीपारा मंगला बिलासपुर के बच्चों की। उम्मीद करते हैं इनकी प्रस्तुतियां आपने जरूर पसंद की होगी। आपको बताना चाहेंगे प्रस्तुति और संयोजन मोनाली ठाकरे की। पत्रों के जरिए आप हमें बताएं कि कार्यक्रम रूपी ये छोटा सा सफर आपको कैसा लगा। हमारा पता, कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी नूतन कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर। पिन नंबर है 495006। आप हमें पत्र ईमेल bsp@gmail.com पर भी मेल्स के जरिए संदेश भेज सकते हैं। और इन्हीं बातों के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो इस वादे के साथ कि होगी आपसे जल्द ही मुलाकात, दीजिए आपकी दीदी लिंटा को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। जय हिंद।
2: जय हिंद।
3: नन्हे बच्चों का कार्यक्रम आओ बच्चों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। 10:30 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं नए तराने।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: और इस गीत के साथ ही क्रम नए तराने का यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 11 बजने वाले हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। जयंत जी,
0: जी
1: आज की विविधा का आरंभ, मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का।
0: वाह,
1: एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते। आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया।
1: जी
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी जी
0: रहे
1: जी
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है, तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का, जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया। क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही बहुत
1: और
0: उचित बात आपने कही है मनीषा जी। तत्सम शब्द होते
1: जी
0: हैं,
1: हाँ
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और
0: जी
1: फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं, और वो फिल्म कवि कालिदास
0: आहा
1: है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो, तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है। आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए
0: जी,
1: हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई
1: हाँ
0: दुहाई और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें 12 हाथ, जय चित्तौड़,
1: क्या
0: गूंज
1: बात
0: उठी
1: है
0: शहनाई, सारंगा, नवरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी। हाँ
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है, ये कौन चित्रकार
1: वो
0: है?
1: तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे
0: जी
1: कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी।

0: और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
1: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मनपसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियाँ मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पांव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहां पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

राजस्थान की वीरता का प्रतीक जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया, प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है, इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: क्षमा मैं भूल हूं, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए
0: जी
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर
0: जी हाँ
1: बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार,
0: जी
1: और
0: हाँ
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है, असल में फिल्मकार।
0: जी हाँ बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की है।
1: इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी। एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की,
1: जी
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशौरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था, और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी,
0: जी
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे, और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी
0: जी
1: फिल्म के
0: जी
1: लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था।
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था, और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
1: जी 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन

0: नंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतनानंद ने बनाई और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत। और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है।
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए।

0: हकीकत का ये गीत हमने सुना, हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात मनीषा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज।
0: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कंपटीशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोता, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं चेतन आनंद साहब की, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, और यकीन मानिए उस आवाज को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिल्मकार की आवाज हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा, और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका, और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2,000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपने जाने कुर्बान की।
1: कर चले हम पिता जान तन।

0: तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतनानंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या किया था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
4: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो, कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आगे तो धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सेप्ट करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में।
5: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया,
4: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीज़ें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, छोटी छोटी चीज़ें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीज़ें उसने बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है, स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुन करके बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीज़ उन्नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल
0: जी
1: की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं।
0: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे। और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में, ये
0: जी,
1: बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था,
1: जी
0: बहुत ही हिट था उन दिनों। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे,
1: जी हाँ
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे, और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है श्रोताओं। जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा। बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं।
0: जी,
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था,
0: जी
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा। जो आम तौर से लोग बहुत ज़्यादा सीख कर गाते हैं, उस
0: जी
1: तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है,
0: जी
1: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होना। इस तरह बचपन से मुझे काफ़ी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊँगा
0: कामयाब होंगे।
1: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर BCOM तक पढ़ाई की, खींचातानी करके।
0: अच्छा,
1: हाँ, घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फलां जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नज़र नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं। तो मैंने फिर भी काफ़ी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो, वक्त बर्बाद नहीं करना है,
0: मुंबई चले आना।
1: हाँ। बॉम्बे आने के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा, और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे। कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ, यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा, अब भी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना।
0: किसने कहा था?
1: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो, तो वो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया
0: अच्छा,
1: रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग है फिल्म मर्द के लिए, अमिताभ बच्चन।
0: अच्छा,
1: मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। और मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया, तो रिस्पांस इतना अच्छा था, क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और जाकर
0: जिक्र करते
1: हाँ
0: हैं।
1: कि अरे फला एक नया लड़का है, उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अन्नू मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचमदा के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म, ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
0: अच्छा, मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया,
1: नहीं
0: तो
1: इसका
0: कैसे मिला था ये
1: इसका तो
0: मौका?
1: कमाल है। आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और हूं और आगे भी रहूंगा।
0: रहेंगे।
1: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के, तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर,
0: जी जी
1: लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशि लाल नायर, कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बरसी है, और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है।
0: अच्छा,
1: कि रफी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन, तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कही है या रफी साहब की चाहत थी क्या थी, कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद

0: रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा, मुझे मुन्ना कहते हैं ना
1: जी,
0: प्रिट नेम है, बट मोहम्मद अजीज मेरा नाम है। तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग
1: जी,
0: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है। तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर, इवन म्यूजिशियन, जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं क्योंकि रोज का काम है उनका, वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल, एक तो सन्नाटा छा गया।
2: न फनकार तुझसा

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व, गाना जब बनता था ना तो जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी। कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया हो, अच्छा
1: नहीं,
0: लगा?
1: अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या।
0: जी।
1: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को,
0: जी
1: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें हैं मिला के अमिताभ बच्चन है।
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
1: आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए,
0: जी
1: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया।
0: जी जी
1: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ
0: क्या
1: पूरा
0: बात
1: हो गया।
0: है।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है, वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था?
1: मैं एक दफा गया गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई SD बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था,
0: जी
1: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने
0: जी
1: किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए नए लड़ जाइए, ये सब
0: जी जी
1: बिहार का सिचुएशन देखकर,
0: जी
1: पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब, जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला, देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो।
0: अच्छा,
1: वहाँ गया मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर, और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अदना एक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज दे कहाँ है, और गाने के बोले रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में बताइए।
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था। वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे, एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा। इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं, एल्बम 60-70 हैं कवालियों के,
0: जी,
1: नात मनकबत जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी
0: जी हाँ
1: संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है, वो
0: अच्छा
1: सारे हनुमान चालीसा सारा। टाइटल भी आपने सुना होगा,
0: हाँ
1: मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है
0: जी
1: ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं। इतने मुश्किल, पूरा चौपाइयां दोहे जो जो थे वो सारे वो सब मैंने गाया।
0: जी
1: मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
0: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए, कौन कौन से नहीं।
1: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए हैं।
0: अच्छा
1: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं,
0: जी
1: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो इसमें चार सिंगर हैं। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं चार चार पांच पांच गाने एक फिल्म में गाता था।
0: जी
1: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2-2.5 हजार है और 4 हजार के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने,
0: जी जी
1: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10 हजार के ऊपर गाने हैं मेरे,
0: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए हैं?
1: 17 या 18।
0: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
1: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब की रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है। क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते
0: मगर मनीषा जी,
1: हैं।
0: अगले हफ्ते हम जरूर वापस
1: वापस
0: आएंगे विविधा का
1: आएंगे।
0: अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में, और हम जा रहे हैं

0: जाते
1: मगर मनीषा जी,
0: हैं।
1: अगले हफ्ते हम जरूर वापस
0: वापस
1: आएंगे विविधा का अगला
0: आएंगे
1: अंक लेकर के।
0: जी हाँ। तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में, और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को, आपकी मित्र मनीषा जैन,
1: और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।
0: नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान

0: भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।

जमाने को दिखाना है। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: समीर के बोल आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। दामिनी फिल्म का ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आशा भोसले और येसु दास की आवाजों में दौड़ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज में ये गीत।

दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विनोद राठौर और साथियों की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत क्रिमिनल फिल्म से।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में क्रिमिनल फिल्म का ये गीत आपने सुना। इंदिवर के बोल, एमएम क्रीम का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा होता है एक इबारत हम भेजते हैं और उसे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और उस इबारत को देखकर आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या होंगे, कौन से शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जा सकते हैं। तो आज की इबारत, हालांकि आपने में से बहुत से लोगों ने तो इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम एक बार बता देते हैं वो इबारत कि कोई फुर्सत के पल ढूंढता है तो किसी को नौकरी की है तलाश, कोई सबसे दूर होकर खुश होता है तो किसी को चाहिए सब आसपास, उम्मीदों आशाओं चाहतों और जरूरतों का फैला हुआ है आकाश, कभी यहाँ दुख की बदली छाए तो कभी फैले भोर की उजास। क्या कहता है आपका मन, क्या है मुकम्मल जहाँ किसी के पास। तो ये है आज की इबारत जिनमें से शब्द चुनने हैं आपको और इन शब्दों को चुनकर आपको बताना है कि कौन से गीत शामिल हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वैसे हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं और बता भी दिया है कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक गीत जो आपकी और हमारी लिस्ट में बिल्कुल मैच हो रहा है बातों के साथ भी और जज्बात के साथ भी, वो गीत तो कार्यक्रम का पहला गीत ही बनने वाला है। वैसे हमारे एक साथी कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है, किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यही है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम अपनी इन अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती, जो मिलता है वो है अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तानों में ही अक्सर सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती हैं और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और साथी कहते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, जो गर्मी में सूरज से निकलती कड़ी धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव ढूंढता है तो ठंड के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए वही सूरज की तलाश करता है। इसलिए कहा गया कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। बिल्कुल सही बात आप दोनों ने कही। हम लेकिन आपसे ये पता करना चाहते हैं कि भाई क्या वाकई सारी चीजें अधूरी अधूरी रहती हैं जीवन में, या कहीं ना कहीं हमारा मन इस तरह से चलता है या इस तरह से कहें कि काम करता है कि उसे हर चीज अधूरी लगती है। जो भी चीज पूरी हो जाती है उससे आगे क्या, ये सोच जब हमारे मन में होती है तो हमें कई चीजें अधूरी लगती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और ये भी बताइए कि आपको किस चीज की तलाश है, जो भी तलाश हो सकती है हमें बताइए। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। आपको बताना है कि इसमें आवाज किसकी है, क्योंकि हमें तलाश है इस जवाब की।

ये गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म के। इस गीत में आपने सुना भूपिंदर और लता मंगेशकर की आवाज को, जो कि हमने आपसे पूछा था, सवाल का सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथियों से हम ये भी पूछना चाहेंगे, इस गीत में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जा रहा है या कहा जाता है जो कि एक ख्वाहिश होती है कई बार, जैसे छत पर पड़े रहकर या सोकर तारे देखना या आसमान में मतलब जाड़ों की धूप सेकना, तो इस तरह की बहुत सी बातों का उल्लेख इस गीत में हमने सुना। तो क्या आपने इसमें से बहुत सारी चीजों का अनुभव लिया है या कुछ की उम्मीद या तमन्ना अब भी आपके जीवन में है, ये हमें बताइए। और हमारे साथी ने कहा कि एक मुकम्मल जहां बनाने के लिए लोग अपनी आशाएं, उम्मीदें और चाहतों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई फुर्सत के पल ढूंढता है, कोई नौकरी की तलाश में, कभी दुख तो कभी सुबह की पहली किरण। हमारा भी मन कहता है कि सूरज की भांति अंधेरे को मिटाकर जीवन में रोशनी भर देंगे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का माया जाल है, एक धागा सुख का तो 100 धागे दुख के होते हैं। उम्मीद और आशा के साथ हर एक को सुख की तलाश रहती है, फिर भी हमें कभी खुशी, कभी गम, कभी धूप, कभी छांव को स्वीकार करना पड़ता है। राजा से लेकर रंग तक संसार में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं होता। फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं,

0: जीवन में अक्सर गम के साए नजर आते हैं, सह लेता है हर दर्द को जो हंसकर, असल में वही लोग इस जहां में मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन वाकई हर चीज में सिर्फ दर्द सहने वाला ही इस जीवन में सुखी रहता है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो लगातार करता है, लेकिन जिस परिस्थिति में है उसमें भी एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून तो होता ही है। वरना तो हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इस गीत में भी है ढूंढने की कोई बात। हमें बताइए किसने लिखा ये गीत और फिल्म में कौन है इस गीत में नायक।
1: डियर सर, सेवा में निवेदन है।

नौकरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज और उन्हीं पर फिल्माया गया है ये गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे एक साथी कह रहे कि आज की इबारत तो जीवन दर्शन जीने की कला, जरूरतें, दुख सुख, अकेलापन, रंगीन जिंदगी और अपनापन बनाए रखने वाली जीवन शैली को बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह, क्या बात आपने कही। हमारे और साथी कहते हैं कि हम तो हर मौसम में वही करते हैं जो गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म के गीत को हमने जब दिल ढूंढता है, फुर्सत के रात दिन वाले गीत पर हमने पूछा था ना कि जो जो कहा गया है उसमें से क्या क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने ये बात कही है। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है, कभी संतोष मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन नवीन इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये मुकम्मल जहां बाहर नहीं मिलेगा, जो जमीन मिली है वो, जो आसमां मिला है उसी में थोड़ा सुकून ढूंढना पड़ता है। किसी का दर्द बांट लो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ, तो शायद अपना अधूरा

भी पूरा लगने लगे। वहीं मालिक साथी ने कहा कि अभी तो ढूंढना पड़ता है, जब धूप तेज होती है तो बाहर जाकर पेड़ों की छांव ढूंढनी पड़ती है। एक और साथी लिखते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ये एक चाहत होती है कि कुछ पल सुकून के मिले। एक गीत मुझे बहुत याद आता है, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, दिल चाहता है एक मुट्ठी आसमान, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस तरह से उन्होंने बहुत से गीतों का उल्लेख किया। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जिंदगी शायद इसी का नाम है, हर किसी की अपनी तलाश है, अपनी चाहत है, अपनी कहानी है। कोई फुर्सत के लम्हों में खुश रहता है तो कोई काम करके खुशी ढूंढता है, तो किसी का संसार अपनों की मौजूदगी से ही महक उठता है। कभी दुख के बादल घिराते हैं तो कभी उम्मीद की किरण आती है, लेकिन अधूरे पलों को भी खूबसूरती से जी लेना जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जहां सच शायद यही है कि हर इंसान किसी न किसी तलाश में है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को सफलता, किसी को कोई अपनों की भीड़ में अपना होना चाहता है, तो कोई कुछ पल अकेले जीना चाहता है। इच्छाएं पूरी तो होती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यही जीवन का चक्र है। इसलिए मुकम्मल जहां शायद किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो अपने आप में संतोष, कृतज्ञता और प्रेम ढूंढ लेता है, उसके लिए ये हर अधूरापन एक सुंदर सफर बन जाता है। क्योंकि जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे मुस्कुराकर जीने का नाम है। इतना बड़ा संदेश इतनी अच्छी तरह से आपने लिख भेजा, और वाकई ऐसा होता है कि अगर हम कुछ ढूंढते रहते हैं तो जीवन भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन जैसे कस्तूरी अपने कस्तूरी मृग अपने कस्तूरी को ढूंढती रहती है जीवन भर, जबकि वो उसी के पास होती है। तो हर शांति जो है वो हमारे अंदर ही है, और ऐसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं, लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमें बताइए जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किस फिल्म का गीत है, किसकी आवाज में है, नायक नायिका का नाम बता दें तो क्या बात है।

0: कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हमने पूछा था भाई कौन नायक नायिका हैं इस फिल्म में, बता देंगे तो हमारे साथियों ने बिल्कुल बताया, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी इस फिल्म में नजर आती है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे कि छत पर लेटने के दिन अब लद गए हैं, वो चांद तारों को निहारना, सर्दी में गुनगुनी धूप का आनंद लेना तो आज भी लेते हैं। तो ठीक है, वो दिन लद गए तो उसका कारण तो हम बाद में जान सकते हैं आपसे अगर आप हमें बताएं। वही लेकिन हमारी साथी कहती हैं कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते न सपने न लोग न जिंदगी, हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। किसी के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। शायद यही जीवन है, तो जो मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ ना मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो। हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा देते हैं लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में कुछ कमी है तो घबराइए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह क्या बात आपने कही। हमारे और साथी बैठ कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों, जरूरतों, आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक ऐसा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर पल पल बदलते रंगों से सराबोर रहता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाए रखते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का सबसे खूबसूरत काव्य है। और एक साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है, जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है, जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी न किसी चीज की कमी तो बनी ही रहती है। हमारे और साथी कह रहे हैं कि इंसान की तरह, आकाश की तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत हैं। एक जरूरत पूरी होती तो दूसरी चाह जन्मती। इसी तरह इसी आकाश के नीचे कभी उदासी और असफलता छा जाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का शाश्वत नियम है। मानव जीवन के सबसे गहरे सच और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सारी हो रही है लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या कोई चीज ढूंढी है बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी हो, ये बताइए। चाहे वो हो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज की तलाश सबसे ज्यादा की है अपने जीवन में और क्या वो आपको मिला या मिली, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, यानी नायक नायिका बताइए, फिल्म का नाम भी।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में,

घरौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत, और इस फिल्म में नायक नायिका जरीना वहाब और अमोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या कभी अपने जीवन में कुछ ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे एक साथी ने तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढने की खूब कोशिश की, अभी भी जारी है। तो इनका जवाब भी हम उसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख दुख की बातें भी हो रही हैं, और बातें हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, क्या हमारे जीवन में हर चीज मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज्यादा किसी चीज की चाह नहीं है, या जिन चीजों की चाह भी है वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से कोई एक बेचैनी सी नहीं है, या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मन में खलबली नहीं मची रहती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक का सफर जीवन रंगमंच है। इससे पल इसमें हर पल हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार आते जाते हैं, मुकम्मल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे एक साथी का कहना है कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन, फुर्सत के पल होने चाहिए थे, लेकिन घर की होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धनपत्नी ने लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट पकड़ा दी है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आज सभी आइटम नहीं आए तो अदरक इलायची वाली चाय बना के नहीं पिलाऊंगी। भाई बड़ी खतरनाक बात हो गई है। तो और वो कह रहे हैं कि मैंने भी कहा जो हुक्म मेरे आका, पर मार्केट

सुरीला सफर प्रोग्राम सुनकर ही जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए आप। और आप लोगों ने संडे के लिए क्या लिस्ट बनाई, क्योंकि अक्सर हम संडे के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे काम इस रविवार पूरे कर देने हैं, क्योंकि रविवार को होता है ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन। और आप कैसे बताते हैं अपना ये छुट्टी का दिन भी हमें बता सकते हैं आप। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमने आंगन में चार पहिया खाट पर आसमान के नीचे तारों को देखकर मीठी नींद में सोने का आनंद खूब लिया है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल ढूंढता है इस गीत के अंतरे में जो जो बातें हुई वो बहुत सी चीजों को, बहुत सी उम्मीदों को बताते हैं। और उनका कमेंट थोड़ा खो गया है, लेकिन उनका यही कहना था कि जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की उम्मीद, इस तरह की ख्वाहिशें होती ही हैं, उसमें से कुछ तो जरूर पूरी हो चुकी होती हैं बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों के लिए बाकी होती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इस गीत के विषय पर आपने जो पूछा उसकी एक बात वो है, वादियों में खामोशी सुनने की उन्हें चाह है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी ये चाह जल्दी ही पूरी हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नेहा जी, इच्छाओं की सूची पहले बहुत लंबी थी, अब थोड़ी छोटी कर ली है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब तलाश समाप्त होती है तो दुनिया नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। आम चीजें भी खास लगने लगती हैं, सुबह की धूप, हवा का झोंका या किसी की मुस्कान, हर छोटी चीज में एक गहरा रस महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वाकई जब हम अपने जीवन में कुछ अलग तरह से सोचने लगते हैं, नजरिया बदलते हैं, तो बहुत सी चीजें भी बदलती जाती हैं, हालांकि वो वही होती हैं जो पहले भी हुआ करती थी। तो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि हमें अगर जीवन में किसी भी चीज की तलाश नहीं है तो कोई एक ऐसा ही गीत हमें मिला है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि आपकी आज की लिस्ट क्या थी काम की, रविवार की कोई काम की लिस्ट बनाई थी आपने छुट्टी की, या आपका आपकी छुट्टी सप्ताह के किसी और दिन होती है, ये आप बताइए। और ये भी बताइए कि किस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जानवीन से लिखा, रोशन का संगीत, मन्ना डे, आशा भोसले, बत्तीश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया। अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वही हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुश नसीब हूँ जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया। पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहाँ है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरुजन की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुनना सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना। ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं। और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना, इस फॉर्मूले के पीछे हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं पर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का जरूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाजार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता, हमारे यहाँ बाजार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मानसून की पहली बरसात शुरू हुई और लगभग 1 घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई है। इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिजायरलेस होना चाहिए और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान जरूरत से ज्यादा ईश्वर से मांगता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के जमाना देखा। तो ये इनका कहना है। साथ ही कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा भाई, सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर। कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे।

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारी एक और साथी कहती है कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है। किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती। जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती है और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहते और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी जरूरतें। कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कदर नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो कोई महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है और अपने हिस्से की कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है। मिला जो कुछ भी उसे ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की रजा मान लिया, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाह थी जिसके लिए दिन रात एक कर दिया और अपना घर का सपना पूरा हुआ, पर कुछ सालों वहां रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहां नहीं रहते, पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमकौर साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाश की थी और आज से 10 साल पहले हमें हमारा खुद का घर मिला। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में खिलौना, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते वक्त माफी। असल में हम सब अपनेपन के भूखे हैं। कोई कहे तू है ना टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट कर ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपने कही। हमारे एक और साथी ने इतवार का क्या प्लान है, ऐसे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाएं और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें बताइए। और हमें जरूरत है कि इस गीत को किसने गाया है, ये भी आप हमें बताएं।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने के आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं, इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो, लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कहने की आज इतवार है, फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में, गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कहने की हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी, उनके फरमाइश की, एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूँ, पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है। तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा, वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की, क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके स्थान पर भी बहुत जल्द

बारिश आएगी ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी को देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत सच में लाजवाब है। सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रही हैं कि किस चीज की जरूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं, पल पल पल कैसे कटेगा ये हमने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने एक किस्सा लिख भेजा है कि जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और आईनी के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयां उलझने सामने आती गई और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि 4 हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं, क्योंकि 4 हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जरूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति इन जरूरतों को जरूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया। फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना, के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक लिंटोन की आवाज में आपने ये गीत सुना। इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे, हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ। भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की जरूरत है क्योंकि हम अकेले हैं। कहने को तो सभी ही हैं एक परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। मैं पत्नी को मिस कर रहा हूं जो अब नहीं है। बिल्कुल, आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं। आपको समय पर चाय, नाश्ता, खाना तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से जरूर मिल जाएगा। हमारे साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती है और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूं। भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं। तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं। हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं?

खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है और इसका बड़ा ही मजेदार इतिहास है। दरअसल सन 1947 में 20 से 27 जुलाई तक एक जाने माने वनस्पति शास्त्री MS रंधावा ने वन महोत्सव आयोजित किया था। इसका मकसद ये था कि देश हरा भरा हो। सन 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव को सरकारी तौर पर आयोजित करने का फैसला किया। इसका मकसद ये था कि वनों की कटाई को रोका जाए, धरती को हरा भरा बनाया जाए और लोगों को प्रकृति के करीब लाया जाए। और इस तरह से पूरे देश में हर साल वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन वन महोत्सव का मतलब ये नहीं कि केवल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में पौधे लगाएं, रस्म अदा करें और उसके बाद उन्हें भूल जाएं। जब कभी भी हम पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करें, उन्हें संजोएं, संभालें, बड़ा करें और इस तरह से जिम्मेदारी निभाएं अपने पौधे के प्रति।

दरअसल भारत में लगातार हमें पेड़ पौधे लगाकर पूरे भारत को हरा भरा बनाना है, क्योंकि भारत सरकार ने 2030 तक 2 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का फैसला किया है। वैसे भी बीते 7 वर्षों में हमारे देश में जंगल का जो आवरण है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है। तो हमें पौधे इसलिए लगाने हैं ताकि वो ऑक्सीजन पैदा करें, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, धरती को पकड़ कर रखें ताकि धरती का क्षरण न हो, और दूसरा हरियाली की ये सुहानी चादर मन को सुकून दे, आनंद से भर दे और धरती को गर्म होने से भी बचाए। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा है कि मौसम भी अब एक तरह से पटरी से उतर गए हैं। धरती के इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए धरती के सारे मनुष्यों को कोशिशें करनी है। एक सामान्य इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? तो ये कि अपने महत्वपूर्ण दिनों पर, चाहे वो शादी की सालगिरह हो या किसी का जन्मदिन हो या कोई खास मौका परिवार का, तो पौधा लगाइए और उस पौधे के पास एक पट्टी लगा दीजिए कि ये किस मौके पर लगाया गया पौधा है। क्या आप ऐसा करते हैं?

त्रिवेणी में आज बात वन महोत्सव की और वन महोत्सव के बहाने पौधे लगाने की। दरअसल पौधे लगाने की जिम्मेदारी सरकारी तौर पर ही नहीं निभाई जानी चाहिए। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास पौधे लगाएं। अब आप ये कहेंगे कि ऊंची इमारतों में रहने वाले हम सभी लोग अपनी बालकनी में गमले रखते हैं और वहां पौधे लगाते तो हैं, पर इतने से काम नहीं चलने वाला है। नए नए निर्माण के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है, इसकी भरपाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सच है कि तरक्की जरूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सुख सुविधाएं बनाई जाएं, शहरों को एकदम सलीकेदार बनाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हरियाली की कीमत पर हो। उस शहर के तमाम रहवासियों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने शहर को हरियाली से ढका हुआ बनाए रखें। जितने पेड़ पौधे तरक्की की इस मुहिम में तबाह हो रहे हैं, उन सब की भरपाई करनी हम सबका कर्तव्य है। हम सभी को इस दिशा में सोचना होगा।

ये थी आज की त्रिवेणी, जिसमें हमने वन महोत्सव की और पेड़ पौधे लगाने की बातें की। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि, 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव।

0: सेवाओं का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
3: The significance is immense.
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जो AI की क्षमताओं

0: उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
2: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
3: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना ले ले चला। सावन में
1: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन।

0: के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
2: शाम

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहु बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: होशियार, होशियार, जाने वाले

अमरीकी अंदाज भी सीखे हम यारब के राज भी सीखे अमरीकी अंदाज भी सीखे हम यारब

सारी दुनिया में अपनी जयकार यहाँ से हम है राजकुमार आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है

हमसे मोहब्बत हमसे जवानी रंग भरी है अपनी कहानी हमसे मोहब्बत।

0: जरा होशियार, यहाँ के हम है राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम है राजकुमार। हाय हाय जाने वाले।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गुमनाम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में पसंद का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले जान लीजिए इस कार्यक्रम के नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ, सूर्यकांत, सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी की पसंद पर सुनिए ये गीत जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म शिकार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहु बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से, आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है।

0: आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत, जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो।

दस नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाले ये बताएं, इससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंगी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की। और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए, ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
3: हाँ हाँ मालविका,

0: पूरी कर दो इनके मन के साथ।
1: कौन रानी इरावती?
0: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
1: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
0: बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र की साथ पूरी।
3: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
4: भला हम कौन होती हैं
3: महाराज की साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
4: चलो।
0: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
1: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था। मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
2: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
0: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है, तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
2: परंतु देवी,
0: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
2: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
0: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़ी का, हम चलेंगे।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकलावलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देके कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया महाराज। कोई छिपकर सुन न रहा हो, कान में सुनिए। मैं नाग को बांध करके नाग मुद्रा लेके
1: ओ जी हो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने। बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझाए देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आइए गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे श्यारी, गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी, भागकर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
6: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल शरीर का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण

0: मुसीबत में पड़े हैं।
1: अरे फांसी खाने में तो दबोच लिया।
2: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
1: मेरा तो अन्न ना करता जा रहा है, सारे शरीर में फैलता जा रहा है।
0: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
3: अरे गौतम तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
1: महाराज मैं आपका मान सका हूँ, सुना तो मेरे बात मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
2: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
4: महाराज महाराज वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
2: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
4: देव की कैसी आज्ञा।
1: देव कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुकी हो वो क्षमा कीजिए।
0: नहीं नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
4: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
0: मेरी मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
4: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम
5: जैसे ये अंगूठी मुझे दो। कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से ब्रह्मवन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन?
1: हाजी गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
2: ये देखो महारानी की अंगूठी।
1: अंगूठी तो उन्हीं की है।
2: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
1: ओह,
2: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
1: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
2: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया। और
1: ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
3: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
2: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं लाया।
3: जो आज्ञा।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है। अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
1: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है।
0: हा?
1: तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
0: स्वामी की जय हो।
1: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीख भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
0: क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
1: ये छोटी रानी इरावती है।
0: ओ सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
1: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
0: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज

0: सबसे अधिक प्यारी हैं।
1: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
2: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
3: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रो उठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
0: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी? स्वामी की जय हो।
3: प्रिय,
4: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
3: मित्र, क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी हैं, परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है हमारी।
1: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
0: सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न में भी कभी भेंट नहीं हुई।
1: महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
3: उत्तर क्या दें बकलावल का? हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
4: अरे बकला वालिका, उधर देख, उस नन्हे अशोक के पत्तों को वो हिरण चले जा रहा है। आ, आ, आ, उसे भगाने चल
1: चले।
4: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र ग्रह के द्वार पर हूँ।
5: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
6: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
5: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
6: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
5: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
6: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
5: अरे पगली, किसी दूसरे से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आज ही गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका।
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन।
0: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंभे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
5: महाराज रुकिए, उधर ना जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: मैं कहाँ है सांप?
5: महाराज आगे ना जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
6: महाराज रुकिए।
1: कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
4: देवी इरावती,
6: सखी बकुला बलिका, ये किसाना।
1: बकुला बलिका, तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया।
2: ओ, सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर के सामने आके रहा।
7: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित।

0: देव
1: है ना?
0: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई? रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए। सेकी बकुला वाली का मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
2: अच्छा तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
3: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे प्रश्न देता?
2: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
4: सुनो राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहरे अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 लाते भी नहीं दी थी कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहरे अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहरे अशोक के फूलने का उत्सव मनाएंगी।
5: सुनो सुनो एक और हर्ष समाचार, वीर सेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोटि के कलाकार सेवक भेजे हैं। विदिशापति विदर्भ विजेता महाराज अग्निमित्र की जय।

0: शुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निमित्र
1: प्रमद वन उत्सव

0: जय हो, विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव, विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
0: आपके मन की साथ पूरी हो। आर्य पुत्र, फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
2: महाराज की जय हो। विधर्म से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
1: ले आओ।
2: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
3: महाराज की जय हो, महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
3: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
0: मालविका, आगे देव, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
3: अरे राजकुमारी, आप यहाँ? जय हो, राजकुमारी की जय हो।
0: अरे अरे मालविका, राजकुमारी।
1: मालविका राजकुमारी?
3: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
1: कैसे?
3: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
0: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
1: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?

0: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
1: फिर क्या हुआ?
0: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
2: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
1: भगवती आप?
0: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
3: हाँ वही है। प्रणाम भगवती।
2: कल्याण हो।
1: भगवती क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
2: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
1: अच्छा अब कुछ बात समझ में आने लगी।
2: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
4: मंत्री जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यहाँ तो दिन में जैसे रात हो गई हो।
1: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
2: भैया आप भी तो।
1: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
4: अरे क्या हुआ? क्या सब लोग एक रुक क्यों गए?
5: जान जारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
4: वही हुआ ना जिसका भय था।
1: जाइए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।

0: हमारे सैनिक एक एक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लघु लोहान होकर इधर आ रहे हैं और डाकुओं ने भैया को अकेले ही खेल दिया है।
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
2: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
3: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
1: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
1: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।
5: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधे राज्य का शासक बना दिया है।
6: उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।

0: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
1: पिताजी का पत्र, लाओ देखें।
2: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
1: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में 1 वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनु ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
2: फिर क्या हुआ?
1: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
3: महाराज महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
2: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
1: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञसेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
2: जयसेन।
0: आज्ञा देवी।
2: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मोह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, फिर कोई विघ्न न डाले।
0: देवी की जैसी आज्ञा।
2: मालविका इधर आओ। प्रस्तुत हूँ देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लज्जा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
4: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लज्जा ही करते हैं।
5: श्रोताओ, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
6: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से

0: ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व, पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे, उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही

0: था कि अर्धसत्य के बाद 1 हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो आठ
0: और
1: दस साल तक चलता रहा
0: हाँ, जो आठ
1: मामला।
0: दस साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलेन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
0: है,
1: लग जाता है।
0: टैग लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म दो दो तीन तीन साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी, इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8 10 12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज, जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इट सेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था भट्टाला दिली ओसरी ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा यू नो ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था, उसका भी एक किस्सा है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं, बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड
0: तो
1: जेंडर।
0: थर्ड जेंडर जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है, अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी
1: ठीक है,
0: लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहां गाना सुनते हैं।

अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था

0: हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व, जो फेमिनिन कैरेक्टर था, वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे। हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और
1: ओ
0: कहा कि, मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा जी काम कराई जा तुला, इस तरह के काम करोगे तुम? हाँ, तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी
1: कि एक बार फिर से वो
0: पड़ेगी।
1: जनाना रोल आ
0: हाँ,
1: रहा है।
0: जनाना रोल आया है, तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट
1: अरे
0: हमें
1: गजब।
0: बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है।
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है, अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस
1: और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी
0: ज्यादा।
1: रीलें चलती हैं, और
0: हाँ
1: जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं
0: करेक्ट।
1: जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस, ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये
1: बिल्कुल।
0: काफी सारी फिल्में हैं
1: ये
0: जो
1: वो
0: उस वक्त,
1: एटीज वाला दौर जो पूरा
0: हाँ हाँ
1: था।
0: हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्मजी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला, एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो
0: तो
1: चलती
0: वो
1: है।
0: चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी, या पापा और मिथुंदा, के या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वाज अ फिल्म लाइक दैट, कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे, और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर, बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी।

0: मैंने कहा क्या हुआ क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे, और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है, और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में
1: और बहुत खूंखार रोल था वो
0: बहुत
1: उनका।
0: ही ज्यादा काला नाग, काला नाग
1: हाँ
0: राइट, बीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ रोल
1: हाँ
0: था।
1: और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है।
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट। ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना,
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे। हाँ, और
1: अच्छा।
0: दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक
1: अरे
0: डायलॉग। तो
1: गजब।
0: बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल। उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते
0: हाँ
1: हैं जो
0: हाँ
1: कि एक विलेनिश रोल
0: रोल
1: होता है,
0: है।
1: खतरनाक
0: हाँ,
1: वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना
0: ओ मैं वो
1: मामला।
0: फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है,
1: बिल्कुल।
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है,
1: सिर्फ सुना है।
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूं वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश,
0: ओ
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है,
0: करेक्ट
1: वहां से
0: करेक्ट,
1: वो पूरी यात्रा जो है वो आगे
0: हाँ
1: बढ़ती है।
0: हाँ
1: तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहां अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ
0: करेक्ट,
1: आखिरी
0: आखिरी
1: रास्ता
0: रास्ता
1: फिल्म में।
0: में।
1: वो भी बड़ा खतरनाक रोल था,
0: बहुत ही बहुत ही, और उस
1: बहुत ही
0: समय अमित
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ
1: ऑफ
0: था,
1: कोर्स,
0: कलाकार
1: बिल्कुल।
0: के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट, सब लोगों को ऐसा जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे, और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे क्या करना है उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ
0: एग्जैक्टली
1: बच्चन के सामने
0: सामने।
1: विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे, जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिव जी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं।
0: पूरी
1: वो
0: तरह से।
1: जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है।
0: पूरा पूरा, इस दैट इज अगेन बिकॉज जैसे मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूं वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना है
1: अपना फर्ज निभाओ।
0: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट, तो
1: बिल्कुल।
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक, लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम

0: काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म हो गई बात। और जो आप नफरत की बात करते हो, तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफ कोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे, वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
1: अच्छा, स्कूल
0: तो
1: में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे, बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी, बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अब मैं जितनी
1: अच्छा
0: बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है। और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो। ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी, और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो, करेक्ट।
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था? जब शूट्स होते थे घर पर, क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था। मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से, हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत।
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे 1-1.5 घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा,
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6-6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे, और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना, बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से
1: बिल्कुल
0: आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद बाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे, पर

0: धीरे धीरे समझ में आया, वो हमें ना हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है, या आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं बिल्कुल नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे।
1: सख्त मनाही।
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया, तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है, और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम चार पांच फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्होंने देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहाँ पर बीबी का मकबरा भी है, तो एक तो जहाँ पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहाँ पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़, एक घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे, और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए।
1: अरे अरे अरे।
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए, वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते।
1: ओहो,
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, उसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे,
1: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: फिर वो जवाब बाद में।
1: हाँ, वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उनपे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी,

0: जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट। तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
1: बिल्कुल, वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी।
0: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था, और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
1: बिल्कुल
0: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन, और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन,
1: उनको
0: जो
1: डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे।
0: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो, और आपका एक एक ही ग्राफ होता है, राइट, कि हीरो आएगा, आपको मारेगा, खत्म, राइट। पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
1: आंटी नंबर वन।
0: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के,
1: हाँ,
0: ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ
1: तो मुझे
0: काम
1: वो
0: किया,
1: दृश्य याद आ गया
0: बिंदु जी के
1: जिसमें वो
0: साथ
1: सो रहे
0: काम
1: हैं और वो
0: किया।
1: जगाने आती
0: हाँ। वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे, पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्में दिखाऊं कैसे उसे, है ना, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत। तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: हुकूमत सड़क
0: अर्धसत्य
1: है
0: दिखाऊंगी,
1: ना।
0: ये
1: बिल्कुल,
0: सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत
1: वो
0: ही अलग
1: तो क्या लीग थी वो।
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार। एक
1: हाँ
0: तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और
1: हाँ
0: टाइमिंग
1: हाँ
0: कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं, वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी,
1: बिल्कुल,
0: पर वो
1: लेकिन
0: इतनी
1: ये कुछ
0: ओवर द
1: अलग
0: टॉप नहीं
1: था।
0: थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी,
1: यस
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था, तो
1: अच्छा,
0: एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं, फिर दिलीप ताहिल जी थे उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी,
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी
1: हाँ,
0: काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए।
0: प्लीज।

0: कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे दोघे। ये जो फिल्म थी एनएफडीसी की फिल्म थी,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, और सुमित्रा भावे सुनील सुकथनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी, राइट। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे, ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसर, निणु फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोघी की थी। दोघी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे, पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है, दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी। तब
1: और
0: तक
1: बहुत
0: वो
1: महत्वपूर्ण फिल्म।
0: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी, क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
1: हाँ,
0: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म
1: फिल्म को
0: को
1: मिला
0: मिला
1: बाकायदा।
0: नेशनल
1: जी
0: अवार्ड।
1: जी
0: यस,
1: जी
0: तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे,
1: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे।
0: इंटेंस काम कर रहे थे, बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूं, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8 8 10 10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं, तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं, राइट।
1: बिल्कुल।
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है, क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे।
1: जी
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप दो प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा रोल है, तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी। कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे। अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हम अभी हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है। तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर 1 मिली, वैसे ही दोघी मिली, वास्तु
1: गुप्त
0: पुरुष
1: मिली।
0: मिली। गुप्त मिली. एग्जैक्टली. और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे

0: ये वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास

0: थे। हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था। जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी। तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था।
1: बिल्कुल
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी। तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, एनएफडीसी की ही फिल्म है,
1: जी
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर भी गई थी, क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर। तो बहुत प्यारी फिल्म है, और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहाँ के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है, और काफ़ी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है। तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म।
1: बिल्कुल, यहां गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि
0: श्योर
1: उसका जिक्र अभी अभी हुआ।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है। संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए, अब हम प्रसारित कर रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, अखोरा।

कुंदी कला जामदोहर बदौली रेवतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा उदयपुर सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये बड़ौली जमीरा मसगा असकला दोरना जरहाडी सायर लक्ष्मणगढ़ सस्कालो ढेकी डोली एरन नवापारा गढ़गांव बरडाण दाती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये अम्बाचुआ जामटोली टुकुपानी बोडालता कूड़े केला खड़ा माचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो बाकारुमा लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 109 है। ये कूड़े केला पुरुंगा

0: क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 109 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगूरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, ताल दादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदू चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोट ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। लीजिए अब हम प्रसारित कर रहे हैं ग्रामीण श्रोता बहनों और भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनिया सबो संगी संगवारी मित मितान काकी का कमल्ला पंचू भाई के झोकाओ जय जोहार राम राम। संगवारी हो, आज एक दिन के अगोरा हम सबो किसान भाई मला रथे काबर की चार महीना की जौन बर बिहा नेवता हिकारी के बुता कामा हमन अस्त व्यस्त रथन। सभी झला अगोरा रथे कि कब पानी कांजी है गिरा है तो कब अपन हमन खरीफ फसल के जो धान पान के तैयारी में लगी। जब किसान भाई मन करा पल्लो के साधन है, सिंचाई के साधन है, बोर के साधन है, वो मन 15 दिन अगाहू अपन जो खेती के संगी बुता कामला अगवा के शुरुआत कर चुके हवे। अब देखी तो पानी हाँ लगातार गिरत हवे, ऐसे में हमारे जो खेती के संगी बुता काम है दिनों दिन भद्रात जात हवे। और सीतोन बात संगवारी हो, आज के अगोरा कही तो सभी जन हमारे जितका भी किसान हवा भारत के सब किसान भाई मल अगोरा रही हवा कि कब हमारे यहाँ मानसून हवा तो हमन अपन खेती के संगी के बुता कामला शुरुआत करी। संगवारी हो, बात करी अपन खेती किसानी के अंतर्गत तो आपन जानते हवा कि खेती किसानी करथन तो हमल कई ठक बात के चेत करे के घलो आवश्यकता होते। जैसे कि अभी हम का करथन कि पानी गिरत हवा तो कतेक किसान भाई मन ऐसे हवा जेमन बीजा भात ला पहले ले नहीं ला रहे, का करते कि नहीं पहले खेती की तैयारी कर ली उकर बाद हमन का करी बीजा भात ला लेके आबो कहीं। तो लकड़ धकड़ में कई बार ऐसे होते कि हम बाजार हट जाथन और जोन भी दुकानदार दही बीजा धान के वही बीजा ला के हम सीधा सिंचाई करथन या तो नर्सरी तैयार करथन या तो सीधा

खुर्रा बौ कर देथन। कभी कभी ऐसे हो जाते कि हमन जो बीजा भात लाथन ओकर से कतक नुकसान हो जाते। एन कही ततका कन गाड़ा बैला नांगर निंदाई कोड़ाई बनिहार मन के पैसा कौड़ी दे रहन और जितना कन हमन उपज के आमदनी सोचते उतना कन हमन उपज के प्राप्त नहीं हुए। कारण यही होते कि हमन जो प्रमाणित बीजा रहते वो प्रमाणित बीजा ला नहीं जान पान एकर खातिर हमन कभी कभी ठगा जाते। तो आए दिन आप मन ला हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर कति ले यही कथन कि जितके ज़्यादा हुए हमन जो प्रमाणित बीजा हवा वो बीजा का उपयोग करके ही हमन ला अपन जो खेती किसानी की बुता काम करना चाहिए। और बताथन आप मन ला कि प्रमाणित बीज हमारा कहाँ मिलही ते तो हवा संगवारी हो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ मिलते हमारे कृषि विभाग हवा वहाँ मिलते जो ब्लॉक स्तर में अलग अलग हमारे कार्यालय हवा कृषि विभाग के वहाँ मिलते जिला में जितका भी बीज निगम हवा वहाँ भी हमारे प्रमाणित बीज ला वहाँ से ले सकते हैं। बीज निगम में जो हमारे अधिकारी हवा उनका कर हम अच्छे से सलाह ले सकते हैं कि कौन बीजा कैसनहा है कौन बीजा कतेक दिन में हमारे बार सबसे उपयुक्त है। आजकल नवा नवा किस्म के धान के बीजा घलवा हवा जेमन कम पानी में हम अच्छे से धान के पैदावार ले सकते हैं। और अच्छा अच्छा किसम हवा जिला हमन बीज निगम है अपन कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनकर कर जानकारी लेके हमन अपन जो खेती से निकुत काम ला कर सकत हन। संगवारी हो बड़बो कार्यक्रम कति और आप मन बता देते हैं संगवारी हो आज हमन छत्तीसगढ़ के सबसे बड़का रत्न कही तो हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हमन खो दे हमन एन बात करी संगवारी हो हमन बात करत हन हमारे दीदी तीजन भाई के ये मन पद्म विभूषण ले सम्मानित रहन हवे और आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकर जोन पंडवानी के माध्यम से आज हमारे जोन छत्तीसगढ़ के नामला जग जग में जाने जाता हुआ कहीं न कहीं वो चिन्हारी आज हमारे बीच में जिंदा हुआ। बात करबो हमारे जोन तीजन भाई दीदी के तो अपन जानते हवा कि हमारे जोन तीजन भाई दीदी है छोटे से गाँव में उठ के आज भारत के नामला रोशन करी संगे संग हमारे जोन छत्तीसगढ़ राज्य है ओकरो नामला रोशन करी। कतेक जन कथी कि पढ़ाई लिखाई करके हम आगे बढ़बो। बात करबो हमारे अपन तीजन भाई दीदी के तो अपन बता देते हैं संगवारी हो कि हमारे जो तीजन भाई दीदी है एको अक्षर पढ़े नहीं रहे और एको अक्षर पढ़े नहीं रहे उसके बावजूद भी आज पंडवानी के क्षेत्र ला आगू बढ़ा हिसाब है। देश दुनिया में जानी हवा कि पंडवानी कला होते का देश दुनिया में जानी हवा कि लोक संस्कृति होते का संस्कृति होते का आज कहीं न कहीं पूरा दुनिया में हमारे जो तीजन भाई दीदी हवा आज हमारे छत्तीस के नाम ला रोशन करी हो चाहे शास्त्रीय संगीत ले अलग कम नहीं माने जाए। आज हम देखो संगवारी हूँ श्री पद्म विभूषण ले सम्मानित करे हवे। जब उनकर जो कार्यक्रम होते रहे हवे पंडवानी क्षेत्र में तो जब अर्जुन के भूमिका ले निभावे तो ऐसे लागे जब देखन या आज भी हमारे रेडियो सुनथन तो ऐसे लगते कि जैसे खुद अर्जुन हो वेशभूषा में धारण करे है अर्जुन खुद गोड़ बात ला करत हवे। तो कहीं न कहीं देखो संगवारी हो तो डॉक्टर तीजन भाई दीदी है संगीत के क्षेत्र में एक तपस्या करे रही हवा वही तपस्या आज हमारे बीच में हवा। भले के तीजन भाई दीदी के शरीर आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन ओकर आवाज़ है ओकर एक तारा है आज हमारे बीच में और हमारे छत्तीसगढ़ की माटी में हमेशा गुंजत रही। हमारे आकाशवाणी बिलासपुर का तिले पूरा श्रद्धांजलि अर्पित करतन आवा ओकर एक पंडवानी गीतला सुनतन।

0: था।
1: हाँ?
0: ये सारे खेल हकीबे नहीं तो कृष्ण के सवा दूसरा काकरो नहीं।
1: अच्छा,
0: कृष्ण के जरियत ले भीमसेन मन है जिंदा हवे, पांचों भाई सदा जीवित भये।
1: हाँ?
0: सवो भाई कारो मन नास हो गए कहे अंधा।
1: हाँ?
0: तोरे दीही के दिया बुता एक

के खाती कृष्ण जी नगर द्वार काले आए रही सेवारी। ये बात ले अंधा के पास मां सुंदर गोठियावत रहे, वही वक्त में का करें।

0: रही सवे कका। मुरलीधर कन्हैया कहने लगे धृतराजन धा, ये सब खेला हमार कह के बदनाम ला मत बोझा लगा। काबर ये सारी खेल राजा दुर्योधन के हुई से।
1: अच्छा,
0: अरे जब मैं पांच गांव मंगाए के आस लगा के लगे दरबार में जब पहुँचे गुरु द्रोणा भीष्म पितामह ये सब राजों के बीच बीच में, यंतना देवो राजा की के कही तब के दरी मैं मन में सोच के और पांच सने भाई

0: जमीन की के पांडव मन बर परन करे रही सवे ये पांडव मन के करनी नो है न मोर करनी नो है दादा मोर फोकट के कलंक मत लगा।
1: अच्छा
0: ये तो राजा दुर्योधन के करनी है।
1: हाँ?
0: ये बात ले सुनकर बड़ा प्रेम के साथ धृतराज अंधाले और आत्मा में ज्ञान हो जावे।
2: संगवारी हो एक गीत ला सुने बार हमार बीच में चिट्ठी भेजे रही हवाई रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा बैंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटाई लेहे नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामनी वर्मा छत्तीसगढ़ बेमे तरल है श्रीमती पूर्णिमा सारथी पूजा आरती भाविया सारथी श्रीमती सुषमा सारथी दचूरा ददुआ साहू भूरी साहू संतोषी दुलौरिन मोतीलाल साहू कमलेश्वरेश प्रीतम कुमार साहू चांदनी चौक डडई पडरियल है पवन कुमार सेन प्रभा सेन लक्की सेन विक्की सेन रविंद्र सेन संगवारी और बढ़ातन कार्यक्रम के आगूपति और देखी तो अभी के बेरा में हमारे जो खेती किसानी के बूता काम हाँ भद्रात हवे तो ए बेरा हमारा विशेष करके चेत करे के आवश्यकता हवे कि हम कोनो प्रकार के जो बीजा भात हवे ओला हम विशेष करके जो प्रमाणित बीजा ला ही हमारा उपचारित करके बुवाई या तो हमारा नर्सरी तैयार करना चाहिए। काबर के ए बेरा अगर हम थोड़ा कन भी लापरवाही करत हन या कोनो प्रकार के चेत नहीं कर अपन जो खेती किसानी बूता काम तो कहीं ना कहीं हमारे जो खेती किसानी बूता काम करा था वो माँ हमन नुकसान के सामना करे ला पड़ सकते थे। अब ऐसे भी हमन देखी तो आज हमन जो खेती किसानी बूता काम थोड़ा कन पछुआ गए हैं तो बिल्कुल हमन थोड़ा कन भी देरी नहीं करी बल्कि जितके ज़्यादा हो बनिहार के माध्यम से नांगर बिला के माध्यम से लौहा हमारे जो खेती किसानी बूता काम ला हमन बढ़ाई तो कार्यक्रम के आगूपति बढ़वेज करबो आवा सुनथन एक गीत ला जे गीत लगा है प्रकाश माया और गीत के बोल है मोर खेती खार रुनझुन।

संगवारी हो गीत ल सुने बर हमला चिट्ठी पत्री भेजेरिन हवय ग्राम रसेड़ा कल्तरा ले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी साहू योगेश कुमार साहू कृति कुमार साहू संध्या साहू डिकेश साहू पाली डॉली पूर्वेश साहू अकलतरी लेहे फिरोज कुमार रमेश चंद्राम कश्यप राम प्यारी बीना कश्यप श्वेता गरिमा पंखुड़ी राजवीर लच्छ बाबू चुन्नीलाल मुकेश सुरेश सुखीराम महेश लक्ष्मी कुमार पिंटू महाराज वाल्मीकि

0: राकेश कटनई अकलतरा ले है, उमेंद्र राम साहू, श्रीमती हीराबाई साहू, आनंद कुमार साहू, त्रिवेणी साहू, ओम प्रकाश साहू, दुर्गेश्वरी साहू और श्री कुमार साहू, साथ में एक संगवारी है रामेश्वर साहू, तुषार साहू और ननकी राम साहू। संगवारी हो कार्यक्रम के आगुगति बढ़बो, आवाज सुनथन संदेशा।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: संगवारी हो बात करी हम अर्जुन खेती किसानी के, तो अभी बेरा हम जी से बात करत रहें कि जितके ज्यादा हुए हम बीजा के तैयारी ला अभी ले कर करी, संगे संग हम जो बीजा भात आवे ओकर हम किस्म ला जानना है। एक साथ ही साथ हमारा सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कि जे बेरा हम माटी जांच कराथन वही बेरा हम माटी जांच नहीं करान, तो सबसे ज्यादा हमारा आवश्यकता होती है कि हमारा माटी जांच कराना चाहिए। ओकर से हमारा फायदा ये होते कि हम का किस्म के धान पान लगा सकथन, तो कहीं न कहीं हमन अगर माटी जांच कराथन संगवारी हो तो ओकरा से हमारा दोहरा फायदा होते। कई किसान भाई मन ऐसे हवा जे मन का करते कि केवल धान धान अपना थे, तो अगर हमन धान ला छोड़ के अन्य फसल कति अगर परिवर्तन खेती करत हैं तो कहीं ना कहीं एमा हमारा दोहरा आमदनी प्राप्त हो सकते है। आज देखबो तो सरकार कति ले बहुत कनी से योजना हवा जेकर माध्यम से अगर हम खेती किसानी करत हन तो कम लागत में हमन ज्यादा से ज्यादा हमन अच्छे से आमदनी कमा सकत हन। जैसे कि हमार सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आज भी हमारे किसान भाई मन प्रोत्साहित कर जाते और आए दिन आप हमारे रेडियो के माध्यम से यही बताथन कि जितके ज्यादा हो हमन अपन जो खेती किसानी में परिवर्तन खेती के माध्यम से अगर हमन मोटा अनाज कति खेती अगर करतन तो कहीं न कहीं हमन उमा दोहरा आमदनी कमा सकतन। काबर कि अपन जानते हवा संगवारी हो मोटा अनाज के अगर हमन खेती करतन तो ओकर से हमन ला ज्यादा फसल में आमदनी होते, मेहनत कम लगते और संगे संग ओमा अच्छे से अच्छा हमला मुनाफा कमाएला मिल जाते। जैसे कि जोंदरी है, बाजरा है, मिलेट है, एकर अगर हम खेती करते हैं तो अपन जानते हवा कि एमा हमला पानी के लागत कम पड़ते, मेहनत भी कम लगते और कम बेरा में हमन मोटा अनाज के खेती के माध्यम से दोहरा आमदनी कमा सकते हैं। तो अवश्य ही हम जैसे देखते हैं भाटा भुइयां कति जो हमारे जो किसान भाई मन आज भी मोटा अनाज के खेती ला प्राथमिकता आज भी देते और ऊपर से हमारे जो सेहत भी है अच्छा रहते, साथ ही साथ हम यही चाहते हैं कि जो पुराना पहली बेर हम जो हम खेती किसानी करत हैं वही खेती डहर जाके फिर दोबारा हम वो शुरुआत करी अकड़ी तिवरा बोटरा एक खेती करके आज हम अपन जो मोटा अनाज की खेती ला ओला हम बढ़ा सकत हैं। बढ़त हन कार्यक्रम के आगू कति और सुनत हन सुघर कर गीत ला मोर भुइया के भाग जागे रे, जी गीत लगा था वह मदन और संगवारी मन।

संगवारी हो, भुइया के भाग तभे जागही जब हमन परिवर्तन खेती के माध्यम से अपन जो खेती से निक बुता काम ला करबो। तब एक गीत ला सुने बर चिट्ठी पत्री भेजे रहिन हवे ग्राम बुड़गान छत्तीसगढ़ ले राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्र कुमार प्रजापति, चंद्रकला शशिकांत प्रजापति, ग्राम बबीवार लेहे शिवरायण नामदेव, सविता राम प्रसाद, कुमारी अंचल, कुमारी चंचल, कुमारी चांदनी, कुमारी विनय कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार कंवर, शांति नगर पाली विष्णु सिंह कोराम, श्रीमती संतोषी कोराम, कुमारी आरती, कुमारी पूर्वा, कुमारी प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्र चंद्रशेखर एवं समस्त कोराम परिवार। यही चिट्ठी यही गीतला सुने पर भाटा पहले पत्र भेजे रहे हवे दान सिंह रावत, दानू पद्मनी रावत, शुभम सौरभ रावत। इसी के महानंदी सिहवा पर्वत ले भेजे रहे हवे ग्राम बेलार गांव ले मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन। संगवारी हो, अगर हमला अपन भुइया के भाग जगाना है तो हमला जितकी ज्यादा हो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के दर हमल चेत करना है, तभी हम जो भुइया के उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकत हन और अपन जैविक खेती ला घलो बढ़ा सकत हन। आवा

संगवारी हो, एक तुरही से कार्यक्रम के आखिरी गीत और गीत लगाए बर चिट्ठी पत्री भेजे रिन हवे जांजगीर ले भजनलाल साहू, श्रीमती लता साहू, यामिनी साहू, स्वाति साहू, संजना साहू, तरुण साहू। और यही गीतला सुने बर चिट्ठी भेजे रिन हवे बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन, डोंगरगांव ले राजनंदगांव, राजपाल गजभाई, बेबी अनन्या, राधिया, बागबहरा ले पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन, यवंतलाल सेन, संतोष डगेश, विनोद खड़ेस। संगवारी यही कार्यक्रम संग पंचु भिला देव विदा। जय जोहार, राम राम। जात जात अपन हमार आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के पता बता देतन। हमार आकाशवाणी के पता है आपन के चिट्ठी पोस्ट बॉक्स नंबर 49 आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर नूतन कॉलोनी सरकंडा। तो संगवारी यही पता में आपन अपन मैं प्रीत के चिट्ठी पत्री भेजत रही हूँ। यही कार्यक्रम संग पंचु भिला देव विदा। जय जोहार, राम राम।

अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 5:35 हुए हैं और अब लीजिए पेश है ईमेल फरमाइशों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें। और कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश ईमेल के जरिए हमसे आप सभी ने की है। पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक। धुर्रा बांधा भाटपारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू। नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा और धनेश्वरी वर्मा। रघुनाथपुरा, श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। भिलाई से हमारे श्रोता अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, अस्मा श्याम कुंवर ने ईमेल भेजे हैं। कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन आप सभी हैं। गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर सिंह, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मशहूर, साइना, हजन, नाजिया इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलतमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री, लूतरा खमरिया से हैं अकरम, अमीन, अर्श और आतिका। और लोहगंड ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरनाल सिंह और अविराज सिंह। रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सबकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं आपको सरगम फिल्म का गीत सुनवाकर। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल फरमाइशें भेजी हैं आप सभी ने। सनावत से मोहम्मद शादिक, मुहस्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, इन्हें इसे एक बार फिर सुन लें। नवागढ़ कटाई से हमारे श्रोता है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। लूतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अक्रम, मोहम्मद अजीज, महेंद्र तिवारता। डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप, मरकाम जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, मरकाम, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और सौर्य नामदेव। बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामचरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे। महाराष्ट्र एंड से नाजिर शेख, नाजी अनासिर, साजिद साहिक, साजिद साहिद और वणिक खेड़ा। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। नरगुड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। महसौ सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलअत फरहत, रिफअत नुजहत, साजिया साहिन नाज और नाजिया नूरीनाज। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटखे, नंदा हनुमान और उत्तम जमदाड़े। भूचो कैचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वारिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार। आप सभी ने सुनना चाहा है अपनी पसंद पर। अपनापन फिल्म का गाना आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की है। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें ईमेल फरमाइशें भेजी हैं आप सभी श्रोताओं ने। रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक और कमल उमा, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, अड़ानंद घाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मैनपाट से अजिता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, छोटी बलिया, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, पाहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा

देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, नेपानगर से सुदर्शन साह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी, आप सभी को आपकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। तीसरी कसम फिल्म का गाना मुकेश की आवाज है इस गीत में, शैलेंद्र ने लिखा है गीत को और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है। लीजिए सुनिए तीसरी कसम फिल्म का ये गाना।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश आप सभी ने की है। नानघाट कातलबोड़ से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुदित रमेश साहू, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत और चेतन भगत, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना और वली भाई अंसारी, संबलपुर

कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अंजान साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज चाहत, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धरनमदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुल्लिक क्षत्रिय, सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन और माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा नसरी अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से संदीप जटोलिया। आप सभी ने सुनना चाहा है लावारिस फिल्म का गाना मन्नाडी की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं। अनजान के लिखे गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल आप सभी ने भेजे हैं हमें, और आप हैं देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गंवाणकर, टुक टुक प्रिंस एकांश सुमित गंवाणकर और ध्वनि गंवाणकर, और जालंधर से मीना कौर मन्नत कौर, रेवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा सराविया रामटेके, भाटापारा से बजकामल मोतीलाल यादव सियाराम चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर नारायण यदु और भुवन कामरी, ओवरेठीपारा भाटापारा से अनीता साहू वीणा नेहा और मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब अब्दुल हक जियाउल हक डावर मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाणकर सरिता प्रिंस एकांश गंवाणकर, और आप सभी हैं मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा डी ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह अमनदीप, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान आयशा सबीहा अनस और रेहान, राजेश साबले पाटिल राजदीप राशि और शीतल राजेश आप छत्रपति संभाजीनगर से हैं, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू सुजाता शशांक सीमा साहू लच्छनपुर से रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मे शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी महेंद्र मोदी विक्रांत मोदी और इब्जाल ताज, आप सभी को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। कार्यक्रम का अगला गीत

इसी गीत के बाद ईमेल करें। गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम अपने श्रोताओं को बता दें, विश्वविख्यात पंडवानी गायिका श्रीमती तीजनबाई के लोक कला के क्षेत्र में किए अविस्मरणीय योगदान पर श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम विदुषी तीजनबाई एक स्मृति शेष का प्रसारण आज संध्या 7 बजे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम संध्या 6:05 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, आज संध्या 7:30 से ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले फाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थी इस सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अब एक नज़र हमारे केंद्र से कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, कल सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में सामयिक सुझाव का विषय रहेगा फल फूल और सब्जी उत्पादन में नवा तकनीक और नवाचार। फ्लैगशिप कार्यक्रम नवविहान में सुबह 6:45 पर सुनिएगा स्मार्ट सिटी मिशन पर चर्चा। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण समय रहेगा 7:05 पर यादों के झरोखे से। ये कार्यक्रम हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के कार्यक्रम अमराई में सुबह 8:30 पर हम सुनवाएंगे सुरेंद्र मधुकर, ज्योति चौहान और साथी एवं राजकुमार राजपूत, सुशीला ध्रुव और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी गीत। श्रोताओं, तुहर गोट हमर गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दिन में 10:00। 10:30 पर सुनिएगा आपकी पसंद कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण हम करेंगे दिन में 11:00 और दिन में 11:30 से हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। श्रोताओं, कल संध्या 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ सुनिएगा। युवा जगत कार्यक्रम में कल संध्या 5:35 पर आज की बात का विषय रहेगा वर्ल्ड जूनोसिस डे, पशुजन्य रोग दिवस, पालतू पशुओं से सावधानी और क्रम होगा कौशल विकास और उद्यमिता। कल संध्या

बजकर 20 मिनट पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय रहेगा दलहनी तिलहनी फसल के रकबा बढ़ावा। भेंट वार्ता के क्रम में कृषक उन्नति योजना धान के बदले अन्य फसल विषय पर श्रीमती नीलिमा रमन सहायक संचालक कृषि कार्यालय संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर से महंगू भैया की बातचीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं। श्रोताओं कल रात 8 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम चल पढ़े ला जापो और इसके प्रायोजक रहेंगे जनपद प्राथमिक शाला बिलासपुर बिल्हा।

पढ़ेला जापो, और इसके प्रायोजक रहेंगे जनपद प्राथमिक शाला बिलासपुर बिल्हा। रजनीगंधा कार्यक्रम हम पेश करेंगे 8:15 पर, और विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 से।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें, विश्वविख्यात पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई के लोक कला के क्षेत्र में किए अविस्मरणीय योगदान पर श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम विदुषी तीजन बाई एक स्मृति शेष का प्रसारण आज संध्या 7 बजे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे आज संध्या 6:05 में और आज संध्या 7:30 पर आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद कार्यक्रम जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी, इस कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए सूरजपुर जिले की चिट्ठी। आलेख छत्तरधारी प्रजापति का है।
1: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं सूरजपुर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 1 जुलाई से लागू हो गई है। ये योजना मनरेगा का स्थान लेगी। इस योजना के शुभारंभ अवसर पर सूरजपुर में 2 जुलाई को जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली शामिल हुई। इस अवसर पर श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और आधारभूत विकास को मजबूती प्रदान करेगी। वहीं जिला कलेक्टर रेना जमील ने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों तक का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जीरामजी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण अधोसंरचना, वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि आधारित कार्य और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत जीरामजी योजना और मोर गांव मोर पानी अभियान पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई बिजली की नई दरें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक देने होंगे। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है। वहीं कृषि पंपों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई हैं। श्रोताओं, राज्य सरकार ने खंड और अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुआई यानी DSR तकनीक अपनाने की अपील की है। सरकार के अनुसार DSR तकनीक से लगभग 20% पानी की बचत होती है। प्रति एकड़ करीब 5,000 रुपए तक लागत कम आती है और फसल 12 से 15 दिन पहले तैयार हो जाती है। सरकार ने धान के स्थान पर अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, रामतिल और सोयाबीन जैसी दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती अपनाने पर जोर दिया है। किसानों से बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग, वर्षा जल संरक्षण तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए भी कहा गया है। श्रोताओं, रायपुर में बीते 25 जून को PM श्री विद्यालयों के प्राचार्यों की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पिछले 3 वर्षों के दौरान PM श्री विद्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन

0: किया गया जिसमें सूरजपुर जिले के 3 विद्यालयों ने प्रदेश के शीर्ष 5 विद्यालयों में अपना स्थान बनाया। इनमें जयनगर स्थित पीएम श्री शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, बत्रा स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और प्रेमनगर स्थित पीएम श्री शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय प्रेमनगर शामिल है। श्रोताओं, सूरजपुर स्थित औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में बीते 30 जून को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यवहार न्यायाधीश हिमांशु पंडा ने विद्यार्थियों को कानून के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने मनी म्यूल के बढ़ते खतरों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि साइबर ठग विद्यार्थियों और बेरोजगार युवाओं को लालच देकर उनके बैंक खातों का उपयोग अवैध लेन देन के लिए करते हैं, जिससे खाताधारक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। श्रोताओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के लिए ई केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 जुलाई तक ई केवाईसी पूरा नहीं कराने वाले हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। विभाग ने राशन आधारित वितरण में ओटीपी आधारित सत्यापन पर रोक लगा दी है। अब सभी उचित मूल्य दुकानों में ई पास मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। श्रोताओं, शासकीय सेवाओं को सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने के लिए सूरजपुर के संयुक्त जिला कार्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से कार्यालय आने वाले लोगों को संबंधित विभागों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही कार्यालयीन कार्य को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कर्मचारियों के लिए पृथक हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सूरजपुर जिले की चिट्ठी। आलेख छत्तरधारी प्रजापति का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं, आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरिमा शर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ के नामी पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजनबाई के निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जतई अपन दुख। आज संझा गनियारी गांव में राजकीय सम्मान के संग होइस उखर दाह संस्कार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ समेत आने राज्य मनला जारी करीस 25,000 करोड़ रुपया। और मौसम विभाग है अवैया 24 घंटा के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोनो कोनो जगह में जोरदार हा वर्षा होए के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के नामी पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के निधन हो गए है। लंबा बेरा ले उमन बीमार चलत रहीन। उनखर इलाज रायपुर के एम्स में चलत रहीस। आज मुंधरा करीबन 3:15 उमन आखिरी सांस लीन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत आने नेता मन तीजन बाई के निधन पर दुख जतैन। प्रधानमंत्री श्री मोदी हा तीजन बाई के निधन पर दुख जतावत अपन सोशल मीडिया पोस्ट में कहे हैं कि तीजन बाई हा छत्तीसगढ़ के लोक कला ला अपन भव्य प्रस्तुति ले दुनिया भर में एक ठीन विशिष्ट चिन्हारी देवैन है। उखर जवई हा कला और संस्कृति जगत पर बड़का नुकसान है। तीजन बाई के निधन के समाचार मिलते साठ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कला जगत ले जुड़े मनखे और अन्य लोगन मन एम्स पहुंच के तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर फूल माला अर्पित करीन। मुख्यमंत्री हा किहिन कि तीजन बाई हा अपन अद्भुत गायन शैली, विलक्षण प्रतिभा और लोक परंपरा मन ला संजोवत छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक पहचान ला विश्व पटल मा स्थापित करीन।
3: आज श्रीमती
2: ऐसे तीजन बाई के व्यक्तित्व पर तैयार करेंगे प्रादेशिक समाचार एकांश।
3: से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में अनवाणी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें।

0: पेशे तीजनबाई के व्यक्तित्व पर तैयार करेगी प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की एक रिपोर्ट।
1: तीजन बाई के जन्म 24 अप्रैल 1956 के छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के गनियारी गांव में साधारण परिवार में होई रहीस। नानेपन ले ओमन महाभारत के कथा ला सुने और गाय के शौकीन रहीन। सामाजिक विरोध और आर्थिक तंगी के बाद घलो ओमन एमा रमे रहीन। माई लोगन मन बर ओ बेरा मा पंडवानी ला कापालिक शैली मा गवाई ला वर्जित माने जात रहीस। फेर तीजन बाई हा ए रीत ला तिरिया के मंच मा अपन अलगे चिन्हारी बनाई। तीजन बाई हा अपन मजबूत आवाज, रौबदार एक्टिंग और पंडवानी ला अनोखा रूप ले प्रस्तुत करे के शैली ले पंडवानी ला न केवल देश मा भलुक विदेश मा घलो नवा पहचान देवाइन। महाभारत के कथा ला मंच मा जियत असन दिखाए मा उखर कला हा उनला भारतीय लोक संस्कृति के सबले नामी कलाकार मा शामिल करी। समाचार डेस्क आकाशवाणी रायपुर।
0: तीजन बाई के दाह संस्कार आज संजा दुर्ग जिला में स्थित उखर गांव गनियारी में पूरा राजकीय सम्मान के संग करेगी। उखर बाबू पिला दिलहरन पारधिया उनला मुखाग्नि दीन। एकर पहली पुलिस डहर ले उनला गार्ड ऑफ ऑनर देगी। अंतिम संस्कार में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और सांसद विजय बघेल समेत जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कलाकार, साहित्य और उखर हजारों प्रशंसक मन डबरवत आंखी ले लोक कला के ए महान विभूति ला आखिरी प्रणाम करीन। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा 1 जुलाई ले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम सफलतापूर्वक सफल लागू होय ऊपर खुशियारी जतई है। श्री सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया ए मिशन के अंतर्गत राज्य मन पर 25,000 करोड़ रुपया के मुख्य सहायता राशि जारी करीन। श्री चौहान हा सबो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन के ग्रामीण विकास मंत्री मन संग VBG रामजी योजना मन ला लागू करे बारे में समीक्षा घलो करीन। ओमन कहीन की आज जारी करेगे पहला किस्त के उद्देश्य ये तय करना है कि राज्य मंत्री पर्याप्त धनराशि हो जेखर ले मजदूरी के भुगतान 15 दिन के भीतर करे जा सके। ओमन यहू कहीन की मनरेगा ला लागू होए मा 3 बछर ले ज्यादा के बेरा लगे रही से फिर विकसित भारत जी राम जी पूरा देश मा सिर्फ एक ही दिन मा लागू हो गए है। श्री चौहान हा कहीन की विकसित भारत जी राम जी योजना के चलत मजदूरी दर ला औसतन करीबन 10% बढ़ाई गयी है। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य मन पर नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में रखे गए 2 दिन वाले चिंतन प्रशिक्षण शिविर के आज समापन हुआ थे। एकर पहली आज बिहनिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्य मन योगाभ्यास करके स्वस्थ और संतुलित जीवन के आरो दिन। एकर संगे आज बिहनिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्य मन योग अभ्यास करके स्वस्थ और संतुलित जीवन के संदेश दिन। एकर संगे संग मुख्यमंत्री नया रायपुर स्थित IIM कैंपस में एक माँ के नाम अभियान के चलत पौधा घलो लगाइन। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौका में रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र के चुनौती, उपलब्धि अवैया बेरा में संभावना मनु पर केंद्रित एक विशेष पैनल गोटबात रखे गये रही। कार्यक्रम के शुभारंभ अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता, मार्क फेड के प्राधिकृत अधिकारी शशिकांत द्विवेदी और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष रामकिशुन सिंहा करीन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार डहार। स्कूल शिक्षा विभाग हा बताए है कि प्रदेश में पहली ले 8वीं कक्षा तक पढ़िया लेका मन बर तैयार करे जात रेडीमेड स्कूल ड्रेस के क्वालिटी के 100% जांच करे बाद ही स्कूल मन में पठोए जात है। राज्य हाथकरघा विकास और विपणन सहकारी संघ के मुताबिक स्कूल ड्रेस ला स्थानीय बुनकर और महिला स्व सहायता समूह मन के माध्यम ले तैयार करे जात है। बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में ये स्कूल ड्रेस के सप्लाई पूरा हो गए है। फिर आने क्षेत्र में ये काम चलत है। स्कूल शिक्षा विभाग स्पष्ट करे है कि क्वालिटी या साइज संबंधी शिकायत मिले ऊपर स्कूल ड्रेस ला तुरते बदले जाही। सूरजपुर जिला में आज एक ठिन खदान में चट्टान धस के ले 2 झीन मजदूर मन के मौत हो गई। मिले जानकारी मुताबिक जिला के लांची गांव तीर के खदान में मजदूर मन खोदत रहीन तभे हुरहा खदान के चट्टान धसक गए जेखर ले 2 झीन मजदूर मलबा में दब गिस। घटना के सूचना मिलते साथ पुलिस और प्रशासन के टीम मौका जगह में पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन चलेस। यहां ले दोनों मजदूर के लाश ला बाहर निकालेगी। पुलिस मामला के जाँच करत है।

पेशी मौसम की हाल। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोनो कोनो जगह में जोरदार वर्षा होए की चेतावनी दे है। वहीं एबेरा उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक ठीन चक्रवाती घेरा बने की स्थिति प्रदेश में वर्षा होला धर ली है। आज बिहनियाचले राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कतकुन जगह गरजे चमकई के संगे पानी गिरे की खबर है। नारायणपुर जिला के छेरीबेड़ा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के टीम है राजस्थान के उदयपुर में राखे गई जोनल राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में उप विजेता के स्थान हासिल करी है। ये विद्यालय के 8 जिन नोनी बाबू के चुनाई नेशनल बर हुए है। छत्तीसगढ़ ला खरीफ सीजन बर 46,500 मीट्रिक टन उपहार डीएपी खातु आवंटित करेगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एकर बर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा बर आभार दिन है। छत्तीसगढ़ की नामी पंडवानी गायिका उपर

0: मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोनो कोनो जगह में जोरदारहा वर्षा होए के देहे चेतावनी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें। कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश आप सभी ने की है। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय और हैप्पी राय। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला विशाल नावकर। सोंगा मगरलोड से फिनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार चंदन। कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, निकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले। कर्मा चौक लोहारेडी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू। रोहांसी से हैं मुकेश साहू, नंदिनी, मयनीश, मयंक और जानकी साहू। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। चिरमेरी कुरासिया कॉलोनी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री लहरे। मंजरू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा। सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी मनवर। दिल्ली से बोझराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानु। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, तासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद। और कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित बायाल, प्रथमेश देशमुख और प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीणा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। आप सभी ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का गीत। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में है। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल के जरिए फरमाइशें हमने आप सभी ने भेजी हैं। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार। निम्नाबाद जिला जींद, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। रसीड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा कौशल सेन। फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु, लाड़ी, सालिनी, तिवानसी, वाणी और आरबी खेरा। पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। कोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैंकरा, धुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्य पैंकरा। और भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू। दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज और दिव्या भारती। छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली, कबीर जाटव, देवशंकर जमादार। भूत कछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, देनवाला, दीपक, प्रीतम और धनराज मरकाम। रजौनी महोबा उत्तर बुंदेलखंड से उदय भानपाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल। अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद, गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता। पैठण से सुरेश जाधव, अनिता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव। पौड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोआराम यादव, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन। जालंधर से संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, भारत मक्कर, कमल साहनी। आप सभी ने सुनना चाहा है काला बाजार फिल्म का गाना, गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा की आवाजें हैं। शैलेंद्र के लिखे गीत की धुन बनाई है SD बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले फरमाइशी गीत की ओर, जिसे पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। जिला मुरादाबाद दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक और बलबीर सिंह। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आसू नारंग, सोनाली नारंग। बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। पुरानी भिलाई तीन चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जिशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजिंदर सिंह ओबा रॉय। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रजत भाटिया। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार। गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश दीपक और पूजा खटक। लगान पंढरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल। गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु, पार्वती और हिमांशु गोदारा। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित गर्वी और हिमाक्ष। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और इनके साथी। मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग। बुल्ढाणा वड़सिंडी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। आप सभी ने सुनना चाहा है मन्ना डे और साथियों की आवाज़।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश आप सभी ने की है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्टो। बठिना से हैं परमेश्वर साहू, राजबत्ती, टोप सिंह, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू। नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद और अलका मिद्धा। बोरसरा नैला से प्रमोद

कुमार साहू, बीमा वैभवी विनोद, विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एस एम जावेद और शगुप्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, लोरमी चचड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, सौंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन और विनायक सेन, कुंभार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुंभार, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश निवान, सौरभ, साइना शर्मा, मेंडी शर्मा, पटियाला पंजाब नाभा से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु, जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता हुजा, धनौरी तेलीवारा से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान। आप सभी ने सुनना चाहा है तीसरी कसम फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

और इसी गीत के बाद ईमेल करें। गीत सुने कार्यक्रम का यह अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
9: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
8: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
9: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
8: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
9: क्यों?
8: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
10: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
11: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
12: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
11: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
12: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
11: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
12: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूं।

0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। आज शाम दुर्ग जिले के गनियारी गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया उनका अंतिम संस्कार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। धमधा में 1 करोड़ रुपए से अधिक के कथित ऋण गबन मामले में एक निजी फाइनेंस कंपनी के पूर्व शाखा प्रबंधक सहित 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं और उनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था। उन्होंने आज तड़के करीब 3:15 बजे अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य नेताओं ने तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख जताते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। तीजन बाई के निधन का समाचार मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कला जगत से जुड़े लोग और अनेक गणमान्य नागरिक एम्स पहुंचे और तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी अद्वितीय गायन शैली, विलक्षण प्रतिभा और लोक परंपराओं के संरक्षण के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया।
5: आज श्रीमती तीजन बाई का निधन हो गया है, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें।
4: पेश है तीजन बाई के व्यक्तित्व और कृतित्व पर समाचार एकांश रायपुर द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट।
6: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। महिलाओं के लिए उस दौर में पंडवानी की कापालिक शैली में प्रस्तुति देना वर्जित माना जाता था, लेकिन तीजन बाई ने इस परंपरा को तोड़ते हुए मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार।

0: रायपुर।
1: तीजन बेटे का अंतिम संस्कार आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके ग्राम मियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके पुत्र दिलहरण पारधी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और सांसद विजय बघेल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों तथा हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ को खरीफ सीजन के लिए 46,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त DAP उर्वरक आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उर्वरक मंत्री JP नड्डा का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त DAP मिलने से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में यूरिया पहले से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अब खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो रहा है। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने योग अभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र की चुनौतियों, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित एक विशेष पैनल चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अपेक्स बैंक प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता, मार्कफेड के प्राधिकृत अधिकारी शशिकांत द्विवेदी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष रामकिशुन सिंह ने किया। कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है। सूरजपुर जिले में आज एक खदान में चट्टान धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले की लांची गांव के पास संचालित खदान में मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक खदान की चट्टान ढह गई और वहां काम कर रहे 2 मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे के बाद 2 मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग जिले के धमदा में 1,11,00,000 रुपए से अधिक के कथित ऋण गबन मामले में एक निजी फाइनेंस कंपनी की पूर्व शाखा प्रबंधक सहित 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार इस कंपनी के ऑडिट में अनियमितताएं सामने आने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप है कि इन चारों आरोपियों ने 267 ग्राहकों से ऋण की किस्त और अन्य भुगतान लेकर कंपनी

0: थाने में जमा नहीं किए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नारायणपुर जिले के छेरी मॉडल आवासीय विद्यालय की टीम ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित जोनल राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में उप विजेता का स्थान हासिल किया है। विद्यालय की 8 छात्र छात्राओं का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है। ये विद्यार्थी नई दिल्ली में संसद भवन का शैक्षणिक भ्रमण करेंगे और संसद की कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। इनमें हर्षा ने लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि मनसाय और अनुराधा उप विजेता रहे। अंजिला, निकिता, वेदिका, जयबती और शामी ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आज 5 जुलाई को आयोजित किए जाने वाले डुमतराई थोक बाजार फेज 2 के नामकरण और लोकार्पण समारोह को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा गांव में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा किए गए चक्का जाम को प्रशासन के समझाइश के बाद समाप्त किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। आज शाम दुर्ग जिले के गनियारी गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया उनका अंतिम संस्कार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। धमधा में 1 करोड़ रुपए से अधिक के कथित ऋण गबन मामले में एक निजी फाइनेंस कंपनी के पूर्व शाखा प्रबंधक सहित 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
2: चलो,
3: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। विश्वविख्यात पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई के लोक कला के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान पर श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम विदुषी तीजन बाई एक स्मृति शेष कुछ ही क्षणों के बाद हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
8: विश्वविख्यात पंडवानी गायिका विदुषी तीजन बाई का आज सुबह रायपुर में आकस्मिक निधन हो गया। उनका जाना भारतीय कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। विदुषी तीजन बाई ने अपनी अनूठी शैली से महाभारत के प्रसंगों को पंडवानी गायन के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ की माटी से जन्मी पंडवानी की पहली महिला कलाकार होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। विदुषी तीजन बाई के लोक कला को समर्पित जीवन को याद करते हुए कला, संस्कृति, साहित्य और सभी वर्गों के नागरिकों ने उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।
9: मैं कविता वासनिक, लोक गायिका। आज के दिन बहुत दुखद है। सुबह सुबह समाचार मिली कि हमारे पद्म विभूषण तीजन बाई नहीं रही थे, बहुत ही खराब लगी, बहुत दुख हुई थे। फिर सबे जब हम तीजन बाई है हमारे छत्तीसगढ़ भर ही नहीं बल्कि पूरा देश भर अपूर्णीय क्षति है। तीजन बाई हमारे धरोहर है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें हमेशा याद रखी। आज तीजन बाई शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर कलाकारी हमेशा जीवंत रही। वो ऐसे उदाहरण

0: स्थापित करके गए हैं। सीजन में महिला सशक्तिकरण के घनो उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में जब महिला मन के घर से बाहर निकलना मुश्किल रही थे, तब ने वो संघर्ष करके झेल करके पद्म विभूषण पाई से हमारे छत्तीसगढ़ के मान सम्मान ला बढ़ाई से। आज जब महिला मन पंडवानी करते सब महिला मन कहीं न कहीं सीजन बाई ला अपन में सोचे मन पंडवानी ला वो छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के विश्व स्तरीय में विश्व स्तर में पहचान दिलाई से ने ऐसा हमर छत्तीसगढ़ के गौरव सम्मान ला पहचान ला मैं नमन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ और अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करत हूँ। जब तक ये दुनिया रही सीजन बाई के नाम हमेशा अमर रही।
1: आप हैं भाषाविद श्री चित्रंजन कर।
2: पद्म विभूषण सीजन बाई का निधन छत्तीसगढ़ी संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय जो गायिका और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक

0: अमर निधि।
1: आप हैं भाषाविद श्री चित्तरंजन कर।
2: पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन, छत्तीसगढ़ी संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय जो गायिका और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रकार से हमारा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई पता नहीं कब होगी। पूरा छत्तीसगढ़ आज स्तब्ध है उनके इस निधन के समाचार से। उन्होंने पंडवानी को जो ऊंचाई प्रदान की, केवल देश नहीं, देश के बाहर कई विदेशों में, कई अन्य देशों में उन्होंने जो यहाँ का परचम फहराया, वो वास्तव में एक इंसान के वश की बात नहीं है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि पढ़ाई का मतलब केवल डिग्रियां नहीं होती, जो अनुभव की पढ़ाई है और जो संस्कार जो उनको मिले और उनकी जो साधना थी, उससे वो बहुत ऊंची ऊंचाई पर पहुंच गई और उन्होंने एक ऐसा अमर नाम छोड़ा अपने पीछे, जिसके सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति।
3: मैं अनुराग ठाकुर चंदैनी गोंदा से जुड़ी हुई होने के कारण भिलाई में जब लोक कला महोत्सव होता था, उस समय हम लोग, ये सन 72 की बात है और उसके बाद कंटिन्यू वहाँ होते ही रहता था भिलाई में, तो बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां वहाँ आती थी अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपने कार्यक्रम देने के लिए। तो वहाँ तीजन बाई जी से मुलाकात होती थी हमारी, वो भी आती थी पंडवानी का अपना कार्यक्रम लेकर, और हम लोगों का भी प्रोग्राम होता था, क्रम से होते जाता था सबका प्रोग्राम, अपना अपना प्रोग्राम देके लोग जाते थे। तीजन बाई जी का भी होता था, तो पंडवानी चूंकि लंबा चलता है तो उनका प्रोग्राम थोड़ा सा बाद में रखा जाता था, और बहुत बुलंद आवाज की थी, परफॉर्मेंस उनका ऐसा रहता था कि बिल्कुल जैसे कुछ शेडो प्ले जैसा है, लेकिन वो अकेले ही भीम का भी किरदार कर रही हैं, दुर्योधन का भी, और वो महाभारत के प्रसंग को लेकर ही करते हैं अक्सर पंडवानी का तो कार्यक्रम जो होता है। तो वो बहुत ही अच्छे से उसको निभाती थी, सभी रोलों को, जितने भी पात्र उसके रहते थे, और बिल्कुल लगता था दमखम के साथ वो देती थी प्रोग्राम अपना। और उनके वादक कलाकार भी थे, साथ में गाना भी चलता था, अभिनय भी चलता था, और तेज आवाज में, बुलंद आवाज में उनकी, जो आज भी उनकी आवाज हमारे कानों में सुनाई दे रही है। और बड़े दुख की बात है कि इतनी अच्छी कलाकार, इतने सारे उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, हमारे छत्तीसगढ़ की गौरव श्रीमती तीजन बाई, एक बहुत बेहतरीन कलाकार आज छत्तीसगढ़ ने खो दिया है। और उनकी उनके लिए मैं यही प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके जैसा कलाकार अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है, पर ईश्वर करें कुछ ऐसे उनके शिष्य मिल जाएं जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएं। यही मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ।
4: मैं पद्मश्री राधेश्याम मारले, पंथी लोक नृत्य के कलाकार। आज पद्म भूषण डॉक्टर तीजन भाई जी के अंतिम संस्कार में गांव गणियारी निकले हैं, पांच लकड़ियां दे करके। सैकड़ों कलाकार इस पद्म भूषण डॉक्टर तीजन भाई जी के अंतिम यात्रा में हम सब सम्मिलित हुए। और चूंकि पद्म भूषण डॉक्टर तीजन भाई के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ को जाना जाता था, और कला के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान है, छत्तीसगढ़ को बहुत बड़े नुकसान हुआ है, साथ ही साथ में पूरा देश आज छत्तीसगढ़ से पद्म भूषण डॉक्टर तीजन भाई की शोकाकुल परिवार सहित पूरा हजारों की संख्या में आज उपस्थित हुए हैं। और मैं ऐसे दुखद घड़ी में पद्म भूषण डॉक्टर तीजन भाई की अंतिम यात्रा उनके पुष्प अर्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
5: मैं साहित्यकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा, मेरा गांव है लिमतरा और उसी से लगा हुआ गांव है मेरे मामा गांव नदौरी। तो इस तरह से छुटपन से हम लोग तीजन भाई को उस गांव में आते जाते देखते थे, क्योंकि उनका गांव जो है वहां से लगा हुआ है। और इस तरह से मैं लगातार मेरा संबंध उनसे रहा। बाद में संयोग रहा कि मैं सामुदायिक विकास विभाग भिलाई इस्पात संयंत्र में छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव का संयोजक हुआ। दानेश्वर शर्मा जी, विमल पाठक जी के रिटायरमेंट के बाद मुझे दायित्व तो मिला संयोजन का, तो उसमें तीजन भाई जी के साथ लगातार हर प्रदर्शन में उनके करीब रहने का अवसर लगा। फिर बाद में जब उन्होंने भारत महोत्सव

0: लिए फ्रांस की यात्रा की, तो वहां से उनके लौटने पर मैंने एक आर्टिकल धर्मयुग में लिखा, फ्रांस में छत्तीसगढ़, जिसको उन्होंने बहुत पसंद किया। फिर अभी मेरी एक किताब आई हुई है जिसमें छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों में मैंने तीजन बाई को भी शामिल किया। और सबसे बड़ी बात यह है तीजन बाई जी की कि उन्होंने नारी जगत के सम्मान को बढ़ाया, छत्तीसगढ़ के सम्मान को बढ़ाया, देश के सम्मान को बढ़ाया। दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ में पंडवानी जो पंची बहुत चमत्कार है, जिसमें कि दो विधाएं होती हैं, जिसमें कापालिक शैली को अभिनय के साथ प्रदर्शित करने का जो कमाल तीजन बाई ने किया, वो किसी दूसरे कलाकार से संभव नहीं हुआ। ये एक पूरी परंपरा है, बहुत लंबी परंपरा है पंडवानी कथा मंच में कहने की। और तीजन बाई जो है कापालिक शैली को लेके जिस ढंग से उन्होंने अभिनय किया और जिस ढंग से लोक शैली को जोड़ा और लोक कथाओं को भी वो व्यास के और सुबल सिंह चौहान के महाभारत में जो कथाएं हैं उसको लेकर के, और उन्होंने जो काम किया वो बड़ा काम है। तीजन बाई अपने बचपन के दिनों में देवांगन जी की कथाओं को 18-18 दिन सुनती रही, अपने सीनियर लोगों से उन्होंने बैठ करके लोक शैली में सुना। और नाना जी उनके जो थे वो उनके गुरु थे, नाना स्वयं गाते थे तो उसको छुप के सुनती रही, लेकिन नाना जी ने कहा कि बेटा छुप के मत सुनो, तुमको मैं सिखाऊंगा, मैं तुम्हारा वो पहले गुरु बने। इस तरह से तीजन बाई ने बहुत संघर्ष करके अपने को स्थापित किया, और वो भीतर में इतना उनकी शक्ति रही कि उन्होंने नारी स्वतंत्रता का भी काम किया। और तीजन बाई का जो योगदान है वो पहली महिला पद्म विभूषण है। तो इस तरह से उन्होंने देश छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया, और छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के विश्व में जाने वाले जो बड़े बड़े कलाकार हुए उनमें से देवदास बंजारे जी और तीजन बाई का बड़ा नाम है, जो भारत महोत्सव के माध्यम से और दुनिया ने छत्तीसगढ़ी के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित कथाओं को सुना, उसका ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और वो इतना अभिनय के कारण वो पूरे महाभारत को मंच पर स्थित थी, और इस मुरे को महाभारत के वीरों की आयुध के रूप में प्रयोग करके तीजन बाई ने एक कमाल किया। मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि गनियारी गांव से लेकर के और दिल्ली से लेकर के तमाम जो उनकी यात्राएं हुई उनको देखने का अवसर लगा और समझने का अवसर लगा, और तीजन बाई के योगदान को, तीजन बाई के सम्मान को देखने का अवसर लगा। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य का, आज उन्हें हम बहुत भरे मन से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जितने दिनों के लिए आई उन्होंने एक युग को अपनी छाप छोड़ी, और ये तीजन का युग कहलाएगा। हम उनको सादर श्रद्धांजलि भेंट करते हैं।
1: मैं राकेश तिवारी, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित और लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ लोक कलाकार। तीजन बाई जी के साथ मेरा बहुत ही पुराना नाता रहा है, राज बनने से पहले। मैं जब बचपन में 8वीं पढ़ रहा था उस समय पहली बार पंडवानी सुना था मेरे मामा गांव अकोली में, और उसके बाद लगातार जब मैं संस्कृति विभाग में था तो लगातार 2001 से 2015-16 तक उनके लगातार जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते थे उसको मैं बैठकर सामने बैठकर देखता था। उनके साथ बहुत सारे टूर में भी गया, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, उज्जैन, भोपाल, दिल्ली, और बहुत सारी यादें हैं। और वो तो कापालिक शैली ही बनाने वाली थी, उनका सीजन करता ही माना जाए एक तरीके से। और छत्तीसगढ़ का गौरव है, छत्तीसगढ़ को जब भी कोई पूछते थे कहाँ से हो तो हम बोलते थे भाई यहाँ तीजन बाई है, वहीं से हैं। तो उनका एक वर्षात भी हमने विभाग के द्वारा किया था, संस्कृति विभाग के तहत, जिसमें 12 से 15 जो बच्चे हैं वो विधिवत उनसे पंडवानी की शिक्षा ग्रहण की थी, जो आज भी कई लोग उसमें पंडवानी गा रहे हैं। और बहुत ही अपूर्णीय क्षति है उनका निधन, जो कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा।
2: मैं ग्राम पीरदा की रहने वाली पंडवानी गायिका शांति बाई चेला, और सन 88-89 से तीजन दीदी के साथ मैंने कार्यक्रम दी है। पहले बम्बई में मैंने कार्यक्रम दिया उसके साथ 1.5 महीना का, उसके बाद इलाहाबाद जोन से भी हमने कार्यक्रम दिए, भोपाल में कार्यक्रम दिए, और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत जगह उसके द्वारा भी हम लोगों को सम्मान वगैरह मिला। और तीजन दीदी बहुत अच्छे, मतलब छत्तीसगढ़ के एक अच्छे गा...

0: गायिका रही और तीजन बाई आज नहीं रही और मैं कलाकार हूँ तो मुझे बहुत मतलब दुख महसूस हो रही है। अब तीजन दीदी के नाम तो बहुत देश विदेश में है, बेटी हो चाहे बहू हो, लेकिन तीजन दीदी जैसे बहू बनना और बेटी बनना और कलाकार बनना शायद मुश्किल है। छत्तीसगढ़ के नाम तीजन दीदी ने देश विदेश में अपने नाम रोशन की है और बहुत पछतावा हो रहा है हम लोगों को। पंडवानी गायिका है हम तो, मैं बहुत सारे बात है जो तीजन दीदी से मैं ली हूँ। जैसे मैं इलाहाबाद जोन में कार्यक्रम देने के लिए गई और तीजन बाई भी उसी मंच में कार्यक्रम दिए तो सर लोगों ने बोला कि जैसे तीजन बाई बोल रही, क्या बोल रही, कैसे बोल रही, वो कथा क्या है वो पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर में जो जो आवाज दे के महाभारत लड़ाई जो कर रहा है उसके बारे में वो गा रही है, वो वैसे टाइप के कलाकार के जरूरत है करके। और मैंने गांठ बांध ली कि मतलब पंडवानी में तो जोश रोश से और ऊंचे आवाज से ही गाए जाते हैं करके, तो कुछ कुछ तो मैं तीजन दीदी से वो मतलब कला उससे मैं ली हूँ। और अब मैं जो जिंदा हूँ तो मैं अपने मरते दम तक तीजन दीदी की याद नहीं भूलूंगी।
1: मैं विजय कुमार दरगाह सारंगढ़ से बोल रहा हूँ। आज श्रीमती तीजन बाई के निधन का समाचार मिला। ये लोक कला लोक गायन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति मैं समझता हूँ। उन्होंने अपने पंडवानी गायन से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जाकर के अपना और देश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। उनका जो जीवन अभिनय जो रहता था महाभारत के पात्रों का, तो सुनने और देखने लायक होता था। तीजन बाई को मैं कुछ पढ़ा है तो उसे पता चलता था कि वो ज्यादा उनकी पारंपरिक शिक्षा कोई बहुत उच्च स्तर तक नहीं हुई थी, फिर भी अपनी कला के बदौलत उन्होंने बहुत अपना नाम किया, अपना अपने परिवार का, देश का, छत्तीसगढ़ का नाम जगह जगह फैलाया। उसके लिए हम अनुग्रहित भी थे उनसे और उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में उनको स्थान दें।
2: वयोवृद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरिनी श्रीवास्तव कहती हैं,
3: तीजन बाई इतनी सहज और सरल थी कि चक्कर वन में रहती थी तो मैं गई थी उसके पास कि आप तो इतने बड़ी उपाधि पा चुके हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई देने आई हूँ। सहज रूप से वो मेरे घर आ गई तो मैंने कहा उसको कि तुमको कैसे लगा, अपना अनुभव बताइए वहाँ पर बाहर विदेशों में। तो बोली क्या बताऊं मैडम, विदेश में विदेश ही रहता है, अपना भारत भारत है करके वो बहुत तारीफ की। पंडवानी के बारे में इतना तारीफ है उसका कि वास्तव में मैं भी देखती हूँ, अभी भी टीवी में आता है कहीं भी आएगा ना तो उसका पंडवानी बहुत बढ़िया गाती है। और इतना नहीं कि ऐसा नहीं कि कोई कागज देख रही है कर रही, वो मन से गाती है, उसकी अंतरात्मा की आवाज रहती, इसलिए लोग बहुत मुग्ध हो जाते हैं। जो आया है वो तो जाएगा ही, लेकिन तीजन बाई का जाना बहुत दुखदाई लगा क्योंकि वो बहुत दिनों तक बीमार थी और बहुत अच्छी लेडी थी, तो इसलिए जाने पर लगा कि ये जीवन की पोथी पर अनंत मृत्यु का हस्ताक्षर है, जीवन की पोथी पर अनंत मृत्यु का हस्ताक्षर है, पंच तत्व में मिल जाना ही पुनर्जन्म का द्वार है।
2: विदुषी तीजन बाई ने भारतीय संस्कृति और कला को दुनिया भर में जो पहचान दिलाई है वो अतुलनीय है। कला के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनके निधन से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा देश एक महान सांस्कृतिक संवाहक से वंचित हो गया है।
4: मैं आज एक दुखद समाचार छत्तीसगढ़ के नाम को, जिनका नाम है काफी था तीजन बाई के नाम से जिन्हें जाना जाता था और पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी को लेकर के भारत देश को सम्मान दिलाने वाली ऐसी प्रतिभा।

0: आज हमारे बीच नहीं रही। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है। एक बार वो मेरे स्कूल आई थी, सारा गांव हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं पीटीआई था, यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है रायपुर से। तो प्रार्थना समाप्त होने के बाद अचानक उनकी गाड़ी आई अंदर और तिजन भाई उतरी जब गाड़ी से, तो मैं उनको देख के आश्चर्यचकित रह गया। ये करीब आज से 10-15 साल पहले की बात है। मेरे से फिर उनका परिचय हुआ, बताया मैं ऐसी ऐसी बात करके, तो बोले आज मैं गाना गाने नहीं आया शायद आ रहा हूँ। मैंने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, देश दुनिया की बात बताने के लिए तिजन भाई छात्रों के बीच आई थी, तो उनका जो है छात्रों के प्रति स्नेह मेरे को देखने को मिला। मैंने बहन जी बन के आए हूँ, ये सब सुन के आज मैं वो उस पल को याद करता हूँ। और दूसरी बात, एक कार्यक्रम कर रहा था मैं मोर माटी के नाचा, ये भी कार्यक्रम 15 साल पुरानी बात है, तो उसपे किजन भाई गेस्ट के रूप में आई थी। जब उसका फाइनल ऑडिशन हुआ रायगढ़ में, तो उनको अपने बीच पाकर वो क्षण को आज मैं याद करता हूँ। निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति है, इसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, केवल यादों में रहेंगी वो। और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो जहाँ कहीं भी रहें, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।
1: राहुल कुमार सिंह, पद्म विभूषण किजन भाई जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, उल्लेखनीय बात यह है कि वो हमारे राज्य की, छत्तीसगढ़ की सी विभूति थी जो अकेली ऐसी विभूति जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अंडवानी कला को उन्होंने जिस तरह की ऊंचाई दी, जिस तरह का पहचान दी और जैसा एक आयाम स्थापित किया, वो अपने आप में अतुलनीय है। उन्हें हमेशा इस तरह से याद किया जाएगा और वो एक कलाकार के साथ साथ एक बहुत ही व्यवहार में ऐसी इंसान थी। मुझे अवसर मिला उन्हें मंच पर देखने का, तो बार बार अवसर मिला। मैं बचपन से ही उन्हें कह सकता हूँ कि देखता रहा हूँ, लेकिन मंच के परे, मंच से बाहर ही वो जिस तरह से होती थी, अनौपचारिक चर्चाओं में वो बहुत सारी ऐसी रोचक बातें कहती थी। एक मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात उनकी ध्यान आती है कि किसी चर्चा में जब उनसे मैंने छत्तीसगढ़ी के सोहर गीतों की कि सोहर गीत तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ी में नहीं है, सुनने को नहीं मिलते या बहुत कम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सोहर गीत बहुत सारे हैं, उन्होंने गाके सुनाया। और जब इससे बात निकली तो मुझे आश्चर्य हुआ कि हम उनको पंडवानी तक ही सीमित मान लिए थे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की, पारंपरिक लोकगीत और उसके साथ जो इस तरह से संस्कार गीत या साथी गाथाओं की, लोक गाथाओं की भरतरी की, वो बहुत बढ़िया जानकार गायिका तो अच्छी थी ही, उनके पंडवानी की बात ही क्या। और इसी तरह एक छोटी सी बात और मैं मुझे हमेशा याद आती है कि उनसे बातचीत में मुझे जो ड्रामा के लिए, मंचीय अनुभव के लिए जो फोर्थ वॉल की बात कही जाती है, दर्शकों से मुखातिब होने या दर्शकों के सामने के लिए जो एक आभासी पर्दा है उसे तोड़कर, उसे हटाकर जो जिस तरह से प्रस्तुति कलाकार देते हैं, उनमें वो उसकी पक्षधर होती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि राज्य बनने के बाद एक विशेष आयोजन दिल्ली में विश्व व्यापार में लेके दौरान हुआ करता था, छत्तीसगढ़ दिवस का आयोजन हुआ करता था, उस सिलसिले में, उस क्रम में वो दिल्ली गई थी और राष्ट्रीय संग्रहालय में उनका कार्यक्रम था, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में, वहां के ऑडिटोरियम में। और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान शुरू होने के बाद हॉल की बत्तियां जला दी गई, बिजली जला दी गई लाइटें, और उसको मैंने बंद कराई कि ये तो कलाकार हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद से तो उन लोगों ने बताया, वहाँ के लोगों ने, कि मैडम ने कहा है कि हल्की बच्चियां नहीं बुझेंगी। मुझे आश्चर्य हुआ।

0: मैं कार्यक्रम के बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत मेरे लिए एक नई सीख थी। उन्होंने कहा कि वे जो दर्शक हैं उनकी प्रतिक्रिया, उनकी मुखमुद्रा, उनके मनोभाव देखती हैं, उसी तरह से अपने प्रस्तुति को वो इम्प्रोवाइज भी करती हैं, थोड़ा बहुत उसमें जो भी उनको इम्प्रोवाइजेशन चाहिए वो वही मौके पे देखते। तो उनको हमेशा वो सामने अगर दर्शक न हो, सामने उनकी मुखमुद्रा अगर स्पष्ट रूप से वो न देख पाती हो, तो उन्हें उस तरह से अपने अभिनय में, अपने प्रस्तुति में, इम्प्रोवाइजेशन में उन्हें वो बाधा होती है। और ऐसी ढेर सारी उनकी स्मृतियां हैं अपने विदेश के अनुभव। जादूराम देवांगन जी जैसे बहुत एक शास्त्रीय पद्धति से लोक की भी अपनी जो परंपरा का शास्त्र होता है उस तरह से पंडवानी की प्रस्तुति होती थी। और उन्हीं की ये जो प्रस्तुति बाद फिर रेवती और कापालिक इस तरह से विभाजन करके देखा जाने लगा। और उन्होंने उस पूरी शैली को, जैसा मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने एक नया आयाम दिया, नई पहचान दी, और पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की उस कला विधा को उन्होंने स्थापित किया। और उस कला विधा के नाम पर छत्तीसगढ़ का भी सम्मान और पहचान पूरी दुनिया में बना।
1: सुरेश देशमुख, तीजन बाई की जहां तक बात है, बचपन से ही कलात्मक अभिरुचि की थी और अपने जीवन में उन्होंने बचपन से पंडवानी की शिक्षा ग्रहण की। पंडवानी की एक नई विधा उन्होंने शुरू की जिसे हम कापालिक पंडवानी के नाम से जानते हैं, जिसमें खड़े होकर, केवल बैठकर नहीं, खड़े होकर पंडवानी को पूरे अभिनय के साथ, मुद्राओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसी विधा को लेकर वो आगे बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने नाम कमाया, बड़े बड़े पुरस्कार हासिल किए। मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: जी, मेरा नाम ऋषि छत्री है, मुझे लोकवाद संग्रह के नाम से जाना जाता है। स्वर्गीय तीजन भाई को मैंने आज से विगत 55 वर्षों से मैं जानता हूँ, उनके साथ काम भी किया हूँ। जब 1970 में मैं पहली बार उनका कार्यक्रम देखा मेरे गांव में, सलोनी ग्राम, सलोनी जो खैरागढ़ के पास है, उस समय जो पंडवानी हुआ करती थी उसमें कोई मंच वगैरह ऐसे कोई व्यवस्था नहीं हुआ करते थे। और एक चीज और बता दूं, जैसे अभी जो कार्यक्रम होता है एक निश्चित कोई रकम धन देकर कार्यक्रम कराया जाता था, उसका ऐसा नहीं हुआ करते थे। उसमें जो आरती और स्वेच्छा से जो दे दिए उन्हीं के बल पर ये कार्यक्रम हुआ करते थे। और जो महाभारत की जो कथा 15-15 दिन का गांव में हुआ करते थे, मैंने बहुत ध्यान से सुना। उसके बाद उनके साथ मैंने 1987 में मैं उनसे जुड़ा, वो केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय से कार्यक्रम करती थी। उन्होंने फिर 1987 में मनमोहना एक लोक संगीत पार्टी खोला, उसमें मैंने फिर वहाँ पर मुझे भी बुलाया गया। मैं उस समय लोक नृत्य करता था। उनके कारण हमने पश्चिम बंगाल आसनसोल स्टील प्लांट, बिहार धनबाद में, और सबसे बड़ी बात कुंभ हुआ था प्रयागराज में, उसमें 7 दिनों तक हमको कार्यक्रम देने का उनके साथ मौका मिला, जो हमारे लिए एक सपना था उस समय में।
3: छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की प्रतीक विदुषी तीजन बाई को आकाशवाणी रायपुर की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि।

0: ये था विश्व विख्यात पंडवानी गायिका विदुषी तीजनबाई के निधन पर श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम विदुषी तीजनबाई एक स्मृति शेष। आलेख वाचन और संपादन प्रकाश उदय, प्रस्तुतकर्ता रमा शंकर।
1: विश्वविख्यात पंडवानी गायिका श्रीमती तीजनबाई के लोक कला के क्षेत्र में किए अविस्मरणीय योगदान पर श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम विदुषी तीजनबाई एक स्मृति शेष का प्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा हाल कुछ ही क्षणों के बाद हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: Of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
3: First Ball 20.
4: नमस्कार, फर्स्ट बॉल 20 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुनीश जॉली और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम एक बार फिर से पहुंच रहे हैं इंग्लैंड के लंदन में और वहां लॉर्ड्स का मैदान इंतजार कर रहा है। एशेज की पुरानी राइवलरी कह लीजिए जो T20 क्रिकेट में आ गई है, या फिर दिग्गज टीमें जिनको बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, एक होम टीम है इंग्लैंड और दूसरी ऑस्ट्रेलिया और आज विमेंस वर्ल्ड T20 का फाइनल है लॉर्ड्स में। मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद है।
5: Oh Manish, I must tell you the palpitation is really high because obviously there is little hit and miss. We are missing India at the moment, but right now we will only talk about Australia and England. Australia pure dominance, super aura, and today because it's Lords, a lot more to happen, but we have much more to talk about in the studio because we have our super, super experts. First of all, we have Chetan Sharma, former Indian fast bowler, and needless to say, 1987's World Cup hat-trick hero, the most loved. Chetan, welcome to the studio.
6: Thank you.
5: Also, we have Vaishali Mathur, India first class cricketer. Vaishali, you also have a lot to talk, right?
7: Yeah.
5: जी, yes, बहुत सारी बातें आपसे स्टूडियो में करने वाले हैं। स्वागत है आपका। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बाय एनी मीन्स मोना पार्था सारथी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेलकम अगेन। वी हैव अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट गेम एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द निटिग्रिटीज एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट।
7: थैंक यू।
4: बहुत बहुत स्वागत है चेतन भाई, आप ही से शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप का एक और फाइनल लॉर्ड्स की बात करते हैं। 1983 वर्ल्ड कप भूलता नहीं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आज का मैच कैसे देखते हैं आप?
6: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो आप रिवलरी की आप मतलब जितनी बड़ी बात कर लें उससे कम होगा। इंडिया पाकिस्तान की आप बात करते हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंग्लैंड अपने घर में कोई वर्ल्ड कप का मैच अभी तक हारा नहीं है और ये एक ऐसा ग्राउंड है कि जहां पर मैच अगर तीन मैचेस खेले गए हैं लॉर्ड्स में, दो टीमों ने चेस करते हुए मैच जीता और एक टीम ने डिफेंड किया है और वो टीम कौन सी है? इंग्लैंड। तो बहुत चीजें हैं जो इंग्लैंड के पक्ष में जाती हैं, आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अनबीटन साइड्स हैं यहां हमारे सामने। जो अच्छी क्रिकेट आज खेलेगा ये ट्रॉफी उठाकर लेकर जाएगा।
5: वैशाली, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके बारे में बात करना वाकई ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात है, जैसे चेतन ने कहा, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, एक भी मैच अभी तक नहीं हारी है। हमेशा हम बात करते हैं कि कौन सी टीम भारी रहने वाली है दूसरी टीम के ऊपर। ऑब्वियसली मुनीश उसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लगता है हमारी दोनों टीम्स जो हैं उनके कैप्टन पहुँच चुके हैं ग्राउंड में, देखते हैं टॉस में क्या हो रहा है।
8: Defoes. I have match referee G.S. Lakshmi alongside our captains in Nat Sivabrunt and Sophie Molyneux from England and Australia respectively. Nat, you have the coin.
9: Heads.
10: Heads is the coin. It's heads.
9: We'll have a bowl.
8: Heads it is. Australia has won the coin toss. So what are Australia going to do?
9: We're going to have a bowl. Beautiful day out here and yeah, we want to get out here, have a run around and hopefully put some pressure on them early.
8: It's a very Australian way sometimes to set and put runs on the board. Did you have a big conversation about what to do first?
9: Yeah, there's been.

0: A lot of discussion around it, but at the end of the day, you sort of have to go with your gut. I don't think the pitch will change too much.
1: At the start of the tournament, it was a Phoebe Litchfield watch. It turned into an Elise Perry watch with the accord awareness. Is Perry playing any other changes to the side?
0: We've got no changes. So, yeah, Pez pulled up really well from her training yesterday. And, very excited to come out here.
1: I read the other day that your childhood dream was to come to this ground with your dad and watch a test match. You're now here. I know he's in the stand as well. And you're captaining Australia. That's good to beat that, doesn't it?
0: Oh, it sounds pretty wild, to be fair. But, special day.
1: And 5-day gap, did you sort of just allow the players a little bit of time off just to freshen up the mind a bit?
0: Yeah, the girls got a couple of days off. Went across town from south of London to north and, started training over the last couple of days. So we're in a really good place.
1: We'll enjoy everything that is a final.
0: Thanks, Go well. Josie.
1: Matt. Perfect. If it had fallen your way, would have things been different?
2: I was going to bowl as well, actually. It's a fresh wicket. Runs on the board in a final is no bad thing, so happy to be stood here batting first.
1: You've kept a pretty consistent team right throughout this tournament. Any changes from the semi-final win against South Africa?
2: No, we're unchanged.
1: I'm going to stick with that as well. Talk to me about your squad, and I'm not talking so much players, but just experience. Charlotte Edwards, captain a team on this ground in 2009, Heather Knight did it in 2017. If you sort of lent on them for experience, are you sort of thinking to yourself, I'm doing it my way?
2: It would be silly of me not to lean on that experience and then try and add my own little spin on it. I think the whole group throughout this tournament has obviously experienced different grounds, different conditions, different pressures, and we've produced some really good cricket along the way. So, hopefully we can do the same again today.
1: What wins it for England today?
2: One more run than the opposition, I suppose.
1: It's as simple as that. All the best. Go well, Matt. Australia have won the coin toss today, and they're going to bowl first in the final.
3: आकाशवाणी में अब एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता पहले बोलिंग करने का फैसला किया है. गर्मी बढ़ रही है लंदन में. विंबलडन हो चाहे लॉर्ड्स हो, पंखे निकल कर आ गए हैं. उसी गर्मी को हम यहां पे कायम रखते हैं. वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे, टॉस जीता आपने, सुना दोनों कप्तानों ने कहा कि हम टॉस जीते तो चेज ही करते, आपके विचार?
4: इस पिच पे अगर देखें ना तो ये 75% ऑफ बैटिंग पिच है एंड 25% बॉलिंग पिच है. अगर बॉल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में मीडियम पेसर को काफ़ी स्विंग में फ़ायदा देगी, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी वो स्पिनर्स पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो मुझे ये लगता है कि इस पिच पे 180 प्लस का स्कोर जरूर देखेगी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने. एंड उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है वो बहुत कॉन्फिडेंट अपनी बॉलिंग के ऊपर. एंड दे नो कि जिस तरह से बॉल, हम कहते हैं कि बॉल रिएक्ट करती है धीरे धीरे, वो कम उसकी स्विंग एंड वो सब कम होता जाता है तो वो स्पिनर पे ज़्यादा फोकस करती है. तो आई थिंक इस यही एक बेनिफिट की वजह से उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है.
3: ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अपने कॉलर्स को बता दें कि अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले हमारे दिग्गज खिलाड़ी चेतन शर्मा मौजूद हैं, मोना पार्थसारथी मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद हैं जो टेलीफोन रिसीव करेंगे. तो टेलीफोन नंबर्स मैं जल्दी से बता देता हूँ. हमारे नंबर्स हैं 2342-1084, 2342-1085. दिल्ली का कोड है 011, उसे लगाना बिल्कुल ना भूलें. 2342-1084, 2342-1085. गीतांजलि
5: जी, मनीष, बहुत सारी बातें इनफैक्ट हमारे कॉलर्स हमसे करना चाहते हैं. जैसा नंबर आपको बताया उन नंबर्स पे आप जरूर कॉल करें. मोना, बहुत सारे फैक्टर्स इनिशियली मैं कह रही थी, चर्चा जरूर करेंगे उस बारे में, लेकिन सबसे पहले पिच की बात करें. लाइक वैशाली कह रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है उन लोगों को जो स्टार्ट पहले कर रहे हैं बैट करने से, राइट. लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग, जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट व्हाट पिच इज गोइंग टू डू, इट वाज ऑलवेज लाइक बिकॉज इंग्लैंड का होम ग्राउंड है और इंग्लैंड ने अभी तक यहाँ पर एक भी मैच नहीं हारा है. उनको ये एज मिलेगा.
6: इंग्लैंड को न सिर्फ मैदान का एज मिलेगा, बल्कि आप कहीं भी देखिए, जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स का मैदान इतना बड़ा है और उसमें पूरा होम सपोर्ट इंग्लैंड को मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. और उसके अलावा पिच की जो आप बात कर रहे थे, तो 158 एवरेज स्कोर रहा है इस पिच पर, और हमेशा चेस करने वाली टीम जैसे चेतन सर बोल रहे थे यहाँ जीतती है और उनको फायदा मिला. इसीलिए दोनों कैप्टन्स ने भी ये कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी शायद चेस करना पसंद करते. और काफी ही रोचक मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की अगर हम अभी तक का जो उनका सफर रहा है उसकी बात करें तो एकदम बराबर नजर आती हैं। इंग्लैंड

0: पिछले 2 साल में 18 महीने में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म टीम नजर आ रही है, तो काफी एक मुझे लगता है रोचक मुकाबला रहने वाला
1: जी। और अभी रोचक बात यह है, कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और उम्मीद करते हैं पहले कॉलर एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार
2: जी। नमस्कार
1: जी, नाम बताइए अपना।
2: जी मैं गुजरात राज्य से अशोक नाई बात कर रहा हूँ।
1: जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
2: देखिए मैम, अमेरिका से सोफिया डंकले को मौका नहीं देना चाहिए मेरे समझ से परे, और क्या कितना टोटल होना चाहिए अगर जीतना है तो इस मैदान पर?
1: जी टोटल की चर्चा जरूर करेंगे, सोफिया के सिलेक्शन से खुश नहीं है। सो चेतन, वी विल हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो चेंज मेड बाय एनी टीम, सो व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट द टीम?
3: देखिए दोनों अनबीटन साइड्स हैं, और जब आप जीतते आते हैं तो हर समय ये कहा जाता है कि ज्यादा बदलाव ना करेंगे तो अच्छी बात है आपकी टीम के लिए। और टॉस के समय अगर आप दोनों कैप्टन्स का रिएक्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहती थी, उनके सोच में यह है कि आप फील्डिंग करें। बट मैं हर समय ये कहता हूं कि इतने बड़े मंच पे आकर जब आप रहते हैं ना, रन्स ऑन बोर्ड हर समय आपकी मदद करता है इस प्लेटफॉर्म पे आकर। और इंग्लैंड की कैप्टन की भी यही सोच थी कि ठीक है हम टॉस हार गए लेकिन रन्स ऑन बोर्ड हो सकता है कि ये प्रेशर में डाल दे, क्योंकि ये प्रेशर गेम रहेगा आपके सपोर्ट, जो कहते हैं ना सपोर्ट इंग्लैंड को रहेगी, क्राउड आपके अगेंस्ट रहेगा, आप चेस कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं इस समय, तो चीजें अच्छी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए इफ इंग्लैंड गेट अराउंड 170-180। देखिए 150 पे कुछ नहीं होगा, 150 ये ग्राउंड ऐसा है कि इट्स ए ब्यूटीफुल विकेट, इसके ऊपर हम देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी इसी ग्राउंड पर हुआ था, 170 रन एक ओवर पहले चेज कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, और लास्ट 10 ओवर में उस समय गीतांजलि 107 रन थे, स्टिल वन ओवर टू स्पेयर दे फिनिश द गेम, तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है ये विकेट कितनी अच्छी है। तो इसलिए 170-180 ऑन अ फाइनल गेम विल बी अ प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली।
1: चेतन अभी तक 186 हाईएस्ट स्कोर रहा है इस ग्राउंड पर,
3: 180 बना दीजिए।
4: राइट देन वैशाली, तो आपने जो अनुमान लगाया 180-85, उसके पास मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी टीम जो है वही यही सोच रही होगी। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पे एक प्लेयर है एशली गार्डनर, उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूं, शी इज बीन एन ऑलराउंड प्लेयर ऑफ द मैच पिछले गेम में। हाउ गुड इज ऑस्ट्रेलिया? ठीक है एशली गार्डनर के बारे में हम शक नहीं कर रहे, लेकिन वॉट डेप्थ है उनके बैटिंग में भी बोलिंग में भी, अगर हम देखें क्या खास आपको दिखता है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं?
5: देखिए उनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, एलिसी पेरी वो एक ऐसी ऑलराउंडर है जो आपके मीडियम पेसर में ही सिर्फ बॉलिंग में फ़ायदा नहीं देती, आपको बैटिंग भी करके देखती है। और उनका ये खासियत, उन्होंने 170 स्कोर जब हुआ था इंडिया के अगेंस्ट और वही वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बैटिंग भी की थी उस टाइम पे, तो ये एक बेनिफिट होता है एक्सपीरियंस प्लेयर का। और एलिसी पेरी वो प्लेयर है जो WPL में भी बहुत अच्छा करके गई है, एंड उसकी वजह से वो काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट पड़ता है एक टीम पे, तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि इंग्लैंड के पास एक बेनिफिट ये है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, एंड उसके साथ उन्होंने इसी ग्राउंड पे इंडिया के साथ मैचेस खेले हैं, सीरीज खेली हैं, और वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया उनके बैटर और बॉलर्स ने।
4: मोना आपसे एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहूंगा, ये अलीसे पेरी के बारे में बात हो रही है, आपने कभी देखा कि सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट होके विमेंस क्रिकेट में एक प्लेयर को बाहर बुला लिया क्योंकि फाइनल गेम तैयारी कर रहे हैं?
0: जिस तरीके से सेमीफाइनल में वो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गई थी तो लग रहा था कि पता नहीं फाइनल खेल पाएंगी या नहीं, लेकिन पिछले 2 प्रैक्टिस सेशन में वो नजर आई और उससे लग गया था कि इतना बड़ा मैच है वो इस मैच से अलग नहीं हो सकती। और कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि वो पूरी तैयारी कर रही हैं, सारा कुछ जतन उन्होंने कर लिया है कि किसी तरह से उनको ये फाइनल खेलना है। 7th अभी तक वो 6 बार जितना ऑस्ट्रेलिया जीती है, उन्होंने काफ़ी अच्छा सफ़र देखा है। और 2023 से जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है और उनको बाहर रखने का मुझे नहीं लगता जोखिम ऑस्ट्रेलिया ले।
1: और एक जोखिम हम कभी नहीं ले सकते, हमारे कॉलर्स को बाहर रखने का, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार।
2: हेलो
1: जी, नाम बताइए।
2: चेतन शर्मा जी नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार, आप आ गए तो मैं बहुत खुशी हो जाता साहब, मैं 1970 से कमेंट्री सुन रहा साहब।
3: नहीं आप, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप कब आएंगे, आपका टेलीफोन कब बजेगा?
2: साहब आप शारजा में एक बार मैच हो रहा था जब क्या हुआ, आप हैट्रिक नहीं है, मेरे को याद है अभी तक।
1: जी सभी को याद है हैट्रिक।
2: और एक मैच में जावेद ने आपका बॉलिंग में लास्ट में छक्का मार के मैच विन हो गया था साहब।
3: जी जी जी जी,
1: बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरीज।
2: आप याद रहता आप आते में वही याद आता साहब, खेल में हैदराबाद उस्मान गेंद।
3: आज वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं और छोड़ देते हैं सभी को
1: जी।

0: मेरे ख्याल से वो कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन
1: एक्साइटमेंट
0: जस्ट आउट ऑफ दिस एक्साइटमेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शारजा की बात की, गर्मी याद आ गई, अब आपने 86 में टूर किया था, घातक स्पेल डाला था इंग्लैंड में, तब का मौसम इतना चेंज हो गया पाजी, प्लेयर्स कैसे अडैप्ट कर लेते हैं इन गर्मियों में और इन टेम्परेचर चेंजेस?
2: देखिए कभी आप सोच नहीं सकते कि अगस्त सितंबर में इंग्लैंड में डे नाइट क्रिकेट होगी। आज के समय में देखिए डे नाइट क्रिकेट आप खेलते हैं, वहां से अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसा टेम्परेचर में बदलाव हुआ पूरे वर्ल्ड में। अगर आप देखें टेम्परेचर में बदलाव है, इस विकेट के ऊपर मैं बात करूंगा, इन दोनों टीम्स की बात करूंगा, 9.2 पूरे टूर्नामेंट में 9.2 पर ओवर के हिसाब से इंग्लैंड ने रन बनाए हैं, 9.4 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाए हैं। यहां पर एडवांटेज अगर हम, मैं मनीष और गीतांजलि बात करूं, एडवांटेज किस पक्ष में जाता है, वो जाता है थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने 6.2 पर ओवर इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। देखिए आपको मैचेस कौन जिताएगा, मैचेस आपको T20 क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आपको गेंदबाज, आप 200 रन बना देंगे, आपके गेंदबाजों में दम नहीं है तो 200 रन ऑपोजिशन चेस कर लेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप इकोनॉमी देखें गेंदबाजों की 6.2, तो ये थोड़ा एडवांटेज जाता है। लेकिन वो एडवांटेज तब आता आपके पास ज्यादा, अगर मैं कैप्टन होता, कि जब मैं पहले बल्लेबाजी करके 180-190 ऑन बोर्ड लगाता और दूसरे को चेज करने देता, क्योंकि मेरे गेंदबाजों की जो इकोनॉमी रेट है वो 6.2 है। या तो आप ऑस्ट्रेलिया जाए और 6.2 से रोकने की कोशिश करें, इसका मतलब 140 के आसपास आप इंग्लैंड को रोकने की सोच रहे हैं, अगर मैं आपके आंकड़े देख रहा हूँ। तो लेट्स सी व्हाट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डू नाउ।
1: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मोना, अगर आप दोनों टीम को एनालाइज करें तो जो इंग्लैंड ऑफ कोर्स एक होम ग्राउंड का तो उनके पास एडवांटेज है, लेकिन वो बहुत रिलाय करते हैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं उनका प्लेइंग स्टाइल। जहाँ ऑस्ट्रेलिया को देखो तो बहुत ही अच्छी कलेक्टिव, एक बहुत ही स्ट्रांग टीम नज़र आ रही है, तो ये एक एडवांटेज तो ऑस्ट्रेलिया के पास बाय डिफॉल्ट है। प्लस ऑब्वियसली वॉल ने भी 101 रन बनाकर नंबर वन क्रिकेटर बन गई हैं, सो वो भी बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है ये।
3: देखिए अभी बहुत बातें हो रही थी कि जब इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा डैनी वेयर्ट पर डिपेंड करती है, लेकिन आपने सेमीफाइनल में देखा 3 विकेट गिर गए थे उनके 23 रन पर, और उसके बाद जिस तरीके से नेट सीवर ब्रंट ने या हीटर नाइट ने जिस तरह की पार्टनरशिप की और जो टीम को जीत तक ले गए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 2017 की टीम थी जिसने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उसमें से कैप्टन और हीटर नाइट और डैनी तीनों प्लेयर के पास काफी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप का, वो कहते हैं ना बीन देयर डन दैट, तो वो वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव उनके पास है। और यहाँ एक और बात रोचक है कि जो इनकी कोच है चार्लोट एडवर्ड्स, 2009 में जब पहली बार इनॉग्रल जीता था वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने, एकमात्र जो जीता है अभी तक, उस समय वो उस टीम की प्लेयर थी, तो उनको अनुभव है कि कैसे जीते जाते हैं वर्ल्ड कप। और वही जिस टीम को उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया की, उसकी जो प्लेयर थी शैली निशके, वो भी ऑस्ट्रेलिया की कोच है, तो कोचों का भी एक अलग ही मुकाबला यहाँ चल रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ता है।
0: वी आर हैविंग अ लवली डिस्कशन हियर बिकॉज़ यू नो बहुत अच्छा पैनल हमारे पास है, एंड वी आर जस्ट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द फाइनल। आकाशवाणी में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, हमारे साथ चेतन शर्मा मौजूद है, मोना पार्थ सारथी मौजूद है, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद है, गीतांजलि भी रन अप ले रही है, वो थोड़ा सा रन अप ले रही है। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ वैशाली, हमने स्टैट्स की बात कर ली, ऑन ग्राउंड आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लैंड को ठीक है रन तो बनाने, लेकिन ऐसी क्या स्ट्रेंथ आपको इन दोनों टीमों में किसकी ज्यादा दिख रही है, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि इंग्लैंड की तरफ से ऐसा क्या उनको पावर प्ले में या स्लो गोवर्स में अलग करना पड़ेगा जिससे वो आगे हो जाएं?
4: इंग्लैंड में नेट सीवर अभी इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रनर है
0: जी,
4: तो उनके ज्यादा रन्स है, तो उनके पास ये एक बेनिफिट है इंग्लैंड टीम के पास। एंड उनके पास एक डैनी वॉट है जो ओपनर आती हैं, एंड जो पावर प्ले में वो एग्रेसिव प्ले करती हैं वो शानदार है, काबिले तारीफ है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी बैटर बहुत ज़बरदस्त है, बेथ मूनी है उनके पास, जो उनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी बेटर है, इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है और बाकी मैचेस में भी उन्होंने काफ़ी बेटर करते हुए दिखाई दी हैं। तो दोनों टीमों में आज जो बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों टीमें अच्छी करती हैं, लेकिन जो फील्डिंग जो मेन पार्ट है वो है फील्डिंग, आप फील्डिंग कितना अच्छा करते हैं वो ज्यादा मैटर करती है।
0: ऑलराइट, इससे पहले कि गीतांजलि अपनी रनअप के साथ आए और एक अगला सवाल पूछे, भारतीय रिप्रेजेंटेशन भी है इन दोनों टीम्स में पाजी, आईपीएल में लगभग सारी प्लेयर्स जो हैं इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की आईपीएल में कहीं ना कहीं किसी टीम से वो लोग खेल चुकी हैं, सो वो एक तरह का इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है
1: जी। और रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं तो दोनों कैप्टन्स की ना चेतन, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एनालाइज करें दैट बोथ द कैप्टन्स, इंग्लैंड की जो हेथ नाइट है और ऑस्ट्रेलियन की नई कैप्टन है सोफी,

0: इनमें से किसकी कैप्टेंसी आपको बहुत इफेक्टिव लग रही है?
1: देखिए दोनों टीमें अनबीटन आई हैं अभी तक, और अनबीटन जब आती हैं तो ऑब्वियसली बोथ कैप्टन्स हैव डन वेल। अभी मनीष ने जो क्वेश्चन पूछा था ना किसके ऊपर इंग्लैंड रिलाई करता, मैं कहूंगा ओपनर्स के ऊपर, बिकॉज दे आर वेरी एक्सप्लोसिव। और अगर एक चांस इंग्लैंड के पास बनता है वो बनता है कि आप पहले 6 ओवर्स को कैसे भुनाते हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, एक्चुअली मेरे साथ डिबेट हुआ है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि 7 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं। मैं हर समय एज ए बॉलर मानता हूं कि पहले 6 ओवर्स हर समय इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बिकॉज दैट विल टेक अवे द गेम फ्रॉम यू। देखिए कैप्टन्स का रोल कैसा होता है गीतांजलि, जो आपने बोला कैप्टन, कैप्टन तो सभी बनते हैं, लीडर कौन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी टीम को कौन लीड करता है, जो परफॉर्म करेगा, और अभी तक मुझे अभी तक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हैज डन ए ग्रेट जॉब, बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल्स और नॉकआउट गेम्स देखें ना, वेस्ट इंडीज को कैसे धाराशाही किया, वो कॉन्टेस्ट नहीं रहना देते हर समय, दे जस्ट फिनिश द ऑपोजिशन। जैसे नॉकआउट स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया आती है दे नेवर वॉन्ट की कॉन्टेस्ट रहेगा, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस आर टफर व्हाट इंग्लैंड आर, बट इंग्लैंड के जो रिकॉर्ड्स, अभी मैम भी बोल रहे थे कि दे आर अनबीटन वर्ल्ड कप में, आज तक इंग्लैंड में हारे नहीं, होम सपोर्ट होगा, अपनी विकेट्स को जानते हैं, थोड़ा सा होम एडवांटेज रहता ही है आपको, तो इट्स गोइंग टू बी अ कंटेस्ट। बट मैं सिर्फ चाहता हूं बैटिंग करते हुए इंग्लैंड 180 रन बना दे, एंड आई वांट टू सी ऑस्ट्रेलिया चेसिंग दैट।
2: और चेतन भाई आप कह रहे हैं कि 180 विनिंग स्कोर होने वाला है,
1: देखिए हो सकता है, देखिए आप यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलियंस, नंबर 10 तक बैटिंग करते हैं, और जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ ताबड़तोड़ की, मुझे तो, मैं भी था यही स्टूडियो में था उस दिन, में मुझे लग रहा था एक तरफा इंडिया मैच जीतेगी, और मैच ऐसे गया हाथ से कि मतलब आप पूछ नहीं सकते। तो ऑस्ट्रेलिया गॉट अ डेप्थ, एंड ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी टफ, स्पेशली इन नॉकआउट गेम्स।
2: हमारे हाथ से कॉलर ना चले जाए,
0: बिल्कुल वो टफ कॉलर हमारे साथ हैं अभी तक, उनसे बात करते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना।
3: मैम मेरा नाम उमाशंकर सिंह है, मैं यूएस सपोर्ट किसी से बोल रहा हूं।
0: हां जी
3: मैम, जितने के अभी तक सब लोग ने मैच में जैसे चाहे वो
0: जी, अगर आपने अभी तक हमारा शो सुना है लगातार और आप फोन करने में बिजी नहीं थे तो इसकी चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल दोनों टीम्स, हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं लगातार कि हर एक के पास कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ उस पे चीजें वर्कआउट होंगी, बाकी तो आप जानते हैं जो क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है, हमेशा हम यही कहते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 2020 और हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं चेतन शर्मा हमारे साथ, मोना पार्थसारथी हैं और हमारे साथ हैं वैशाली माथुर, मैं हूं गीतांजलि सोनी और मेरे साथ हैं मुनीष जौली।
2: मोना, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दो दिग्गज टीमों को देखते हैं, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एनालिसिस करना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे, सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर स्क्रिप्टिंग यू नो अ मैच लाइक दिस बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड।
4: मुनीश जी, कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट बॉल में पूरा इंट्रो बदलना पड़ता है, पूरी कॉपी चेंज हो जाती है, ऐसे भी कई बार हुआ है, और तब अगर इंडिया का मैच नहीं है तो कभी चाहे कोई कितना भी बोले कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे गेम को एनकरेज करें, लेकिन जहां इंडिया एंगल आता है थोड़े से हमारे भी इमोशंस आ जाते हैं उसमें, लेकिन अब यहां तो आपको तटस्थ होके देखना है कि कौन टीम कैसा खेल रही है, और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा क्रिकेट अब होने लगा है ना कि सब एक दूसरे के खिलाफ काफी क्रिकेट खेलते हैं, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि आपको वर्ल्ड कप में ही दो दिग्गजों की टक्कर देखने को मिल रही है। और अभी जैसे चेतन सर कह रहे थे कि ज्यादातर सारे प्लेयर्स जो है वो हम WPL में इनको देखते हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि आप कुछ एक दिमाग में प्रिजिडिस लेके बैठेंगे कि हाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में आने के बाद सामने कोई कंटेस्ट रहने नहीं देती दूसरी टीम पर, एक साइकोलॉजिकल गेम भी उनका चलता रहता है लगातार, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि आपस में इतना आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है कि सब एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जानते हैं, और जर्नलिस्ट भी जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, और कभी कभी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है।
0: जी वैशाली, एज अ क्रिकेटर बहुत सारे मोमेंट्स आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे, अभी जो कंडीशन चल रही है आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम भारतीय टीम की भी बात करेंगे, बहुत सारे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे इस बारे में, लेकिन अभी जो टीम है, आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एक अलग जज्बा आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में नजर आता है, क्या कारण है? आप देखा जाए तो हमारी भी भारतीय टीम वो बहुत ही ज्यादा सशक्त टीम है, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है कि मिस कर गए और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम के पास वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मौजूद है?
5: इंडिया के बाद

0: मेरी तो सबसे फेवरेट है उसके बाद इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम। एंड ऑस्ट्रेलिया टीम में हम कह सकते हैं कि उनका जो फिटनेस लेवल है वो आउटस्टैंडिंग है। वो कहीं और हम अगर किसी कंपेयर करें किसी भी टीम से तो वो उतना हाई लेवल पे नहीं है। एंड उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो उनके पास टॉलर बॉलर्स हैं। अब देखिए कि हमारे पास एक झूलन गोस्वामी थी, और टॉल का जो निप मिलता है ना बॉल को, वो डिफरेंट होता है। वो बॉलर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो आउट होने के कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं उनके। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया टीम एंड उनके पास एक कंसिस्टेंसी है, वो जितने मैचेस वो खेलते हैं उतना मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया उतने मैचेस वो नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि 80-25% कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं मैचेस के लिए। तो एक ऑस्ट्रेलिया टीम के पास एक बेनिफिट है। एंड उनकी जो हम ट्रेनिंग की बात करें तो वो ट्रेनिंग अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वो बेटर है। चाहे वो आप इंग्लैंड ले लीजिए या साउथ अफ्रीका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास एक बेनिफिट है।
1: पाजी बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे हमारी कमेंट्री टीम के पास और दो दिग्गज कमेंटेटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आई नो बहुत अर्ली पूछ रहा हूँ, लेकिन प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि विनर कौन होने वाला है?
2: देखिए मैं तो आंकड़ों के साथ जाऊंगा, मैं आंकड़ों के ऊपर देखता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस स्टेज पर आकर तीन बार मतलब मात दी है, 2012, 2014, 2018 इंग्लैंड को मात दी है फाइनल्स में आकर। तो मतलब इतनी पिटाई के बाद तो मनोबल नीचे रहता है। तो लेट्स सी, दैट्स व्हाई आई वांटेड इंग्लैंड टू गेट टू 180 एंड आई वांट सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग इट। तो मैं इस मैच को एक कांटे वाला मैच देखना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि 6.2 इकोनॉमी रेट की वजह से 140-145 में रह जाए इंग्लैंड, तो इट वोंट बी अ कंटेस्ट। आई वांट इंग्लैंड टू स्कोर 180।
1: मोना, क्योंकि इशारा हो गया प्रोड्यूसर साहब का हमको जाना है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि एक शब्द आपको बोलना है, इंडिया और सॉरी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। मेरा पेट्रियोटिज्म आ गया इंडिया के नाम।
3: हाँ, बिल्कुल, हम सबके मन में आज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया।
1: ऑस्ट्रेलिया, राइट। वैशाली बता चुकी हैं, तो मैं मुनीश जौली, गीतांजलि सोनी के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ ट्यून्ड इन थे और आपने सुना ये प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20। और सीधा चलेंगे लॉर्ड्स लाइव कमेंट्री के लिए हमारी टीम के साथ।

0: तो आइए चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम के पास। दिग्गज कमेंटेटर्स हिंदी में विनीत गर्ग, अंग्रेजी में प्रकाश वाकणकर, स्कोरर है भूपेंद्र सिंह भाटी और स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा। ओवर टू आवर कमेंट्री टीम।
1: नमस्कार, स्वागत है क्रिकेट के इस महाकुंभ में। आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है और ये फाइनल मुकाबला है, और किसके बीच में? पुराने जाने माने प्रतिद्वंदी, कांटे का मुकाबला हमेशा होता है जिनके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड। लॉर्ड्स का यह मैदान जो क्रिकेट का मुख्यालय है, और पहली सूचना जो आपके पास अब तक पहुंच चुकी होगी, दोनों ही टीमों में सेमीफाइनल में जो टीमें खेली थी कोई परिवर्तन नहीं है और दोनों विजय रथ पर सवार हैं। क्यों होगी टीम में कोई बदलाव या परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही अब तक अविजित हैं इस टूर्नामेंट में। और ऐसे में इंग्लैंड, जो कि कभी भी इंग्लैंड में किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप हो तो हारा नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को उसने कभी किसी भी फॉर्मेट में ICC टूर्नामेंट के फाइनल में हराया नहीं है। तो ये एक अजीब सब समा बंधा है यहाँ पर, और सब उत्सुक हैं, सब चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। और यहाँ जो चार ऑफिशियल्स हैं उसमें से आज दो भारतीय हैं। चर्चा जारी रहेगी। पिच नंबर 10 जिस पे थोड़ी सी घास है, नीचे से वो काफ़ी सूखी हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेट बाउंड्रीज 70-71 मीटर की हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज लगभग 60-65 के आसपास की हैं, और क्योंकि पिच नंबर 10 है और मैदान पर 20 पिचेज हैं तो लगभग सेंटर पिच हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक और स्क्वायर थोड़ा छोटा हो जाए। सबसे छोटी बाउंड्री 58 फुट के आसपास की है। जब विकेट के पीछे की ओर खेलते हैं तब स्वाभाविक है कि वो उस ओर की बाउंड्री कम हो जाती है। तो टीमें मैदान में आ रही हैं, राष्ट्रीय गान हो चुके हैं दोनों ही देशों के, और ये महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। प्रकाश मेरे साथ हैं और आप उत्सुक होंगे कि उनके क्या विचार हैं, और ये लॉर्ड्स है और लॉर्ड्स के स्लोप की हम बात करते रहेंगे। स्वागत करता हूँ प्रकाश वाकणकर।
2: थैंक यू विनीत, एंड गुड इवनिंग wherever you are listening. It's a big day at Lord's, where the T20 World Cup final between the old rivals, as Vineet has described, is going to be played, and one of the two prevailing equations has to change. That is that England have never lost a final in an ICC tournament at home.

0: and they have also never beaten Australia. Australia looking for their seventh title, England for their second. And those of our listeners who remember will know that that came right here on this ground when Anya Shrupsole really was the key difference. Harmanpreet's great innings proving to be not enough. And that was the final they won against India. Well, bright sunshine here on our TV monitors. It seems to be good conditions. As Vinita described, it's a fresh pitch. And England will have to get a above par score, Vinita, because this Australian juggernaut is not going to be stopped by anything short of that.
1: सबके दिमागों में यही बात है प्रकाश की किस तरह से ये वेल ऑयल्ड मशीन जिसको कहते हैं क्या ये खिलाड़ी हैं और आप देखें कि ऑलराउंडर से भरी हुई है ये ऑस्ट्रेलियाई टीम एक मैच में तो 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया शायद एक दो ऐसे हैं क्रिकेटर विकेट कीपर को हटाई दीजिए बैटर हैं सारे के सारे जो बॉलिंग भी कर लेते हैं तो इनके पास इतने विकल्प हैं मैदान पर कि अगर कोई दिन आपका नहीं है किसी दिन आप नहीं चल पा रहे हैं तो आपके पास दूसरे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं दो जैसा कि मैंने कहा कि दो भारतीय ऑफिशियल्स हैं उनमें से एक इस समय बॉलिंग वाले छोर पर नज़र आ रही हैं वृंदा राठी और इसके साथ वो मशहूर वेस्ट इंडीज़ की अंपायर जो जिनका कि ये पांचवा T20 विश्व कप है जैकलिन विलियम्स वो शायद स्क्वायर लेग पे अभी नज़र आएंगी तो ये स्थिति है कि जो बहुत ही बढ़िया शानदार जोड़ी है और वो खिलाड़ी वो बैटर डैनी वाइट होज जिन्होंने कि सबसे अधिक रन बनाए हैं अब तक टूर्नामेंट में वो पारी की शुरुआत करने के लिए इंग्लैंड की ओर से आ चुके हैं एमी जोन्स विकेट कीपर हैं बैटर हैं पारी की शुरुआत करेंगे साथ में 7 पारियों में 89 रन 125 का स्ट्राइक रेट तो डैनी वाइट होज दोनों ही दाएं हाथ के बैटर्स हैं और दिलचस्प होगा कि एक तो शुरुआत किस ओर से होती है पेविलियन एंड से या नर्सरी एंड से दूसरा ये कि क्या होता है लूसी हैमिल्टन और किम गार्थ की जोड़ी रही है एक मैच को छोड़कर हर बार इन्होंने ही नई गेंद का इस्तेमाल किया है 7 मैचों में 5 विकेट लेने वाली लूसी हैमिल्टन देखिए और किसको मैगन शुल्ट्स को बाहर बैठा रखा है इन्होंने बाएँ हाथ से बॉलिंग करती हैं एक बाएँ हाथ के बॉलिंग का विकल्प उनको मिलता है लेकिन किम गार्थ की शुरुआत होने वाली है अपने उनके ओवर की 1-6 के बीच का ये पावर प्ले जिसमें केवल 2 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं ये रही मैच की फाइनल की पहली गेंद एक स्लिप तैयार है और जैसी कि आमतौर पर गार्ड करती हैं उनकी पहली गेंद आउट स्विंगर थी एक लेंथ पे टप्पा खाकर दाएं हाथ के बैटर को छोड़ती हुई स्टंप्स के पास नहीं होकर बल्कि थोड़ी सी जगह थी लेकिन आजकल बॉलर्स जो हैं पहली ही गेंद पे विकेट खूब ले रहे हैं पहले इक्का दुक्का कोई होते थे आजकल ये बड़ी चर्चा का विषय हो गया सावधानी रखी कुछ नहीं छोड़ दिया उसको विकेट कीपर के लिए जैकलिन विलियम्स जैसा कि मैंने आपको कहा उनका 96वां वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल मैच है गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई घूम कर पुल करना चाहती थी अंदरूनी सिरा लगा फील्डर ने कोशिश बहुत की सफलता नहीं मिलेगी और ये शुरुआत हुई खाते की 4 रन
2: ये लगा आभा का चौका
1: जोन्स के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका था लगभग टो ऑफ द बैट के पास से स्टंप्स और बैटर के बीच में से भाग्य ने साथ दिया और उस पर 4 रन अवश्य मिले वेरहम ने भरपूर प्रयास किया उस गेंद को रोकने का फील्डिंग का देखिएगा बड़ा मजा आएगा फील्डिंग के स्तर एक आसमान छू रहे हैं प्रकाश और जिस तरह से बाउंड्री लाइन पे किया वाह क्या दृश्य था संतुष्ट नहीं है दोनों बातचीत कर रहे हैं अब तक थोड़ा सा स्विंग मूवमेंट जरूर नजर आया है और ये जो स्विंग मूवमेंट है नर्सरी एंड और पेविलियन एंड दो हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं तीसरा अंपायर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो 4 रन वहाँ पे जो छोटे छोटे विज्ञापन है रोप के ऊपर उससे छू गई या नहीं छू गई और अब वो 4 रन का इशारा आ रहा है जिससे खाता खुला है और जोन्स के खाते में जोड़ा है और इंग्लैंड फाइनल्स में 4 रन बगैर नुकसान के तीसरी गेंद के लिए तैयार किम गार्थ और इस बार ज़्यादा ललचाती हुई गेंद थी खेला उसको पॉइंट पे फील्डर है बाउंड्री लाइन के नज़दीक फील्ड कर लिया गया पिच को अगर आप देखें तो काफ़ी घास है लेकिन नीचे से काफ़ी सूखी नज़र आ रही है और जैसा प्रकाश ने बताया बिल्कुल फ्रेश है अब तक इस पर कोई मैच हुआ नहीं है आमतौर पर स्क्वायर बाउंड्री 58 और 65 की रही है लॉर्ड्स में आज लगभग 64 की रहेगी

0: और एक सार नजर आ रहा है स्क्वायर बाउंड्री का जो इलाका है। 5 रन बगैर नुकसान के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने। व्हाइट हॉट जो जबरदस्त फॉर्म में है, किम गार्थ सामने है और क्योंकि बॉलिंग इस समय पेविलियन एंड से हो रही है उनको अपने फुटवर्क पे ध्यान देना होगा। ओ खतरनाक गेंद, इस ओर से जब बॉलिंग होती है तो एक नेचुरल वेरिएशन से गेंद सीधी रह जाती है और इसी से आपको अपने आप को काबू रखना पड़ेगा, अपने फुटवर्क पे भी काबू रखना पड़ेगा। एज लगी बैट की और स्टंप्स के पास से निकल गई। क्या आज का दिन इंग्लैंड का दिन साबित होने वाला है, क्या भाग्य उनका साथ दे रहा है।
1: Certainly looked like that on that occasion, dropped between the batter and the stumps and then bounced over the stumps.

0: बॉलिंग इस समय पेविलियन एंड से हो रही है, उनको अपने फुटवर्क पे ध्यान देना होगा। ओ खतरनाक गेंद, इस ओर से जब बॉलिंग होती है तो एक नेचुरल वेरिएशन से गेंद सीधी रह जाती है और इसी से आपको अपने आप को काबू रखना पड़ेगा, अपने फुटवर्क पे भी काबू रखना पड़ेगा। एज लगी बैट की और स्टंप्स के पास से निकल गई। क्या आज का दिन इंग्लैंड का दिन साबित होने वाला है? क्या भाग्य उनका साथ दे रहा है?
1: Certainly looked like that on that occasion. Dropped between the batter and the stumps and then bounced over the stumps. Unbelievable luck.
0: Kim Garth, 5 विकेट लिए अब तक टूर्नामेंट में। बिल्कुल स्टंप्स के पास आके शॉर्ट एंड वाइड कट किया उसको, पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, बैकवर्ड फील्ड किया गया, एक रन और। तो दिलचस्प है, आमतौर पर जो सीम का इस्तेमाल करता है वो पेविलियन एंड से बॉलिंग करता है, यहां जहां तक संभव पेविलियन एंड से सीम बॉलर्स जो पिच का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और नर्सरी एंड से स्विंग बॉलर्स। और लाजमी है कि हैमिल्टन उस ओर से बॉलिंग करेंगी जो खासा स्विंग कराती हैं। अगली गेंद, ओवर पिच गेंद, हाफ वॉली स्विंग होती हुई, और क्या फील्डिंग! कवर क्षेत्र में शानदार क्षेत्र रक्षण, रन नहीं लेने दिया। यही है T20 क्रिकेट का मजा।
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: A tentative start really by England. A streaky boundary for Amy Jones got things underway, and there have been a couple of questions asked. Already we've seen the athleticism of the Australian girls in the field, and that will be a factor, as Vineet mentioned quite clearly. Both sides, but particularly Australia, just exceptional in the form of a well-oiled machine that has not had any silverware for a few years now, and they'll be thirsting to get the trophy in their cabinet. Right then, Lucy Hamilton, left arm over the wicket, balls wide outside the off stump, may well be called that. We'll wait to see whether Jackie Williams thinks so. No, it's all right. Must have pitched just inside the tram line, but certainly moved away, exaggerated movement away from the right-hander. Danny Wyatt-Hodge, leading run scorer in the tournament so far. Healthy strike rate, just under 300 runs as well. And Amy Jones, who hasn't really blossomed with the bat. Next one's pitched up and it's gone. I think it's carried. Yes, it has. And that's a big wicket. Amy Jones edging one to the lone fielder in that slip cordon. And that means England have lost an early wicket. Australia rocking the home team in the very second over. In fact, that is the last thing that England wanted, having been put into bat, shaping away, looking for a big drive, outside edge, carries to gully and taken very comfortably. Australians don't drop catches beneath. And that's the dream start for the girls in their green and yellow.
0: Amy Jones ek bar fir offside mein out ho rahi hain. Predominantly onside ki cricketer hai. Pata nahi kyun jo wicket keepers hote hain wo onside mein zyada mazboot kyun hote hain. Pichle match mein semi final mein bhi point ke aas pas wo out hui thi. इसी तरीके की ऑफ स्टंप के बाहर की स्लाइटली वाइड गेंद पर, और लगभग उसी इलाके में जैसा कि प्रकाश ने आपको बताया, गली पे वो कैच आउट हो गई। महत्वपूर्ण सफलता मिली है ऑस्ट्रेलिया को, और इंग्लैंड को अब भरपाई करनी पड़ेगी ऑन द बैकफुट शुरुआत में ही, और पावर प्ले में अगर जल्दी जल्दी विकेट गिर जाएं तो फिर एक बड़ा स्कोर बना पाना थोड़ा दुष्कर हो जाता है।
1: Well, we saw that in the semi-final, didn't we, Vineet? England lost 3 early wickets. And then it was the two captains, the current and the former, Nat Siva Brunt, who will come into bat at number 3, and her immediate predecessor, Heather Knight, who stitched together that partnership. Here's the first ball that's been faced, and it's been creamed away just elegantly and timed to perfection through the extra cover boundary for 4. What a terrific shot.
5: Ye laga, Abha ka choka.
1: That's the class there, just waiting on it, Siva Brunt.

0: and then easing it away, not trying to hit the ball too hard, just pure timing, and it races across the hallowed turf at the Lord's Cricket Ground, and England move into double figures, 11 for 1. Here's Hamilton in again, and this time unable to quite time it, getting the inside part of the bat. The ball trickles away towards the offside, and there will be no run. Just watching the replay of that dismissal again now in real time, Vineet, you can see that the anticipation was there. There was a plan there. And Amy Jones unable to get her foot to the pitch of it. And as a result, drove away and Wall, Georgia Wall, making no mistake. Here's the fifth ball of the second over. It's Lucy Hamilton, left arm over, past umpire Williams, bowls. And Siva Brunt is defending on the offside. Out to cover, there will be no run. The home crowd will be a big factor in this game, one feels. England playing at Lord's, the last time any England team, men or women, played a World Cup final at Lord's. We all know the drama that happened there. And many would argue that it was a victory that was snatched by defeat or by fate more than anything else. But it was a great game of cricket. Let's hope this one lives up to it. Last ball of the over. Here's Hamilton Bowles. This one's a swing and a miss from Siva Brunt as the ball shapes away. End of the over, 11 for 1.
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोरदार शुरुआत, ऐसी शुरुआत जिसकी दरकार उनको थी। और ताज्जुब ये होता है कि ज़्यादा इस मैदान को समझते इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट जबकि गेंद नर्सरी एंड से की जा रही थी, इतनी लाजवाब थी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट डाउन द स्लोप जो फील्ड प्लेसमेंट विकेट के पीछे अतिरिक्त खिलाड़ी लेकर, दो खिलाड़ी विकेट कीपर के अलावा लेकर उन्होंने बॉलिंग की। गार्थ के नए ओवर की पहली गेंद को बैकफुट पे संतुलित होकर खेल दिया डीप विकेट पॉइंट। एक समय था एक थर्डमैन लगता था और एक फाइन लेग लगता था, काम पूरा हुआ शुरुआती ओवर्स का। अब आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बैकवर्ड पॉइंट और स्क्वायर लेग क्षेत्र के आसपास, नहीं तो लॉन्ग लेग की दिशा में खिलाड़ी नजर आएगा। क्रिकेट बहुत बदला है, उसकी तस्वीर बहुत बदली है और दोनों ही टीम वही हैं जो सेमीफाइनल में खेली थी, कोई परिवर्तन नहीं है। और गार्थ पेवेलियन एंड से बॉलिंग कर रही हैं और ये डाउन द हिल है। डाउन द हिल वो जो पेवेलियन एंड है वो थोड़ा सा इस समय मदद करता है कि आप गेंद को बाहर की ओर निकालें। गार्थ देखें इस ओवर में क्या करती हैं, क्रीज के बीचों बीच से ये गेंद थी और वहीं दबाकर सिंगल दौड़ना चाहती थी, टाइम नहीं कर पाई अपनी स्ट्रोक को, गेंद वहीं लुढ़क कर रह गई और वापस दी जा रही है किम गार्थ को। ताहिला मैग्रा उप कप्तान है, टीम में नहीं, चार बेंच पे जो बैठी हुई खिलाड़ी हैं सब आईसीसी ट्रॉफी में जीत के समय शामिल रही हैं।
0: They're all World Cup winners, right? That shows the depth of Australia.
2: Danny Whitehorse enables Sutherland. Sutherland को एक विकेट चाहिए 50 T20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने के लिए। मेगन शूट जो अब तक सब टूर्नामेंट्स में खेली हैं T20 के, ऑस्ट्रेलिया की ओर से टीम में नहीं है, केवल एक मैच में, दूसरे मैच में शामिल किया गया था अगली के, और उसको पूरा सम्मान देते हुए उसके ऊपर आते हुए कलाइयों को जोर से धीरे से पुश भर किया। और 2.3 ओवर के बाद टॉस हारकर इंग्लैंड 12 रन और विकेट कीपर एमी जोन्स का वो खो चुके हैं। शिवर ब्रंट और व्हाइट हॉज की जोड़ी इस समय मैदान पर है। शिवर तीन मैच खेली, उसके बाद उनको क्वाड की ट्रबल हुई, उनको जांघों में तकलीफ हुई, उसके बाद नहीं खेली। पिछले मैच में क्या जोरदार वापसी की, 75 रन बनाए 47 गेंदों पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से कलाइयों का प्रयोग किया, डाइव किए हुए फील्डर से गेंद छिटकी, दूसरे रन के लिए जा रही है, इससे पहले कि आके उसको उठाया जाए दूसरा रन भी पूरा हो गया। ये होता है जब पहला रन आप तेज लें, फील्डर्स के ऊपर दबाव बनाए, अपनी दाईं तरफ जाकर डाइव लगाई, पूरी लंबाई का फायदा उठाते हुए डाइव लगाई, लेकिन हाथ से लगने के बाद छिटके और एक रन और पूरा हुआ। 3 रन अब तक इस ओवर में, 2 गेंदे शेष हैं। ऑफ साइड में एक कवर पॉइंट है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर और लॉन्ग लेग है सीमा रेखा पर, बाकी सब दायरे के अंदर हैं। बहुत फुर्ती दिखा रहे हैं ओवर्स करने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, जरूरी है नहीं तो लास्ट पावर प्ले में एक फील्डर कम मिलेगा बाउंड्री लाइन के पास।

0: अगली गेंद को रक्षात्मक रूप से खेला और गेंद वापस बॉलर को दी जा रही है। सिवर ब्रंट 10 इनिंग्स अब तक उनकी हैं, जो पिछली 10 इनिंग्स हैं उनमें उनका लेखा जोखा बढ़िया है। क्या कर सकता है इंग्लैंड, कितना संतुलन रखना होगा, कितने स्ट्रोक्स खेलने हैं, विकेट गिरने से बचाने हैं। ये 6 ओवर का पावर प्ले जिसमें केवल 2 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं, उसका फायदा भी तो उठाना है और ऐसे में आप विकेट भी दे सकते हैं। लॉर्ड्स के स्लोप में जिस जगह खड़े होकर बैटिंग कर रही हैं सिवर ब्रंट, आपका संतुलन बिगड़ जाता है, आप शफल करके आपका फुटवर्क आपको ऑफ स्टंप के बाहर ले जाता रहता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी इसके आदी हैं, दर्शक भरे हुए हैं, लगभग 30,000 के आसपास दर्शक, और क्यों ना हो, बहुत बड़ा अवसर है क्रिकेट के मुख्यालय में। और मैच किसका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, परंपरागत प्रतिद्वंदी, कांटे के मुकाबले के लिए सब ललायित हैं। क्या होगा अंतिम गेंद पर, अच्छी गेंद स्टंप्स को, यू हैव टू अटैक स्टंप्स, बीच बीच में स्टंप्स की सीध में, अगर आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और ऑन साइड में फील्ड प्लेसमेंट है तो आपको फायदा मिल सकता है, नहीं तो फिर आप महंगे भी साबित हो सकते हैं।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: 14 for 1-3 overs gone. England haven't really been able to capitalize on the power play so far, except for one authoritative cover drive by Nat Siver Brunt. There's just been that one bottom-edged boundary for Amy Jones. Australia starting off just the way you'd expect. And a change in bowling now. The Australian captain, Sophie Molyneux, will start her left-arm spin. And she's replacing Lucy Hamilton, who's got the best economy rate, I dare say, probably in the tournament itself, but certainly in the Australian team. She hasn't been among the wickets as much, but she's kept a very tight leash. And Wyatt Hodge has been susceptible to spin in an early part of the innings. And here's Sophie Molyneux now. An economy just at 6.5 runs and over. First ball of spin. And down the wicket comes Wyatt Hodge. Gets a thick outside edge. He's going to run down towards the square third boundary. Won't be cut off. 4 runs.
5: Ye laga Abha ka choka.
4: Again, not quite where Wyatt Hodge wanted to play that. She was looking to play inside out through extra cover. Thickish outside edge, keeper standing up, but covering the turn well and getting a fortuitous boundary. So 2 out of the 3 boundaries for England with a slice of luck. Here's Molyneux again, wide of the crease, short and off the back foot, crunched, not timed at all. Diving stop, I think it's Ellis Perry there, who dives to her right. What a cricketer she is. Talismanic, and someone who's played football for Australia as well. Supreme athlete. Had a little bit of an injury scare in the semi-final, but she's come back raring to go. And Wyatt Hodge now completes 300 runs in the tournament. 19 for 1. Siver Brunt. Molyneux. Captain to captain. Straight to the fielder at point. And there will be no chance of a run. It remains 19 for 1. In the fourth over now, 3.5 overs gone. England will have to look at getting a move on here. Molyneux bowls down the wicket, comes Siver Brunt again. There's a bit of turn. This could be tight. The bails have been whipped off. They will go upstairs, I think. We'll have to wait and see whether Vrinda Rathi will actually signal that, or will the third umpire just review it and respond. But certainly beaten in the air was Siver Brunt. Had to check her shot. Again, outside edge. Quick throw in from Georgia Wall. And I think she's made her ground, but it was tight there. A single that they really shouldn't have been taking a risk with, but managing it. I think 20 for 1. The two batters in mid-conference now, Vineet. Here's the decision. Yes, she looks like she's in, Vineet.
0: बिल्कुल, और विकेट कीपर काफी परेशान नजर आई, खफा थी कि वो एक बेहतरीन अफसर को चूक गई।

0: रन आउट करने का। सिल्वर ब्रन को मोलिनो ने 3 बार आउट किया है T20 में। अच्छा मैचअप है, राइट हैंडर और बाएं हाथ का स्पिन बॉलर।
1: Now Wyatt Hodge, who's had a sprint to save her wicket, now waits for Molyneux and she looks to sweep. The ball comes off the bat onto the grill of her helmet. Now will this lead to another small stoppage for a check, safety check, or was it not something that impacted the batter? We'll find out. We don't know that yet. 20 for 1. Siva Brunt is on 7. Wyatt Hodge also on 7. And these two have put on 13 runs. We're in the fourth over, last ball. And it's turned away on the onside to think of a run which isn't there. Excellent over, except for that one edge boundary. 20 for 1.
0: तो दिलचस्प क्रिकेट चल रहा है। ये पिछली गेंद 80 के आसपास की थी। कभी कभी ऐसा अब तक जितना थोड़ा सा खेल हुआ है उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि गेंद बहुत आसानी से बल्ले की तरफ आ नहीं रही है। स्ट्रोक्स खेलना इतना आसान नहीं है। गति में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ द पेस भी नज़र आ रहा है। बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया इस समय। और राइट हैंडर्स हैं उधर, आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम में सब लेफ्ट हैंडर्स हैं, ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स हैं, कम से कम 3-4 लेफ्ट हैंडर्स हैं। और इसीलिए वो ऑफ स्पिनर का मैचअप जो उनके साथ होगा तो चार्ली डीन कारगर साबित हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल नेट सिल्वर ब्रंट के दिमाग में भी ये बात होगी कि उनको कई बार मोलिनो ने आउट किया है। अच्छा बॉलिंग चेंज था और परेशानी में नज़र भी आई। कोई भी बैटर अब तक प्रकाश विश्वसनीय नज़र नहीं आया है पिच पे कि वो रफ्तार को समझ गया है या अपना खुलकर स्ट्रोक खेल पा रहे हैं। ओवर पिच गेंद पैरों के पास ऑफ द टोस खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री की तरफ, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: लगातार बॉलिंग में परिवर्तन कर रही हैं कप्तान अनाबेल सदरलैंड को लगाया था और उनका अच्छा स्वागत किया और नसीहत दी। एक खराब गेंद जो ओवर पिच हुई और स्विंग के साथ अंदर की तरफ आ रही थी, विद द टाइड खेल दिया उसको और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास, उधर जहां टेवन स्टैंड है उस ओर गेंद चली गई 4 रन के लिए। 24 रन एक विकेट पर। इस बार उठा कर खेला है, उस ओर फील्डर है लेकिन काफ़ी दूर है। फील्ड किया, दूसरे रन के बारे में नहीं सोच रही हैं। लॉर्ड्स के मैदान पर जब आप देखेंगे मैदान, तो आमतौर पर तजुर्बेकार खिलाड़ी होते हैं वो बाउंड्री लाइन पे कम से कम 5-7 फिट अंदर की तरफ खड़े रहते हैं। लॉर्ड्स में आप बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े नहीं रह सकते, ये एक विशेषता है इस मैदान की। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना होता है, उसके बाद भी लोग उत्सुक होते हैं कि लॉर्ड्स में आकर खेलना है। 25 रन एक विकेट पर, 5वां ओवर चल रहा है। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, फील्डिंग कर रही है, अच्छी लंबाई की गेंद कर रही है, स्विंग हो रही है गेंद और रन लिया जरूर है लेकिन इसमें वेल विद इन देमसेल्व्स। दोनों बैटर्स कोई बहुत ज्यादा आक्रामक तेवर प्रकाश नहीं दिखा रही हैं।
1: ट्राइंग टू कंसोलिडेट एंड क्रिएट अ बेस हियर, आई डोंट थिंक दे आर टू वरीड अबाउट द पावर प्ले। डिफरेंट टीम्स अप्रोच पावर प्लेज डिफरेंटली एज वी नो विनीत। इंग्लैंड लुकिंग लाइक दे वांट टू जस्ट मेक श्योर दे डोंट लूज टू मेनी विकेट्स।
0: सदरलैंड प्रतीक्षा कर रही है, फील्ड को ही बड़ी जतन के साथ जमाई जा रही है और अंपायर की भी निगाह है, बैटर की भी निगाह होगी। नो बॉल का इशारा कुछ विलंब के साथ आया। तीसरे अंपायर जो कि किम कॉटन, बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं और वहीं से तीसरे अंपायर से ही इस टूर्नामेंट में इशारे आते रहे हैं और यही नियम बनाया गया है।
3: वेरी क्लोज, जस्ट ऑन द लाइन,
1: ऑलमोस्ट हार्श।
0: कड़ा निर्णय अंपायर ने, काफी समय भी लिया ये फैसला करने में और अंततः बैटर के पक्ष में ये निर्णय गया। फ्री हिट मिलेगा, उसकी तैयारी की जा रही है। मुझे याद आता है ऑस्ट्रेलिया में हम कमेंट्री कर रहे थे सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में, प्रकाश ने मुझसे पूछा था कि जब इस तरीके से होता है फील्ड में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, फिर वही जवाब ढूंढ के लाए थे कि अगर बैटर बदल गया है तो होता है। ऑफ स्टंप के बाहर से ये गेंद और उसको घुमा दिया है पुल के अंदाज में और गेंद जा रही है स्लॉग कॉर्नर में, मिड विकेट के बाई तरफ से सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: पूरी बैकलिफ्ट 360 डिग्री में घूमता हुआ बैट, जैसे कि पुराने समय में कैलेप्सो कहलाने वाले वेस्टइंडीज क्रिकेटर खेलते थे, लेकिन ये T20 का जमाना है साहब। और महिलाओं का क्रिकेट हो या मेंस का पारंपरिक क्रिकेट हो, अब तो बल्ला घूमता है और बखूबी घूमता है।

0: दो चौके लग चुके हैं इस ओवर में, खराब गेंद, थोड़ी दिशाहीन, लेग स्टंप के बाहर आई, पूरा फायदा नहीं उठा पाई, दूसरे रन के लिए सोच रही है, दो फील्डर झपटे, विकेट कीपर स्वयं पहुंची वहां उस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन कोई विशेष लाभ बैटर उठा नहीं पाए क्योंकि गुंजाइश केवल उस लेग बाइस पर एक रन की ही थी। पर जैसा कि हम दोनों ही आपको बताते रहे, अब तक टाइम नहीं कर पा रहे हैं, गति का परिवर्तन है निश्चित है, कर रहे हैं चतुराई के साथ बॉलर्स, लेकिन उसके बावजूद भी ये विकेट कुछ धीमा लग रहा है, बैट पे नहीं आ रही है गेंद, फिर लेग स्टंप के बाहर कलाबाजी खाते हुए विकेट के पीछे, कैच के लिए अपील कर रही है और अंपायर इशारा कर रहे हैं वाइड का, गार था ये बात करने के लिए और उस सलाह मशवरा हो रहा है कि रेफरल लिया जाए या नहीं लिया जाए, 7-6-5 समय रुकता थोड़ी है और ले लिया। सोफी मोलिनू कप्तान जो है उन्होंने इशारा कर दिया हमें रेफरल चाहिए, तीसरे अंपायर को निर्णय कर लेने दीजिए क्या ये आउट था अथवा नहीं।
1: माइट बी क्लोज रिमाइंड्स मी व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट व्हेन हैरी ब्रुक वाज गिवन आउट, एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन डाउन द लेग साइड, द अंपायर डिक्लेयर्ड इट अ वाइड एंड देन द रिप्ले शोड द बॉल हैड टेकन द ग्लव, दिस विल टेल यू विनीत।
0: बिल्कुल ग्लव्स के बेहद करीब से जा रही है, निश्चित रूप से अल्ट्रा एज देखना चाहेंगी किम कॉटन, बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं, बहुत अनुभव है उनके पास, और वो जो दृश्य है आपके दिमाग में भी आया होगा, ईशान किशन बहुत ज्यादा विश्वसनीय नजर आ रहे थे, संकल्प से भरे हुए थे, कह रहे थे बिल्कुल बिल्कुल आउट है आउट है, और यहाँ विकेट कीपर एमी जबकि ग्लव्स के पास से एज नजर आ रही और ये निश्चित रूप से विकेट मिल जाएगा वहां, अच्छा रेफरल किम कॉटन के निर्णय की हालांकि प्रतीक्षा है, लेकिन वो स्निको वो जो अल्ट्रा एज है जो कार्डियोग्राम की तरह उस ऊपर नीचे उठने वाली रेखाएं आती हैं ग्लव्स के पास से जब गेंद गुजर रही थी, और विकेट कीपर बहुत जल्दी बर्ट मुनी उसको समझ गई थी और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ कैच की तरफ वो लपकी थी और छलांग लगाते हुए डाइव लगाते हुए उन्होंने किया था वो कैच किया था और रेफरल मिला, उनके रेफरल दो अभी भी बरकरार रहेंगे, दोनों टीमों को दो दो इस इनिंग्स में, सफल जब तक वो रहेंगे जब तक दो बने रहेंगे, पूरे हाथ आगे फैलाए, पोजीशनिंग अच्छी थी, अनुमान अच्छा लगाया था हालांकि अनसाइटेड थी बैटर के द्वारा, और उसके बाद भी मुनी जिन्होंने कि अब तक 5 कैच पकड़े हैं पीछे विकेट के इस टूर्नामेंट में, अपना पूरा अनुमान लगाकर और उसका लाभ दिया और उसके बाद उन्होंने जानबूझकर सलाह भी दी कि लीजिए इसमें गुंजाइश है, और अब उंगली उठती हुई विंदर है ठीक है जबकि बैटर जा रही हैं, तो दबाव इंग्लैंड के ऊपर अचानक नजर आ रहा।
1: एब्सोल्युटली एंड सो द लीडिंग रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट डैनी वाइट हॉज जॉइंस हर ओपनिंग पार्टनर एमी जोन्स बैक इन द लॉर्ड्स पवेलियन, इंग्लैंड इन ट्रबल आई वुड से हैविंग लॉस्ट द सेकंड विकेट फॉर 32।
0: तो ऑस्ट्रेलिया न केवल दो विकेट ले चुका है और रन बनाने की गति जो पावर प्ले में इंग्लैंड रखना चाहता है, हर टीम रखना चाहती है क्योंकि दो ही फील्डर बाउंड्री पे होते हैं, उसका लाभ भी वो नहीं उठा पाए हैं, और एक वो जो पार्स स्कोर की जो परिकल्पना उन्होंने की होगी और जो दिमाग में बैठा होगा उसका इस पिच को देखकर और परिस्थितियों को देखकर अब संभल कर खेलना होगा, ज़्यादा विकेट वो खोना नहीं चाहेंगे। एलिस कैप्सी इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा इस टूर्नामेंट में नहीं हुई है लेकिन आज सुनहरा अवसर है, वो अपने आप को साबित कर सकती हैं और बीड़ा उठाएं इंग्लैंड को आगे ले जाने के लिए। 5 मैच 74 रन ये उनके लेखा जोखा है पिछली 5 इनिंग्स का। कैप्सी सामना करेंगी, वही स्ट्राइक लेंगी अंतिम गेंद, और धीरे से पुश भर कर दिया बहुत ही इत्मीनान के साथ, और कप्तान साथ दे रही थी सेवर ब्रंट, 1 रन पूरा हो गया, 5 ओवर समाप्त 33 रन 2 विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में,
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर, आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: 33 for 2, not dissimilar to the kind of position England found themselves in the semi-final against South Africa. The important thing is Siva Brunt is still there. She's on 16. Alice Capsey has just joined her. Danny Wyatt Hodge would consider herself a little bit unfortunate to have been snaffled down the leg side. But the athleticism of Beth Mooney once again showing that if you are fit and sharp, a lot more is possible. Capsey now on strike and Lucy Hamilton is back into the attack for her second over.

0: हैं, ओवर टाइम पे पूरे करने बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका एक खिलाड़ी अंतिम ओवर्स में कम आपको मिलेगा बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द। ये सूरत हाल है यहाँ पर। आज टॉस हुआ, फाइनल मुकाबला है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 वर्ल्ड कप का, यह 10वां है। कुल मिलाकर अब स्थिति यह है कि 39 रन के स्कोर पर दो खिलाड़ी इंग्लैंड ने खो दिए हैं, हालांकि कप्तान अभी भी मौजूद है नेट सेवर ब्रंट। और जैसा कि प्रकाश ने बताया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब उनका मुकाबला हुआ सेमीफाइनल, लगभग यही परिस्थितियां थी। उसके बाद हैदर नाइट और कप्तान के बीच में 133 रन की साझेदारी हुई, तो इसी तरीके की कुछ ज़रूरत यहां पर है। लेकिन पिच निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बैटिंग के अनुकूल लगभग इस समय नज़र नहीं आ रही है। तो जैसे जैसे धूप होगी, क्रॉस ब्रीज है मैदान पर, वेस्टर्ली ब्लो कर रही है जो पिच के ऊपर से अक्रॉस जा रही है, तो शायद बाद में बैटिंग करना शायद कुछ अपेक्षाकृत आसान हो। लेकिन अभी जूझ रही है इंग्लैंड की टीम एक बड़े स्कोर करने के लिए। एक स्ट्रोक ऐसा याद नहीं आ रहा है प्रकाश, जिसमें आक्रामक तेवर से मिडल करके उसको बाउंड्री पार पहुंचाया।
1: I would say, Vinith, except for the first cover-driven boundary that Nat Siver Brunt played, which was really a beautifully timed shot, there hasn't been, you're right, a stroke of authority, a stroke of control, or a stroke of determination. But it seems like that is the plan that England are playing with. They haven't shown aggression. And different teams approach power plays differently. India, for example, look to maximize the power play. And in the process, if they lose wickets, it's okay. That's their thinking. Some other teams play slightly more conservatively. But the occasion, the World Cup final, the losses to Australia, home pressure, all of those things must be playing on the minds of the England batters as well.
0: एक बात तो तय हो चुकी है और आंकड़े इस बात का सबूत हैं, स्टैट्स इस बात का सबूत हैं, प्रमाण हैं कि ये सिक्सर लगाने का खेल तो नहीं है T20 क्रिकेट। आप देखेंगे कि जो टीमें आगे बढ़ी हैं उनमें कम सिक्सर लगाने का ही रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, ज़्यादा लगाए नहीं हैं। सबसे बड़ी बात स्ट्राइक रोटेशन और डॉट बॉल्स कम से कम खेलना बहुत मायने रखता है, और उसमें कुछ टीमें पिछड़ी हैं जिसमें भारत भी है। हालांकि आप देखें, छक्के लगाने में स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा दोनों ने 5-5 छक्के लगाए हैं, सबसे ज़्यादा ड्रैक्सन ने लगाए हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए, तो ऊपर हैं सिक्सर्स में तो। लेकिन वो जो स्टार्ट मिलना चाहिए था भारत को नहीं मिला, क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेशन नज़र नहीं आया। ये दीजिए, ये एक और खतरनाक बॉलर जॉर्जिया वेरम, लेग स्पिनर हैं लेकिन गजब की बॉलिंग करती हैं, झांसा देने में माहिर हैं, हवा में झूलती हुई, तैरती हुई, डिप होती हुई गेंद मिडिल स्टंप पर आती हुई। ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप्स को लगातार अटैक किया है, यथासंभव स्टंप्स पर रखी है, यू मिस आई हिट, और ऐसे में फिर दुश्वारियां बैटर्स की बढ़ जाती है और आपको देखना पड़ता है कि कैसे खेलेंगे। 40 रन 2 विकेट पर, ये 7वां ओवर, ड्रिंक्स के बाद का पहला ओवर लॉर्ड्स में शुरू हुआ है। इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला खेला जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा है और उसको उल्टा खेलना चाहती थी, रिवर्स रैंप के हिसाब से खेलना चाहती थी, या स्कूप कह लीजिए। हालांकि संपर्क हुआ, दूसरे रन के लिए आएंगी जरूर, लेकिन इससे ज़्यादा तेज़ी से रन चाहिए, क्योंकि पावर प्ले अब समाप्त हो चुका है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी है, अब बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द ज़्यादा खिलाड़ी रखे जा सकते हैं। आगे की ओर झुकी, कलाइयों को घुमाया, बैट का मुंह आसमान की ओर कर दिया और फिर विकेट के पीछे की ओर उसको खेलने का प्रयास किया, और गेंद का जो मूवमेंट था, टप्पा खाने के बाद गेंद एक तो नीचे रह रही थी, ज़्यादा उसमें उछाल नहीं था, अपने स्ट्रोक को नियंत्रित करके चेंज करने की कोशिश की थी। 3 रन 2 गेंदों पर अगली गेंद को कवर्स में फील्ड कर लिया गया, ज़्यादा ऊंची बैकलिफ्ट लेके ड्राइव किया था इस बार। लेकिन नेट शेवर ब्रंट, जिन्होंने 75 रन 47 गेंदों पर पिछले मैच में बनाए थे, जबकि सोफिया डंकली के स्थान पर टीम में शामिल हुई जो अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन कप्तान ने बढ़िया पारी खेली, एक और सिंगल दौड़ते हुए इस बार गेंद को खेला है, डाउन द स्लोप उस ओर गई है जहां की माउंट स्टैंड है, और वहां गेंद खुद ब खुद तेज़ी से जाती है, लेकिन स्ट्रोक में कोई गति ही नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, प्लेसमेंट थी, गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करने का प्रयास था, मोड़ा भर था, केवल 1 रन। अब तक 4 रन इस ओवर में, 2 गेंदें शेष हैं, 43 रन 2 विकेट पर। अगली गेंद वेरम की, वेरम देखिए बहुत बढ़िया गेंदें कर रही हैं, गेंद को आई लाइन के ऊपर कर रही हैं, बीच में फास्टर वन करती हैं, लोअर ट्रेजेक्टरी की गेंदें करती हैं, भरपूर वेरिएशन, विविधता लिए हुए उनका ओवर होता है, और कुल मिलाकर टूर्नामेंट में उनका इस्तेमाल किया है, और जब इस्तेमाल किया है उन्होंने ब्रेक थ्रूज दिलाए हैं। हालांकि इस समय हावी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, 7वें ओवर की 1 गेंद शेष है, 43 रन 2 विकेट पर।

नीची हो जाती हैं और हतप्रभ हैं इंग्लैंड के बैटर्स, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्ट्रोक खेले। और विशेष करके प्रकाश उनकी परेशानी इसलिए ज्यादा है कि ओवल जहाँ की दोनों सेमीफाइनल इन टीमों ने खेले हैं दोनों अपने अपने, वो इंग्लैंड में इस समय सबसे ज्यादा बाउंसी पिच है, तो वो जो बाउंस का परिवर्तन आया है उससे बड़ी परेशानी बढ़ गई है इंग्लैंड के खिलाड़ियों की। और टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही हैं और पावर प्ले के 6 ओवर में 39 रन बनाए और 2 खिलाड़ी उनके।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने

0: इसे जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली

0: में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री

सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 9:15 हुए हैं और अब क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल जानने के लिए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: अनुमान लगाना होगा पिच की तासीर को, आप समझ गए। सिवरबर्न कप्तान है, स्वयं फैसला कर सकती हैं कितना आक्रामक उनको होना है, पिच कितना अलाउ कर रही है और कितने रनों की आवश्यकता होगी। भाई एक जवाब तो सीधा साधा है, ज़्यादा से ज़्यादा रन चाहिए होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो आपको बख्शते कहाँ हैं। और बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें तो लूसी हैमिल्टन जो नंबर 11 पर आएंगी, वो अंडर 19 कैप्टन है और नंबर 3 पर खेलती थी, 98 रन 4 विकेट पर। सदरलैंड की तीसरी गेंद 15वें ओवर की और शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर आ गई और फिर घूमकर उल्टा खेला उसको, ऑन साइड में मोड़ दिया उस गेंद को, बाउंड्री लाइन के करीब वो गेंद फील्ड हो रही है, तब तक पलटकर आती है क्या दूसरे रन के लिए। देखिए रफ्तार में लगातार परिवर्तन, केवल 103 क्लिक्स की थी ये गेंद, 99 रन 4 विकेट पर स्कोर है, केवल 1 रन मिला उस गेंद पर। अनुमान लगाया था थोड़ी सी वहां पर समझ होती, पहला रन तेजी से लेती तो शायद हो सकती थी कि वो दूसरे रन के लिए पलट कर आ सकती थी। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट, इस बीच ये गेंद धीमी गेंद थी आगे और क्योंकि गेंद की रफ्तार कम थी संतुलन चूके, लेकिन संतुलन फील्डर का भी चूका और बाउंड्री लाइन से जाकर टकरा गई, 4 रन मिल गए इंग्लैंड।
2: ये लगा आभा का चौका
1: और इसके साथ ही इंग्लैंड के पारी के 100 रन पूरे हुए 14.4 ओवर की बैटिंग करने के बाद, ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला उसको और डाइव लगाते हुए फील्डर के हाथ से लगने के बाद गेंद जाके टकरा गई, वेयर एम वहां पर मौजूद थी। इस बीच ये गेंद सदरलैंड की अगली गेंद, ड्राइव किया और गेंद जा रही है फील्डर के पास, 1 रन लेने से नहीं रुक सकेंगे। चार विकेट पर रन बनाने का औसत अब पहली बार 7 के ऊपर जा रहा है, फील्डर नहीं बल्कि बॉलर भी जिस तरह से फिसली थी उस गेंद को लेने के लिए, हाथ ऊपर किए थे उन्होंने, उनके उंगलियों के पोरों से लगकर गेंद पीछे की तरफ चली गई थी। सदरलैंड का ये ओवर 15वां ओवर है पारी का, 1 गेंद शेष है, फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। वेरम आमतौर पर सब कुछ झोंक देती हैं, डाइव लगाई थी पसर गई थी वहां पर, लेकिन फिर भी उसको हाथ से छिटकी हुई गेंद को अंततः दोबारा प्रयास करने पर भी रोक नहीं सकी। ये अंतिम गेंद थी, इस पर भी सिंगल मिल जाएंगे, 4 सिंगल 2 चौके इस ओवर में और 15वें ओवर की समाप्ति पर 105 चार विकेट पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
5: जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: 15 overs have been completed. Time for England to now go on the charge. One feels the charge of the light brigade will be required. 105 for 4. This partnership worth 35 important runs. But England will be targeting at least 50 runs from these last 5 overs. And that means they'll have to get a move on. Molyneux, 2 overs so far. Comes in and bowls. And the first one's punched away through extra cover. Wide-ish mid-off region. And nicely timed indeed by Sivabrunt to get to 41 now. And England move to 109 for 4. Good start to the over. It's always a good thing for a batter if you can get some runs off the first ball.
2: Ye laga abha ka choka.
6: Molyneux in again, bowls, and this one's short and has been pulled away on the onside. Will this be cut off? Yes, it is. Georgia Wareham is there. Just a single at the deep mid-wicket region. And one more to the total. Freya Kemp on 22 of 13. She has been the one batter who has seemed to have timed the ball well. She's played two or three very delightful shots. One was the flick of the hip. The other one was the whip through the mid-wicket region. Certainly timing it superbly. Here's Molyneux. Balls now to the left-handed. Kemp was off the back foot, not able to beat the fielder at short extra. No run. 110 for 4 it remains in the 16th over now.

0: run rate, just creeping over 7 runs and over. Kemp, high backlift, waits now, bat raised, looking for a forcing shot, gets a thick outside edge. The ball's running down towards the third man boundary. Will it be cut off? Yes, it is. As you'd expect, the Australians don't let too much go past them. 2 more runs to the total. Nevertheless, 112 for 4 with 2 balls of the 16th to come. Molyneux, left arm spin going really wide of the crease. And as a result, that outside edge just flying away very fine. But no pace on the ball to really work with for Kemp. And that's something that Vineet's been consistently telling you. Here's Molyneux, last ball of the over. No, fifth ball of the over. Worked away nicely wide of mid-on for a single by Kemp. And this partnership now is worth 42, 43 with that single. 113 for 4. Last ball of the 16th coming up, and the field changes for the right-handed Siva Brunt. The right-left combination working to England's advantage, but Australia won't be too fussed. Balls to Siva Brunt, who works it away on the onside, paying it with soft hands. They look for the second run. Will they get it? No, there's no chance. A single is all they'll get. Over bowled, 16 gone. 114 for 4.
1: हालांकि कोशिश की है इंग्लैंड के बैटर्स ने कि विकेट के पीछे, और इसीलिए कई बार वो मुसीबत में भी पड़ी और विकेट भी खोया है उन्होंने, क्योंकि उस ओर बाउंड्री शॉर्ट हैं, विकेट के पीछे लगभग 55-58 मीटर की बाउंड्रीज हैं, उसको टारगेट करने की कोशिश की है। लेकिन अब उस जगह ये मैच पहुंच गया है, ये अब पारी पहुंच गई है। यहाँ एक तो दोनों फिनिशर जो अब तक रही हैं इंग्लैंड की, एक तो फ्रेया कैंप उनमें से हैं जो कि मैदान पर पहले से ही मौजूद हैं, और उसके बाद डेनी गिब्सन आएंगी, वो भी आक्रामक शैली से खेल सकती हैं। अगर ये दो खिलाड़ी यहाँ से कुछ आक्रामक स्ट्रोक खेल पाती हैं तो ऑस्ट्रेलिया का भरोसा भरेगा कि इस पिच में स्ट्रोक्स लिए जा सकते हैं। तो ये एक सारा नज़रिया है, समय के साथ पल पल रंग बदलता T20 का खेल है। और 114 4 विकेट पर 16 ओवर के बाद इस फाइनल मुकाबले में लॉर्ड्स क्रिकेट के मुख्यालय में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबला यहाँ चल रहा है। और अब ये देखना, 6 बॉलर्स का इस्तेमाल पहले ही कर चुकी हैं और देखना है कि अब किसके हाथ में वो गेंद देती हैं। गार्थ, किम गार्थ को 3 स्पेलों में इस्तेमाल किया है, एक एक ओवर के बाद भी बॉलर्स को बदला है। लेग स्टंप के बाद पे छिटकती हुई गेंद, क्या वाइड का इशारा आएगा अंपायर का? जी हाँ, वाइड गेंद मिली, 1 रन मिला। इंग्लैंड को चाहिए रन और ज़्यादा से ज़्यादा रन, और ऐसे में ये एक्स्ट्रास काम आएंगे, गेंद भी और मिलेगी और उसको वो खेल पाएंगे। लेंथ अगर आप देखें तो सेमीफाइनल 1-2 में अगर आप देखें तो लेंथ बहुत अलग थी, क्योंकि पिच बिल्कुल अलग थी, उसमें बाउंस ज़्यादा था। इस बीच ये गेंद अंतिम समय में अपने आप को चेक किया, और ये गेंद जिसको कि थोड़ा सा फ्लाइट कर दिया था, देखा गेंद डिप हो रही है, अपने स्ट्रोक को बदला और धीरे से मोड़ भर दिया, उस पर कोई आक्रामक स्ट्रोक नहीं लिया। तो इरादे तो अब मनसूबे तो बन गए हैं कि आक्रामक खेलना है। चौथा ओवर है, अंतिम ओवर है गार्थ का, 10 डॉट बॉल्स हैं उनकी, 14 रन दिए हैं, एक खिलाड़ी को आउट किया। हैमिल्टन का 1 ओवर है, मॉलिन्यू और सदरलैंड का भी 1-1 ओवर बचा है, और वेरम और गार्डनर के 2-2 ओवर शेष रह जाते हैं यहाँ से। ये 17वां ओवर है, अभी केवल 1 गेंद हुई है, बहुत समय ले रहे हैं फील्ड प्लेसमेंट में, मॉलिन्यू ले रही हैं, और समय पर ये ओवर समाप्त नहीं कर पाएंगी। अगर ओवर रेट में पीछे पिछड़ेंगी तो बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी कम मिलेंगे। लेकिन सुखद स्थिति में है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पिच का कुछ पता नहीं है, 1-1 रन रोकना भी चाहेंगे, ये भी एक नज़रिया हो सकता है। फील्ड प्लेसमेंट में तो आप देखेंगे तो दायरे के अंदर खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, 3 ऑन साइड में, 2 ऑफ साइड में, और ये लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रही हैं, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद आ रही है। बैथ मुनी को आप देखें, बड़ी सुरक्षित कीपर हैं, और बहुत बढ़िया कैच आज पकड़ा, और फिर अपील भी की, और फिर रेफरल भी दिलवाया, और उनको विकेट मिला था ऑस्ट्रेलिया को। तब गति पे अगर आप देखें तो सीमर्स बहुत कम रफ्तार की गेंदें करते रहे हैं, 88, 87, 103 फास्टर वन, 99, 92। तो जो प्रकाश और मैं आपको बार बार बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की भी रणनीति धीमी गेंदें करने की, गति का परिवर्तन करने की रही है, अगली गेंद को सीधा खेला है, और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, कोई 10-5 गज अंदर गेंद को फील्ड किया जाए, उससे पहले 1 रन। और सदरलैंड, एनाबेल सदरलैंड वहाँ फील्ड कर रही थी, सोफी मेलानी कप्तान है, एलिसा हिली के बाद ये कप्तान हुई, एलिसा पहले से पहले मैग लेनिंग थी, लंबे समय तक मैग लेनिंग रही, क्या खिलाड़ी थी, फिर संन्यास उन्होंने लिया, हालांकि लीग क्रिकेट

0: और जो चैंपियन जो ट्रॉफीज चलती हैं हर देश में, उसमें वो अच्छा खेलती हैं। इस बीच अगली गेंद पर क्या स्ट्रोक, उल्टा घुमाकर खेलने की प्रक्रिया प्रतीक्षा की रैंप कर दिया, सीमा रेखा के बाहर 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: गेंद हालांकि हवा में थी ऊपर, लेकिन सोच समझ के उसको जैसे स्कूप होता है, लेकिन जिस तरह से गेंद फिसली वो रैंप हो गया और फिर वो वहां पर गई। 51 रन की साझेदारी केवल 37 गेंदों पर। तो अब गियर बदला जा रहा है। अगली गेंद और इसको मोड़ा, स्क्वायर लेग अंपायर के पास से फील्ड की जाएगी। अचानक जो खेल हो रहा है अब आप नजरें नहीं हटा सकते। बैटर्स जो हैं रन जोड़ने में लगे हैं और वो गतिवती और पिच विच का कोई असर नहीं है, वो स्लो स्ट्रोक खेलेंगे क्योंकि वैसे भी पर्याप्त रन बनते नजर नहीं आ रहे हैं। एक आध विकेट और गिर जाएगा तो कोई बात नहीं है। और एक फिनिशर जो कि रोल दिया ही गया है टूर्नामेंट में कि आपको तेजी से रन बनाने हैं। ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉले चूकी विकेट कीपर के ग्लव्स में। 17वां ओवर पूरा हो।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: 18th over about to commence. 122 for 4 is the total. And Kim Garth's bowled out. 4 overs, 1 for 20. Ash Gardner round the wicket bowls, and this one's pulled away. Backward a square on the onside for a single. One more to the total. And that'll bring up Siva Brunt's 50. Back-to-back 50s for the captain. And our statistician Om Prakash Sharma right on the money. 9th 50 in the World Cup, first versus Australia, and 20th in T20 internationals for the England captain. So holding the innings together, Nat Siva Brunt, 123 for 4, and Kemp on 26 on strike now. Looking to play a forcing shot again, no pace to play with at all, and the inside edge results in a squeaky single, 124 for 4. In the middle of the match, once the innings is over, there will be a program from the studios. I'll tell you who you can listen to. This one's bowled, and once again, looking to play the big shot on the onside. Could have been a run-out chance. Shy at the striker's end. The ball runs behind the wicket. And the run is complete and the batter is safe. Rhea Kemp there diving to save her wicket. And just as well, because England would not want to have lost another wicket. Beth Mooney's throw going over the stumps. 124 for 4 now. Siva Brunt on 50. And this one's been pulled away wide of mid-on. She'll get 4 runs. Beating Ellis Perry, who was running around to her left. So welcome boundary for England. 129 for 4 now. And Kemp moves to 31. Short and wide, pulled away very nicely by Kemp, sitting on her back foot. And really timed it well. She has, as I said before, been the one England batter who seemed to have got the measure of the pace of the pitch. She struck some good blows with good timing. Gardner in again, bowls, makes some room, goes inside out on the offside, will get runs, but only a single down towards the wide-ish long off boundary. She was looking for a squarer space, didn't get it. 130 for 4 now, with the last ball of the 18th coming up. 130 for 4, 7.3, just a shade below that is the current run rate. Siva Brunt looking to be aggressive now. Bowls, and she goes back in deep in her crease and pulls it away, but only towards deep mid wicket for a single. 18 overs bowled, 131 for 4.
7: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: तो ये दिलचस्प है कि जब पिच में उतनी रफ्तार ना हो और गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है तो आपकी बैट स्पीड बहुत मायने रखती है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। वो काम कैंप ने बढ़िया किया है और इसीलिए वो अब ज़्यादा तेज़ी से खेल पा रही हैं। स्ट्रोक्स अब इस पिच को देखकर उस हिसाब से अपने आप को ढाल चुकी हैं। सदरलैंड नए ओवर की शुरुआत करते हुए धीमी गेंद और उसमें पूरी ताकत के साथ कलाइयों को घुमाकर मोड़ दिया उसको ऑन साइड में और एक रन ले लिया। सेवा ब्रांट 52 रन बनाकर खेल रही है, 9वां अर्धशतक पूरा हुआ 132 चार विकेट पर। यह 19वां ओवर चल रहा है, इसके बाद एक ओवर रह जाएगा और ज्यादा से ज्यादा रन इंग्लैंड जोड़ना चाहेगा और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से रोकेगा, क्योंकि सेवा ब्रांट काफी देर से खेल रही है क्योंकि बैटिंग काफी ज्यादा शेष रह गई है। अब हर गेंद पर भरपूर प्रहार करने का प्रयास इंग्लैंड का रहेगा, 7.27 का रन बनाने का औसत है। सदरलैंड लगातार धीमी गेंदें कर रही हैं, 114 के आसपास की इस गेंद पर केवल एक सिंगल। सो सिंगल से ऑस्ट्रेलिया को अब कोई परेशानी नहीं होगी इस समय खेल के, तो बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है। सर हिला रहे हैं बैटर, जिस तरह से कैंप हिला रही हैं उसको देख के लगता है कि निराश हैं, करें तो करें क्या इस पिच पर। फील्ड देखने को मिली तो आप थर्ड मैन दायरे के अंदर है, पॉइंट भी दायरे के अंदर है, कवर्स है शॉट वो भी दायरे के अंदर नजर आ रहा है। हवा में झूलती हुई तैरती हुई गेंद को घुमाया लगभग फुल टॉस पे और दूसरे रन के लिए इस बार जा रही हैं। दिशाहीन थ्रो, हाफ पिच पर आया, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाती। ये होता है दबाव बनाने का नतीजा, आसानी के साथ दूसरा रन पूरा हुआ। 3 गेंदें 4 रन अब तक बन चुके हैं, 135 चार विकेट पर। ये 19वें ओवर की 3 गेंदें अब तक हुई हैं। शिवा ब्रांट 54 गेंदों पर 23 गेंदों पर 33 रन बनाकर कैंप खेल रही हैं, लेकिन स्ट्राइक के समय सेवर के पास है। फुल टॉस में घुमाया एक बार फिर, उस बार तो गेंद थोड़ी गैप में जाती हुई भी दिख रही थी, इस बार सीधे फील्डर के पास, एक रन और। हर गेंद पर रन तो बन रहा है लेकिन बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है इंग्लैंड को। 5 चौके लगाए हैं ब्रंट ने अपने 55 रनों में 50 गेंदों पर। विकेट के चारों ओर खेली अवश्य हैं लेकिन इससे ज़्यादा तेज खेलने की क्षमता रखती हैं, इम्प्रोवाइज भी किया है, उल्टे शॉट्स भी खेले हैं, रैंप और स्कूप भी खेले हैं। लगातार दूसरे मैच में उनका अर्धशतक, फिर धीमी गेंद हवा में झूलती हुई मोड़ा, बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही हैं, कोई अवसर नहीं दे रही हैं कि बड़ा स्ट्रोक लगे, क्योंकि रफ्तार कम हो और वो भी इस पिच पर तो स्ट्रोक खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। व्हाइट हॉज सबसे अधिक रन इस टूर्नामेंट में 302, साउथ अफ्रीका की ओपनर टैस्मिन ब्रिट्स 225, सेवा ब्रांट तीसरे नंबर पर आ गई हैं 224। सदरलैंड की अंतिम गेंद और लगातार ब्रॉक होल में टिप्पा खिलाती हुई स्विंग होती हुई धीमी यॉर्कर 110 के की उसको रक्षात्मक रूप से खेला, 19वां ओवर समाप्त हो गया 137 चार विकेट का।
1: राइट देन वी कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द England innings and after this innings before Australia start, free hit 20 is the program you'll be able to listen where our experts Chetan Sharma and Vaishali Mathur, both former cricketers and Mona Parth Sarthi, sport journalist, will be in conversation with Munish Jolly and Gitanjali Soni. So do tune in for that at the end of the England batting innings before Australia start their reply. At the moment the game is poised at 137 for 4 with the last 6 balls to come and England look well below par, but the wicket has been a little bit strange, it's been a little bit funny, and England spinners will certainly, Charlie Dean, Sophie Eccleston, will be looking to try and make the most of it. Molyneux will finish things off with the final over, first one driven to long on, Perry fields one more to the total, and Siva Brunt now on strike. 55 she's got off 51 balls. And 138 for 4. 7.2 the run rate. Fielders now moving around as we come to the closing stages of this game. Now it doesn't matter that the final over has begun. Charlotte Edwards close-up on our TV monitor suggesting that she's got a few worries about where this game might go. Have to wait and see. Now taking her time, Sophie Molyneux, now that the final over has started. Wide of the crease, balls to Siva Brunt, who goes inside out onto the wide-ish mid-off region. And they will come across for the second run. So the England captain trying to get as many as she can. One gets the feeling there might be a close game here if

0: England can pick up a few wickets, but this Australian batting lineup is formidable. 140 for four now. Four balls to come in this England innings. Remember, they were put into bat. Both openers were dismissed for single-digit scores. And then after that, of course, Natsiva Brunt and Alice Capsey gave some momentum. Capsey fell soon thereafter, looking for a reverse sweep. Heather Knight didn't last long at all, looked out of sorts. And since then, Freya Kemp, who's I think been the best batter on view today, has held the innings together along with her captain. Coming down the wicket, flicked away to mid-wicket, just a single. And you can see that when in the final over of the game, the England batters are only able to get singles or twos. That tells you how the ball has dominated the bat. 35 not out Freya Kemp of 25. On strike now. Can she hit a couple of lusty blows? 141 for four. And she's gone straight upfield over the top and manages to get it all the way. Just as I was saying, a few lusty blows. She's hit one straight over the top for six.
1: Ye laga, aabha ka chakka.
0: England now coming into striking distance of the 150. 147 for four. And Kemp moves to 41. She can get a couple more boundaries away in the last two balls. That will be very, very welcome for England. 147 for four. Two balls left in this innings. Siva Brunt 58. Freya Kemp 41. And Molyneux in again. Pulled away from the crease by Kemp, looking for the second run. They're going for it. This could be tight. And a fumble by Molyneux ensures that Siva Brunt is back into the crease in safety. 149 for four. Natsiva Brunt on 58. Freya Kemp will in fact face the final ball of the England innings. This was a sitting run out to be made. Molyneux fumbles the throw. It wasn't a great throw, but nevertheless should have been done. Last ball of the innings, and Freya Kemp tonks it away towards deep wide-ish mid-on. They'll take one, and that's all they're going to get. So England finishing on a round figure of 150 for four, and that means Australia will need 151 if they are to win their seventh title. Time for me to hand over to our hosts of the program, Monish Jolly and Gitanjali Soni.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: मेरी मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: स्वागत है आप सभी का फाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं के पास 151 रनों का टारगेट है। मेरा नाम है मुनीश जॉली, मेरे साथ हैं गीतांजलि सोनी और बहुत छोटे से ब्रेक में हमारे साथ बहुत बड़े दिग्गज पैनलिस्ट यहां जुड़ रहे हैं, चेतन शर्मा जी फॉर्मर इंटरनेशनल, मोना पार्थसारथी और साथ ही साथ गीतांजलि सोनी की बाई तरफ बैठी है। मैं चाहता हूं कि आप उनको इंट्रोड्यूस कराएं। गीतांजलि
7: जी बिल्कुल, वैशाली माथुर है हमारे साथ और जैसे हमारे श्रोता जानते हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला चल रहा है अभी और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी होते हैं ना, जैसे कुछ लोगों के सपोर्टर्स होते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंग्लैंड टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो मैच हुआ है, मैं सबसे पहले चेतन जी से पूछना चाहती हूँ। चेतन, फर्स्ट ऑफ ऑल, योर प्रेडिक्शन वॉज बैंग ऑन द वे यू सेड। आपने कितना स्कोर बताया था बताइए।
8: देखिए, मैंने कहा था कि मैंने जो पूरा वर्ल्ड कप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की बोलिंग इकोनॉमी रेट है, दैट इज 6.2, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा था 140-150 के बीच में, बिकॉज फाइनल्स है। फाइनल्स में ऑब्वियसली इंग्लैंड विल ट्राई द बेस्ट टू रीच 180। अगर आप 180 सोच के जा रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी हुई तो 140-150, बट स्टिल आई थिंक गीतांजलि दे आर 30 रन्स लेस,
7: बिकॉज
8: डेफिनेटली इफ यू बैटिंग फर्स्ट इट शुड बी 180, बट इंग्लैंड के स्पिनर्स में अच्छा दमखम है। लेट्स सी हाउ दे कम बैक एंड विन अ गेम फॉर देयर कंट्री, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ऑस्ट्रेलिया यू नो दे हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइन अप तो 30 रन मुझे अभी भी लगता है कम है इंग्लैंड के
7: सो क्लियरली इंग्लैंड इज देयर एंड गिविंग अ गुड फाइट एंड वी जस्ट हैव टू सी हाउ ऑस्ट्रेलिया फेयर्स नाउ
8: डेफिनेटली यस एंड देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ मैंने उस समय मैच से पहले वाले शो में

0: बात की थी आप एंड ऑफ द डे द बोलर्स विन यू द गेम्स, बैटर्स नेवर विन यू द गेम्स. तो लेट्स होप कि इंग्लैंड के स्पिनर्स में जो दमखम है वो आ जाए, अपना दमखम दिखाएं और ऑस्ट्रेलिया को मात दे, क्योंकि तीन बार फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मात दी है 2012, 2014, 2018. तो लेट्स होप 2026 अलग हो इंग्लैंड के लिए.
1: वैशाली, 150 का स्कोर इंग्लैंड ने बनाया, आप ज्यादा चाह रही होंगी, बट क्या ये फाइटिंग स्कोर है?
2: अभी इंग्लैंड की बारी बाकी है एंड वहाँ उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स भी हैं एंड देखना ये है कि उनके स्पिनर्स क्या कमाल करके दिखाते हैं. okay. वो बहुत जरूरी है एंड 150 स्कोर अगर उनके जिस तरह से उनके पेपर्स पे आंकड़े हैं उनके स्पिनर्स के, तो उस हिसाब से 150 भी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए वो. एंड सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लॉर्ड्स की पिच पे स्पिनर्स का बुक स्पिनर्स के हाथ में जो बॉल है और वो जिस तरीके से टर्न कराएंगे आज, वो कितना मुश्किल होगा बेथ मुनी के लिए खेलना और हमारी पैरी के लिए खेलना, एलिसी पैरी. तो ये दोनों एक बॉल बैटर हैं कि उन पे ज़्यादा इंग्लैंड की आंखें होंगी, नजरें होंगी कि उनको बाहर का रास्ता वो कैसे दिखाए.
1: मोना, एक समय था जब लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम 150 भी ना टच करे, 130 के आसपास, वो एक क्षण आ गया था वहां पे. लेकिन आपको लगता है एक अच्छी रिकवरी की, क्योंकि पापले उतना तो इफेक्टिव नहीं रहा इंग्लैंड के लिए, बट इट वॉज गुड रिकवरी. आखिरी के 10 ओवर में लगभग 90 टच किया उन्होंने.
3: देखिए बिल्कुल, आप जब दो विकेट आपके पांचवें ओवर में गिर गए, पावर प्ले में आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा, उसके बाद जो आपकी कैप्टन है नेट सीवर ब्रेंट, वो उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा है आज. उसके बाद मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि जो सोफी मोलिनू है, जब जॉर्जिया वेरहम इतनी अच्छी गेंदबाजी करी थी, दो ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे, और आपको ये भी पता होगा कि लेग स्पिनर है और नेट को उनके खिलाफ प्रॉब्लम आती है, पिछले 5 T20 इनिंग्स में 3 बार उनको वेरहम ने आउट किया है, उसके बाद उनका कोटा पूरा क्यों नहीं कराया गया, जबकि अनाबेल महंगी साबित हो रही थी, कुछ सोफी बाद में महंगी साबित हुई. तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बॉलिंग में अगर चतुराई से किया होता तो 130, जैसे कि आप कह रहे हैं, 130 के आसपास ही इंग्लैंड का स्कोर रहता. लेकिन आखिर में कुछ फ्रेया कैंप ने अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जो ऊपर के क्रम के बल्लेबाजों को करनी चाहिए थी.
4: चेतन, बहुत ज़्यादा कुछ कंसर्निंग तो लग ही नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से. बहुत सारा ऑलराउंडर्स हैं इनकी टीम में, बैटिंग कोई कंसर्न नहीं है. कुछ ऐसा आपको लगता है कि कंसर्निंग हो सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए?
0: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रखिए, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ये टोटल जो 150 का नजर आ रहा है, इट वुड हैव बीन 180. मतलब फील्डिंग की आप तारीफ करनी होगी, ऑस्ट्रेलियंस ने जिस तरह की फील्डिंग की, कैचेस पकड़े. अब इंग्लैंड को भी बहुत जरूरी है कि 150, मतलब आपको वो रन्स जो 15-20 रन्स कैसे फील्ड में रोकने हैं, मेक द लाइफ मिजरेबल फॉर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, वो तभी हो सकता है अगर आप अच्छी फील्डिंग करेंगे. मतलब उनको 150 बनाने के लिए 170 की बैटिंग करनी होगी, तब वो 150 बनाने के नजदीक पहुंचेंगे. इफ योर फील्डर्स बेसिकली, मैं हर समय कहता हूँ, फील्डर्स अगर अपने गेंदबाजों की मदद कर रहे हैं तभी आप मैचेस जीतेंगे. तो इस समय इंग्लैंड के पास गेंदबाज एंड द फील्डर्स, वो जो ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया अपनी फील्डिंग में, कमाल की फील्डिंग है. एक कैचेस आप देख लीजिए, जैसे कैचेस पकड़े उन्होंने और जैसी फील्डिंग की है, कम से कम 20-25 रन रोके हैं. तो अदरवाइज दिस टोटल वुड हैव बीन 170 ऑड.
4: एंड पिच इज गोइंग टू बिहेव एनी डिफरेंट?
0: आई डोंट थिंक सो. इट्स ए नाइस बैटिंग विकेट, इट्स अप टू द बॉलर्स. इट्स लिटिल स्लो, आपने देखा होगा कुछ गेंदे बिल्कुल नीचे रह गई है, बिल्कुल लो रह गई है. तो जब गेंद नीचे रहती है, इसका मतलब इट विल डेफिनेटली हेल्प द स्पिनर्स. आप थोड़ा धीमा डालिए, गेंद तेज मत डालिए, बल्लेबाज को आने दीजिए गेंद के पास, ना कि आप गेंद को पहुंचाएं बल्लेबाज के पास. ये थोड़ी सी स्ट्रेटजीज हैं व्हिच आई थिंक सो द बोलिंग कोच विल बी टॉकिंग टू द गर्ल्स एंड आई होप. मैं अच्छा मैच देखना चाहता हूं. देखिए, एज ए इंडियन मेरा इंटरेस्ट तो अच्छी क्रिकेट के ऊपर है. हमारी टीम बाहर है तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट ये है कि अच्छी क्रिकेट और फाइनल एक फाइनल की तरह लगे, दैट्स इंपॉर्टेंट.
1: राइट देन, टीम भले ही बाहर हो लेकिन अंपायर वृंदा राठी हैं, जीएस लक्ष्मी मैच रेफरी हैं, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन इंडिया दिखाई देती है. वैशाली, आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट द पार्टनरशिप जो हमने देखा शिवा ब्रांड के बारे में, और एक 85 रनों की मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी साझेदारी मैं कहूँगा कैंप के बीच में हुई. यू थिंक क्या फील्डिंग करने जब आएंगे बोलेंगे चलो हमने एक रिस्पेक्टेबल स्कोर इस पार्टनरशिप के जरिए तो कर दिया, देयर इज सम न्यूज़ फॉर मोटिवेशन?
2: और दोनों की पार्टनरशिप, लेकिन ना स्कीवर का यहाँ पे एक बड़ा रोल है कि जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं ना, उन्होंने कॉन्टिन्यूस स्कोर किया है. अगर हम उनके स्कोर की बात करें ना, तो कोई भी उन्होंने 40 के अंदर कोई स्कोर नहीं किया, उससे अबव ही किया है. तो ये एक है ना बेनिफिट था इंग्लैंड के पास, और इसको थोड़ा सा ऊपर भेज

0: तो मे बी ये स्कोर डबल हो सकता था आज. एंड अगर हम फील्डिंग की बात करें, जैसे मैंने फर्स्ट पहले भी बोला था कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ऑस्ट्रेलिया टीम ने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करके दिखाई है.
1: दोनों क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. गुड टू हियर दैट.
0: एंड इंग्लैंड अगर फील्डिंग ऐसे ही टाइट फील्डिंग करती है एंड स्पिनर उनके टाइट करके बॉल डालते हैं, लाइन टू लेंथ बॉल डालते हैं, तो हो सकता है कि वो ये खिताब अपने नाम भी जीत सकते हैं.
1: लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट बन सकती हैं आज इंग्लैंड, मोना?
2: नहीं, मुझे लगता है कि जब बार बार हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया का जिस तरीके से आप बैटिंग लाइनअप देखिए, जॉर्जिया वॉल से शुरू होता है, बेथ मुनी पर हम बात पहले भी कर चुके हैं, फीबी लिचफील्ड 2022 में डेब्यू किया था उन्होंने और 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट जीता था, पहली बार फाइनल है और वर्ल्ड कप जीतना चाहती हैं, जबरदस्त खिलाड़ी है, उन पर काफी दारोमदार होगा. एलिस पेरी की हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो कितनी कमाल की खिलाड़ी है. एशले गार्डनर जो एशेज सीरीज हुई थी 2025 में दोनों टीमों की, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी. तो काफी बड़ा लंबा चौड़ा डेप्थ है, बहुत गहराई है और ये सारे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत सारा अनुभव है इनके पास. आप एलिस पेरी अकेले दम पर मैच जिताने का मादा रखती है, तो स्कोर वाकई में जो चेतन सर ने कहा 30-35 रन कम रह गया है.
3: चेतन, ऑलवेज वी टॉक अबाउट इट्स अ प्रेशर ऑन प्लेयर्स एंड इट्स अ बिग फाइनल्स, इट्स अ बिग टूर्नामेंट, बट व्हेन यू टॉक अबाउट टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, दे हैव डन सो वेल, दे हैव वन ऑल द मैचेस टिल हियर, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर एक्चुअली प्लेयर्स गो थ्रू?
4: गीतानी, मैं जो बात सोच रहा था ना मेरे दिमाग में, आपने वही क्वेश्चन मेरे से पूछा कि आजकल के जो यंगस्टर्स है ना, आप हमारे समय की क्रिकेट छोड़ दीजिए, आजकल आपको जब आउट होने से डर नहीं लगता ना तो आप निडर हैं. मैंने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इंडिया के खिलाफ देखी, द वे दे एक्चुअली बैटेड, वहां से आपको अनुमान लगता है कि जब आपका डर, वो आउट होने का डर खत्म हो जाए ना, तो एक्सप्लोसिव क्रिकेट आपको नजर आती है. आपने ये अंदर प्लान कर लिया है कि अगर वी आर 23-3 ऑल्सो वी विल गो फॉर इट. मतलब आजकल की जो क्रिकेट है वो इस तरह की क्रिकेट होगी, वो मेंस क्रिकेट है, वुमेन्स क्रिकेट, डजंट मेक अ डिफरेंस, इट्स सेम, द मेंटेलिटी इज सेम. जब ये मेंटेलिटी आपकी हो जाती है तो 150 जो अभी हम पासा था शर्मा मैम बोल रही थी और मैं वही पहले बात कर रहा था कि आपको 150 की जगह 180 चाहिए था, एक कुशन चाहिए था आपके बोलर्स के लिए, बट अब आपके पास 150 है, 151 जीतने के लिए चाहिए. यू हैव टू फाइट ऑन दिस, यू हैव टू रियली फाइट, इट्स अ मैटर. आपने इतना हार्ड वर्क किया पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, दोनों अनबीटन साइड्स पहुंची हैं, इतनी मेहनत करके आप पहुंची हैं और एक मैच की वजह से ट्रॉफी निकल जाएगी हाथ से. यू हैव टू गिव व्हाटएवर यू हैव विद यू, जस्ट गो एंड डू इट.
1: राइट देन, मेरे को ना लग रहा है कि ये शो जब वे बैक 1983 में अगर कोई लंच आवर शो हुआ होगा तो तक क्या बात की होगी वेस्ट इंडीज के बारे में. चेतन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड की वुमेन्स टीम भारतीय क्रिकेट टीम की 1983 की जो टीम थी उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं. बड़ी जल्दी से सोफी एकलस्टोन के बारे में आपसे जानना चाहूंगा. शी इज ऑफकोर्स द टॉप सेकेंड बोलर आईसीसी की रैंकिंग्स में, उनका इम्पैक्ट कितना होगा?
0: उनका इम्पैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि क्योंकि अभी तक देखा गया उनकी इकोनॉमी 6 से ऊपर नहीं गई है अभी तक, एंड वो 6-5 के बीच में ही रही है.
1: हाइट भी उनकी 6 फुट है.
0: बिल्कुल, एंड वो 110+ विकेट्स भी उन्होंने लिए T20 के अंदर. तो ये इम्पैक्ट ना एक बेटर है इंग्लैंड टीम के लिए, एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है. एंड वही आती है जो बीच में जो मिडल ओवर्स होते हैं उसके अंदर आके वो विकेट्स जो चटकाती हैं वो डिफरेंट होता है, और वहाँ पे उनको लाना और वो विकेट्स आज उनको वो चटकाने बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया टीम के, क्योंकि ये वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो ये उनको करना पड़ेगा, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो अपना दिखाना पड़ेगा इस पिच पे आज.
3: And you know, everyone is excited because we want to see great match, as Chetan says. One thing which I really want to ask now, that Australia is very comfortable. It's England's ground and they know that, you know, they have been winning on this particular ground. What are the chances that Australia skips? Is it overconfidence or it might be like they in their mind have decided they are going to do well?
4: देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो अपने जैसे नॉर्मल क्रिकेट खेलती है ये वैसे खेलेगी. आपके पास एज ए बॉलर यू हैव ए चांस बिकॉज दे लव द अटैकिंग क्रिकेट. अगर आप मेरे से इस समय ये पूछेंगे कि फेवरेट्स, मैं अभी भी फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया को मानता हूँ, तो विद 150-60-40 रेशियो इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया आई विल गिव इट.
1: चेतन भैया, बड़ी जल्दी से हमको कमेंटेटर्स को हैंड ओवर करना है. आप फेवरेट तो मार रहे हो लेकिन अंदर की कोई आवाज इंग्लैंड के लिए

0: कुछ कह रही
1: है? I don't know, I have a little doubt about it.
2: You ask me the truth. 180 होता तो मैं जरूर कहता मनीष.
0: मोना बड़ी जल्दी आपसे पूछना चाहूंगा, चार्ली डीन के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बट आपका मन क्या कह रहा है?
3: देखिए मुझे अगर स्कोरबोर्ड पे बहुत बड़ा स्कोर होता ना तो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होता है. एक यहाँ एक एडिशनल प्रेशर तो है ही कि आपको सिर्फ 150 रन डिफेंड करने, तो उससे थोड़ा सा असर तो पड़ेगा.
0: वैशाली बड़ी जल्दी से योर
4: प्रेडिक्शन. मोना
0: ओके, थर्ड अंपायर का रोल प्ले कर दिया. बहुत बहुत शुक्रिया चेतन भाई आपका, मोना पार्थ सारथी आपका, और वैशाली माथुर आपका, और गीतांजलि सोनी के साथ मैं मुनीश जौली यहाँ पे आप सभी लोग से विदा ले रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्री टीम हमारे इंतजार कर रही है अगले 20 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए. आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास. हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाएंगे विनीत गर्ग, एंड द बॉल बाय बॉल कमेंट्री इन इंग्लिश विल बी विद प्रकाश वाकनकर. टू लेजेंडरी फिगर्स अलोंग विद द स्कोर ऑफ भूपेंद्र सिंह भाटी, स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा. ओवर टू द कमेंट्री टीम.
5: स्वागत है आपका लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर. ये दूसरी पारी 2026 के फाइनल मैच की शुरू होने जा रही है. 151 का लक्ष्य है और सातवीं बार ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप जीत लेगा. ये स्थिति यहाँ पर है. इंग्लैंड प्रयास करेगा, उनका अपना मैदान है, यहाँ पर वो कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया को रोकना चाहेंगे. सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कितनी तगड़ी टीम है और मशहूर है कि नॉकआउट में उनके मुकाबले वो बिल्कुल एक तरफा कर देती हैं, इतनी हावी हो जाती हैं विपक्ष पर. तो क्या ऐसा होगा? इस समय सब भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं. एक रोमांच इस समय तो कम से कम है कि 151 रन है. क्या इंग्लैंड शुरू में कुछ अच्छे विकेट्स निकाल लेता है, जल्दी जल्दी कुछ उसकी विकेट उसकी झोली में आ जाते हैं, तो उनके अवसर बन सकते हैं इस मैच पे. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आप यूँ समझ लीजिए नंबर 11 तक बैटिंग करती है, तो इसलिए बैटिंग की कोई कमी है नहीं. पिच में भले ही थोड़ी बहुत दुश्वारी हो कि वो धीमी है, नीची रहती है, लेकिन जिस तरह से स्टंप्स को अटैक किया ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने, कंटिन्यूसली स्टंप्स को प्ले में रखा और बैटर को बाध्य किया कि वो सावधानी से खेलें, और गति का बहुत ही चतुराई के साथ लगातार परिवर्तन करना, इस तरह से करना कि पकड़ में ना आ सके, और उससे मात खाई. इंग्लैंड को शिकस्त दी उन्होंने उस पारी में, उसको बांध के रखा. 7.55 के औसत से 151 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए. जॉर्जिया वॉल और बेथ मूनी दोनों फॉर्म में है, और बेथ मूनी तो जबरदस्त फॉर्म में है, पिछले मैच में भी अच्छी पारी उन्होंने खेली थी. तो उम्मीद ये की जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए प्रकाश.
6: Well, that's what you'd expect. Stranger things have happened, but yes, one does feel this game is Australia's to lose. England, one feels, will almost have to bowl Australia out. I don't think they can defend 20 overs and limit the scoring below 151.
5: पिछले मैच में 61 रन बनाकर नाबाद रही थी बेथ मूनी, विकेटकीपर है, अच्छी कीपिंग की, और कम से कम दो, एक में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनका योगदान रहा. चार्ली डीन ऑफ स्पिनर वो बॉलिंग करने जा रही हैं, और जब नेट सेवर ब्रांड नहीं थी तब उन्होंने कप्तानी भी की इस टूर्नामेंट में, तीन मैचों में, और ये अच्छा मैचअप है. दाएं हाथ की ऑफ स्पिनर, लेकिन इस समय राइट हैंडर सामने है. पहले ही गेंद को ओवर द टॉप खेल दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन.
7: ये लगा आभा का चौका.
6: That's a statement, Vineet. That's the way Australia play, right? Brilliant shot to start off.
5: Half volley on the off stump, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बैट का, अच्छी बैक लिफ्ट, पूरा फॉलो थ्रू, अच्छी फ्लरिश, 4 रन. अगली गेंद वो बहुत खतरनाक ढंग से आई, गेंद ये और उंगली उठी, आराम, खतरनाक ढंग से गेंद मूव हो रही थी, हालांकि रेफरल लिया गया है, ऑन ग्राउंड निर्णय है आउट का, वो मद्देनजर जरूर रखा जाएगा, वो मायने रखा जाएगा, और रेफरल लिया है जबकि 3 सेकंड शेष थे टाइमर पे. और वेस्ट इंडीज की जो अंपायर है जैकलीन, अब इशारा कर रही है हाथों से टीवी बनाकर कि टीवी अंपायर ये सुनिश्चित करे कि भाई ये निर्णय बदलने की आवश्यकता है या नहीं है, क्या वो आउट था या नहीं था. गेंद वास्तव में कुछ ऐसी अप्रत्याशित कर रही थी, चकवा खा गए थे बैटर.
6: किम कॉटन
5: जबकि लेग स्टंप के बाहर गेंद टिप

0: पकाए तो आउट नहीं दिया जा सकता और ऐसा ही हुआ है। अच्छा रेफरल और अंपायर, इतना वरिष्ठ अंपायर है ये जैकलीन, इतनी वरिष्ठ हैं, कम से कम सीनियर मोस्ट अंपायरों में से एक है। एनीवे तो बॉल पिचिंग आउटसाइड द लेग और बच गए वहां पहले विकेट देने से ऑस्ट्रेलिया। बॉल सामना करेंगे अभी इस गेंद की, डीन की गेंद घूम रही, खेला है बहुत विश्वास के साथ नहीं, लेकिन पहले ही पूरा मन बना लिया था उस स्ट्रोक को खेलेंगी, कमिट हो गई थी उस स्ट्रोक के लिए और उसको बखूबी खेल भी दिया, आसानी के साथ एक रन ले लिया, 5 रन जीतने के लिए बनाने हैं, कुल मिलाकर 151 रन। मूनी और वॉल की जोड़ी मैदान पर है, ऑस्ट्रेलिया चाहे तो इत्मीनान से भी खेल सकती है क्योंकि आस्किंग रेट 7.5 के आसपास का है, 5 रन बगैर नुकसान के। अब मूनी के ही लिए डीन ने अपने को मोर्चे पर लगाया है क्योंकि बर्ट मूनी विकेट कीपर लेफ्ट हैंडर है और ये अच्छा मैचअप है ऑफ स्पिनर डीन, जिन्होंने की काफ़ी विकेट लिए हैं, कुल मिला के चार्ली डीन अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में छाई रही हैं, 9 विकेट उनके खाते में इस मैच से पूर्व पहले ही है, टॉप 3 बॉलर्स में उनकी गिनती है। चार्ली डीन ये गेंद और इसमें सिंगल लेना चाहते थे, गेंद को वहीं पास में खेला था, कोई स्ट्रोक में टाइमिंग नहीं था, ज़्यादा दूर गेंद गई नहीं, मुश्किल से 5 गज के फासले पर गेंद जा रही थी, ये देखते हुए पलटकर अपने बॉलिंग मार्क पे वापस आ गई। ऑफ स्पिनर हैं, राउंड विकेट बॉलिंग कर रही हैं लेफ्ट हैंडर को, इस बार क्रीज में जगह का परिवर्तन उन्होंने किया और फास्टर वन कुछ हड़बड़ा कर खेला और आमदा है, हर गेंद पर रन लेना चाहती हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, इधर उधर प्लेस करके सिंगल स्ट्राइक रोटेट करके एक अवसर बनाती ही जा रही हैं और बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई बैटिंग नजर आ रही है। और इस बार गेंद की लंबाई थोड़ी सी कम थी, बैकफुट पे जाके खेला, हालांकि स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा टाइमिंग और प्लेसमेंट नहीं था, 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकलने की कोशिश थी, स्मिथ के हाथ में लगने के बाद गेंद छिटकी लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने उसको उठा लिया और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: बोलिए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: In women's T20 international cricket, batters ranked 1 and 2 are the Australian openers, Beth Mooney and Georgia Vall. They are the ones who've started things off to try and get Australia to their 7th T20 Women's World Cup title. Whether or not that will happen, we'll find out as Lauren Bell gets ready. She's one of England's rising stars. She comes into bowl to the left-handed Mooney. She's in, she bowls, Mooney comes down the wicket, looks to go over the offside, is beaten. The aggression from Australia up front, very visible, trying to put the England bowlers off, not letting them settle into a line and a length. How will England respond? That is the key question. Good delivery, just back of a length. She made some room, did Mooney, looking to drive through the offside expansively. Didn't make any contact, lucky didn't take an edge. Nice bouncy run up to the wicket. Tall figure of Lauren Bell bowls on the pads. Follows Beth Mooney. A shy at the now striker's end. If she'd struck, Georgia Vall might have been short of her ground. But as it turned out, Lauren Bell's throw was off target. Excitement early on in this Australian chase. The two batters, like two cats on a hot tin roof, want to run off every ball. She was a goner, was Georgia. If that ball had hit the stumps, anguish on the face of Lauren Bell. She knew she had a chance there. In comes Bell again. 2 dot balls to start things off. Balls to Mooney. No timing, but she'll get that ball away just in front of short cover. They'll pick up a single. 7 without loss. Alice Capsey there charging in jersey number 28. And a run to Mooney. She goes to 2. Vall is on 5. Australia 7 without loss. Chasing 151. Which I think everybody agrees, at least statistically speaking, is below par.

0: Conversations between the England captain and the bowler now settles, and Mooney waits as Georgia Vohl settles the right-hander, and Bell comes in, balls wide outside the off stump, and the ball's been deflected off the gloves, running down towards the third boundary for four runs. By ye laga abha ka choka. Waiting for the umpire to signal to see whether there was anything on it, whether it's a leg by or whatever. Four runs nevertheless. No ball to boot because it was outside the tram line, the guiding return crease, and so that is not on the playing surface, which means it's a no ball and a free hit, just what Georgia Vohl would have looked for. The batter moved to the offside, but not sufficiently. And in any case, anything that pitches outside the cut surface on the return crease is a no ball. Lauren Bell was thrown away by that movement. Comes in and bowls now. And Vohl pulls handsomely. Question is, did it go all the way or did it drop inside the boundary? Looks like one bounce four. And Australia's innings gaining momentum. Our scorer Bhatti very keen to tell me that this was the 1,000th boundary in the T20 World Cup. Thank you. And 1,000 fours, if that means anything. I think it does to those who are statistically minded. But 16 without loss now. Australia setting the tone for this run chase. Here's Bell again. Comes in and bowls. Down the leg side, will be called wide, I am certain. We'll wait for the umpire's signal to confirm. It is 17 now without loss. Australia creating panic among the England bowlers who haven't been able to settle down. Lauren Bell bowling a no ball, not for the front foot, but for direction. As Vohl waits now for the fifth ball. This is an extended over, this one. And she's pulled it on. George Vohl has dragged this one from outside the off stump, inside edge, smiles on Charlie Dean as well as Lauren Bell's faces, and that is the first wicket. England will need plenty more of that. 17 for one. Vineet.
1: Zarurat nahi thi, lekin jaisa ki aapne kaha ki aamada thi har gain pe bada stroke ya run lene ki, aur gain off stump ke bahar thi, aade bat se khelne ki koshish, andruni sira laga, stump se jaake takra gayi. बेल युवा हैं, अभी 25 बरस की हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं. हड़बड़ा गई थी जिस तरह से उनके ऊपर आक्रामक तेवर दिखा रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बैटर, और उसकी वजह से उनकी लाइन बार बार वो बदल रही थी, लेंथ भी बगड़ी. शॉर्ट गेंद ये देखते हुए कि दो फील्डर बाहर हैं और मिड विकेट बाउंड्री पर कोई है नहीं, शॉर्ट गेंद की और पुल कर दी गई, और एक गेंद तो उनकी पिच से बाहर, जैसा कि प्रकाश ने बताया, टिप्पा खाया, और इसलिए क्योंकि पिच के बाहर टिप्पा खाया वो नो बॉल दी गई थी. लेकिन अच्छी वापसी की है, एक विकेट मिल गया है, ये महत्वपूर्ण है. अब शिकंजा कसा जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगा था कि दोनों छोर से ताबड़तोड़ बैटिंग करने का मन बनाकर मैदान पर उतरा था, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, और कुछ असर नजर भी आया इंग्लैंड की बॉलिंग के ऊपर. वो हड़बड़ाकर इधर उधर गेंद करते रहे, लेंथ भी चूके. मेलिनी काफी अच्छी कप्तानी करती रही हैं पिछली पारी में. इस बीच ये गेंद और इसको सीधा ड्राइव कर दिया, उस ओर कोई फील्डर है ही नहीं. चार रन, स्ट्रेट ड्राइव, फोर रन्स. ये लगा आभा का चौका. बहुत ही इत्मीनान के साथ 21 रन एक विकेट पर दूसरा ओवर भी समाप्त हो गया.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
1: दिलचस्प क्रिकेट. इंग्लैंड चाहेगा झोली में एक विकेट और आ जाए, और ऑस्ट्रेलिया अब दोबारा सोच में लगा होगा कि क्या जिस तरह से शुरुआत की थी उसको बदल कर कुछ धैर्य से काम लिया जाए. कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर उनके सामने है नहीं. जीतने के लिए 151 रन बनाने हैं. बहुत बैटिंग उनके पास है. बेल का निश्चित रूप से हौसला बढ़ेगा, इस बीच गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद को अपना

0: संतुलन नीचे करते हुए फिर खेला, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रही हैं और वो पूरा भी हो जाएगा। 23 रन एक विकेट पर। स्मिथ बॉलिंग में परिवर्तन, चार्ली डीन की जगह लिंसी स्मिथ आई हैं, बाएं हाथ के स्पिन बॉलर हैं। ये मैचअप्स का ज़माना है जनाब, तो जिस तरीके का बैटर है, अगर आपको गेंद बैटर से अलग जा रही है तो खेलने में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दिक्कत होती है, तो ऐसे ही बॉलर को लगाया जाता है जो बैटर से दूर गेंद को निकाले। कुछ गेंदें बिल्कुल ग्रिप हो जाती हैं, नीची भी रहती हैं, और ये बात सही है कि गेंद वाइड थी, लेकिन उन दो कारणों की वजह से वो बोल्ड आउट हुई। बहुत बढ़िया फील्डिंग करने का प्रयास तो था, कलाबाजी खाई, लेकिन रोक नहीं सकेंगी ये चार रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: स्मिथ ने कुछ तेज गेंद की थी, ऑफ स्टंप की सीध पे आती हुई गेंद को स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला, गेंद स्क्वायर लेग और मिड

0: लगता है कि दिक्कत होती है, तो ऐसे ही बॉलर को लगाया जाता है जो बैटर से दूर गेंद को निकाले। कुछ गेंदें बिल्कुल ग्रिप हो जाती हैं, नीची भी रहती हैं, और ये बात सही है कि गेंद वाइड थी, लेकिन उन दो कारणों की वजह से वो बोल्ड आउट हुई। बहुत बढ़िया फील्डिंग करने का प्रयास तो था, कलाबाजी खाई, लेकिन रोक नहीं सकेंगी ये चार रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: स्मिथ ने कुछ तेज गेंद की थी, ऑफ स्टंप की सीध पे आती हुई गेंद को स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला, गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच के क्षेत्र की तरफ गई, पूरी लंबाई में डाइव लगाई, लगभग गेंद तक पहुंच गई थी, एक हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन गेंद रुकी नहीं और बाउंड्री पार हो गई। अगली गेंद स्टंप्स पर, स्टंप पर अटैक कर रही है स्मिथ। स्मिथ अच्छी, लगातार कई बार उन्होंने नई गेंद का भी इस्तेमाल किया है, और यही सही नई रणनीति है इंग्लैंड की, वो भी लगातार बॉलिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया था, एक एक ओवर के बाद भी बॉलर को हटाया गया, थोड़ी सी शॉट नीची थी, पुल करने में थोड़ी दिक्कत तो आई, लेकिन फील्डर है वहां पर, वो उसको उठा लेंगे आसानी के साथ और केवल एक रन मिलेगा। तो ये खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। डैनी थी वहां पर जो फील्ड कर रही थी, बैथ मुनी, 65 रन की आवश्यकता है 1000 वर्ल्ड कप में रन पूरे करने के लिए। एलिस पेरी का क्या कहें, महान क्रिकेटर, इनको पिछले 50 साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। या तो आप एज ए बैटर ही उनको शामिल कर लें या एज ए बॉलर, दोनों कामों को भरपूर अंजाम देती हैं। अगली गेंद को ओवर द टॉप खेला, फील्डर मौजूद है, केवल एक रन मिलेगा। स्ट्रोक के साथ दौड़ते हुए उसे एक रन को पूरा किया। तो कुछ लोग उनको गैरी सोबर्स ऑफ विमेन्स क्रिकेट बुलाते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन 1 विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: Very evidently, Australia looking to maximize the power play. They're going just under 10 runs an over in these 3 overs so far, 29 for 1. Georgia Vall, the batter out, dragging one on. Molyneux waits. It's Phoebe Litchfield who's come in. I don't know why we've been saying Molyneux since the new batter came in. One more to the total. Tucked away around the corner. And total moves up to 30 now. We're in the fourth over. And England dearly would want to pick up not one but at least 2 more wickets quickly in the power play if they want to put some roadblocks. And one gets the feeling Sophie Eccleston will have a big role to play in this game as we wait and watch. Mooney waits now for the next one. Again, just making some room, driving straight past the bowler and the fielder at mid-off. 4 runs.
1: Ye laga abha ka choka.
6: Slower ball that one, and picking it very quickly was the experienced Beth Mooney. What a batter she is. On the move and hitting it with the full face of the bat, elbow up, so absolutely no problem for Mooney. And that means there is 4 more to be had. 34 for 1 now, Australia, and Mooney's moved up to 13, just a little over runner ball. Litchfield is on 6. That first ball boundary certainly helping her. And Lauren Bell with a little bit of a worried look on her face. Young Lauren Bell, as Vineet said, fairly early in her career, but the moment you see Lauren Bell, her face is often a reflection of her emotions. Very, very reflective, very happy when she gets a wicket, and concerned writ large. Amy Jones, the keeper, now getting a helmet and standing up to the stumps to try and prevent Beth Mooney from leaving the crease. Bell goes in, balls to Mooney. Mooney looking to work it on the onside. Struck on the pad, taken by the keeper from behind the stumps. No run possible. 34 for 1. In the middle of the fourth over now. Litchfield on 6. Phoebe Litchfield, another one of the young budding stars of Australian cricket. Very accomplished, has certainly performed well in all formats that she plays for Australia.

0: Yeah. And Lauren Bell with a skip and a jump into her run-up comes in bowls, and Mooney lofts this one high over the top and will get runs and will get four of them. Two, three bounces. The ball rolls into the boundary cushion. So Mooney not letting up. She's up now with that boundary to 17, and the total is 38 for one.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: Remember that England got only 39 runs in their power play. Australia already almost there now, 38 for one in the fourth over. Nicely lofted shot. The ball plugging a little bit in the outfield and then rolling into the cushions. Mooney waits for Bell. Has gone for 9 in this over. Once again, making some room, exposing her stumps and carving the ball out on the offside. And they will come back for just the one run. Mooney goes to 18 and the total now moving up to 39 for one. Only two fielders, remember, during the power play allowed outside the 25-yard circle. And Lauren Bell, having gone for 10 in this over, has now given away 21 runs in her 11 deliveries. Comes in, bowls again. Down the leg side, will be called wide off the keeper's pad. The ball ricochets, but good work towards the short fine region. Umpire now signalling wide. And that's extra runs for Australia. Two more, in fact. So 41 now, the total moves up to 110 runs separate Australia from a seventh Women's T20 World Cup title. What domination. Even though Australia have been missing silverware for a couple of years now, they look like they've got one hand on the trophy already. Bell bowls and nicely worked away in the gap. This will run away and will get to four runs. Yes, it is. Four more.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: Beth Mooney on fire. She's on to 22 and another expensive over has been completed.
2: चार ओवर समाप्त हो गए. एक बात तो फर्क पड़ता है, जब आपके पास कोई बहुत ज्यादा विशाल स्कोर का दबाव ना हो तो फिर आप ज्यादा हौसले के साथ बैटिंग कर सकते हैं. पिच में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है इस पारी में, पहली पारी की तुलना में, और गेंद अभी भी फंस रही है, रुक कर आ रही है इस पिच पर, और इसी वजह से वो पहला विकेट भी मिला था जब वो आउट हुए थे. तो वो इसी तरह से हुई थी कि गेंद टिप्पा खाने के बाद फंस गई, पिच में रुक गई और बाहर थी ऑफ स्टंप के, और उसमें जो मूवमेंट था फिर नीचे भी रह गई थी थोड़ी, और फिर इस तरह से उसको खींच लिया, प्ले डाउन हो गई और स्टंप्स पे जट के टकराई थी गेंद. लेकिन इरादे मजबूत हैं ऑस्ट्रेलिया के और इसीलिए तेज़ी के साथ वो करती हैं. डीन वापस बॉलिंग करने के लिए आ गई हैं. उनकी पहली गेंद को ड्राइव किया. इंग्लैंड भी स्टंप्स को अटैक कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरह, यथासंभव लगातार स्टंप्स की सीध में गेंद करने की कोशिश है. लेकिन युवा लॉरेन बेल कुछ ज़्यादा वाइड इधर उधर की गेंदें करती रही हैं. अगली गेंद को स्वीप कर दिया उस ओर फील्डर. अब पहुंच रहा है, पहुंच से दूर, चार रन.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: ये बात तो माननी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया सोच समझ के उन क्षेत्रों में ही स्ट्रोक खेल रहे हैं जिस ओर फील्डर दूर हैं या हैं ही नहीं. अब वैसे भी दो ही हैं बाउंड्री लाइन के पास. एक मिड विकेट की तरफ हटकर स्क्वायर फील्डर है लेग साइड में, और एक कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, और ये पावर प्ले का फायदा वो उठा रहे हैं. अभी इसमें गेंदे शेष हैं. एज ऑफ द क्रीज से ये गेंद की कट करने का अंदाज, लेकिन फील्डर दायरे के अंदर है, फाइन लेग की बाई तरफ, लेकिन दायरे के अंदर 25 गज के. कोई रन नहीं मिलेगा. दो डॉट बॉल, एक चौका. पांचवा ओवर चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया को बनाने हैं 151 रन, 49 रन एक विकेट पर. अब लेग साइड का फील्डर अब ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर कर दिया गया है. अगली गेंद को एक कदम बाहर निकाला, हाफ वॉली पर उठा कर खेला, और इस बार क्या 6 रन मिल जाएंगे. 6 रन.
1: ये लगा आभा का छक्का.
2: और इस छक्के के साथ ही अर्धशतक पूरा हुआ. पहले 50 रन ऑस्ट्रेलिया की पारी के बहुत तेजी के साथ आए हैं. फीबी लिटफील्ड एक अर्धशतक पहले ही बना चुकी हैं इस टूर्नामेंट में, हालांकि बहुत सारे मैचेस में वो नहीं खेली गई हैं, खिलाई गई हैं. लेकिन हौसले, क्योंकि लक्ष्य ज़्यादा नहीं है, इस तरीके के कुछ स्ट्रोक लगे तो फिर चेहरे लटकते और बुझते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड को. हौसला रखना पड़ेगा. 11 रन के ऊपर से ज़्यादा का इस समय रन रेट है 11.79।

0: अगली गेंद और बहुत लेट के लिए अंतिम समय तक क्रीज की गहराई में लगभग पीछे चली गई थी और लगभग स्टंप्स के करीब पहुंच गई थी और गेंद चली ही तो गई थी स्टंप्स के पास। इस तरह से वो जो स्ट्रोक खेला था 6 रनों के लिए कदमों का इस्तेमाल करके बाहर निकल आना, इस पिच पर मानना पड़ेगा आत्मबल, आत्मविश्वास, संकल्प तीनों चारों को, और नजरिया है क्रिकेट खेलने का अपना अपना नजरिया। एक मिड विकेट और ऑफ साइड में कवर पॉइंट बाउंड्री पर 2 खिलाड़ी बाहर है, बाकी सब दायरे के अंदर। धीमी गेंद कोण बनाती हुई एंगल डिलीवरी मिडिल स्टंप पर, उसको रक्षात्मक रूप से पुश भर कर दिया, आके दबा भर दिया, बैट से टकरा नहीं दिया, 5वां ओवर समाप्त हो गया 55 रन 1 विकेट पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Australia look to be in a real hurry here, Vineet. Maybe they've got an early flight, I don't know, 55-1, dominating England's bowlers. The loss of Georgia Wohl not putting any change whatsoever to their approach, which has been dominating. Lindsay Smith continues, pulled away towards wide-ish long on. They'll take one and the total will move up to 56. Mooney goes to 23, Litchfield on 16. And long faces in the England crowd. There are 3 players in this England team who have already gone through the pain of losing to Australia in a World Cup final. One of them is Heather Knight, Nat Siver-Brunt, and Heather and Danny Wyatt. This one struck her on the pad. There's a big appeal, but umpire Rati is unmoved. I think the ball probably pitching outside the line of leg stump. Looking for the reverse sweep, there was Phoebe Litchfield, making no contact. Lindsay Smith bowling and varying her pace. That's what I think England haven't done. Lauren Bell in particular has bowled pretty much at a standard pace. Smith bowls again. This one's wristily pushed away on the offside. This is turning out to be a decent start to the over. Just the 1 run. Ensuring that they try and keep the Australian batters at bay. 3 balls of the power play to come. Here's Smith bowls again, nicely holding her length back a little bit and defeating the batter in the air, but able to adjust was Litchfield, pushing it away towards wide-ish mid-on for a single, 57-1. Litchfield 17, Mooney on 23. 2 balls of the power play to come, after which England will have some relief in terms of placing a couple of fielders, and I suspect we'll see Eccleston into the attack immediately after that. Short ball pulled away on the onside. There could be runs, 4 runs.
6: ये लगा आभा का चौका.
5: Just a little bit of length, back and short of a length, and pulled away authoritatively by Beth Mooney. What a cricketer. In complete control and really timing it beautifully. 61 now for one. And the last ball of the power play is now coming up. Australia showing how to play the power play. And they've knocked off 61 of the target already. Nicely worked away on the onside for a single. We'll keep the strike. 6 overs bowled. Power play complete. 61-1. Australia in the driver's seat.
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: तो 6 ओवर पूरे हुए, ड्रिंक्स मैदान पर है, खेल रुका हुआ है, खिलाड़ी अपने आप को तरोताजा कर रहे हैं। 4 खिलाड़ी मात्र खोए थे इंग्लैंड ने, लेकिन रन केवल 150 बना पाए थे। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने में इस पिच पे दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं। हौसला

0: बुलंद है उनका और वो आक्रामक शैली से खेल रहे हैं। कई बार अपने स्ट्रोक्स को चेंज करना पड़ा है, चेक करना पड़ा है, क्रीज छोड़ के बाहर भी निकली हैं खिलाड़ी। बैटर्स जो इस तरह से खेलना चाहते हैं वैसे खेल नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद ताबड़तोड़ रन बना दिए। इंग्लैंड ने बनाए थे 39 रन 2 विकेट पर पावर प्ले में, और ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन बनाए हैं 1 विकेट पर, इतना फर्क है। और कहा जाता था कि बैटिंग पहले करें या फील्डिंग पहले करें, क्या सही रहेगा फाइनल्स में। और पहले बैटिंग करने का जब अवसर मिला तो पिच की दुश्वारियों को देखते हुए और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग चेंजेस, गति में परिवर्तन और स्टंप्स को अटैक करने का वो जो उनकी रणनीति थी, उसका मुकाबला ठीक से इंग्लैंड कर नहीं सकी। अपनी इनिंग्स को पेस नहीं कर पाए, क्योंकि प्रकाश केवल 4 विकेट ही गिरे और उसके बाद भी वो पेस को फोर्स नहीं कर पाए। अब यहाँ से ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन के लिए अतिरिक्त रात का समय जुगाड़ना चाहेंगी और इसीलिए कुछ तेजी से खेल रही हैं। स्मरण रहे कि इंग्लैंड में 9:30 बजे से पहले दिन सूर्यास्त नहीं होता, और इसीलिए पहले वनडे क्रिकेट जब शुरू हुआ तो 60 ओवर का खेल हुआ करता था, तो सूर्यास्त का समय लगभग 9:30 के आसपास का है। लंदन में जहाँ के 2 प्रसिद्ध मैदान हैं, ओवल में दोनों सेमीफाइनल हुए और लॉर्ड्स में इस समय फाइनल चल रहा है। 151 रन बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, और 62 रन वो पहले ही बना चुका है 6 ओवर में। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, क्या कर सकता है इंग्लैंड यहाँ से। और सो एकलस्टन की बात कर रहे थे प्रकाश वाकनकर, एकलस्टन ने वो एक शानदार कैच वोल्फर्ट का पकड़ा था जब 43 रन बन चुके थे, विकेट नहीं गिरा था, अपने कद का फायदा उठाकर। उनकी बॉलिंग भी बहुत कारगर साबित हो सकती है निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरह से रन बनाने पे आमदा हैं ऑस्ट्रेलिया, आज अग्नि परीक्षा होगी। बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन कैंप डीन की जगह लगाई गई, चार्ली डीन की जगह कैंप आई हैं और वो बॉलिंग करेंगे। बैटिंग अच्छी की उन्होंने आज, और देखें क्या करती हैं। लेफ्ट हैंडर मूनी सामने हैं उनके, और खेला है गेंद, स्ट्रोक को चेक किया, गेंद हवा में है लेकिन उस ओर फील्डर है कहाँ, दूर से आना पड़ेगा उठाने के लिए, तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही हैं। और रन उन 2 रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 64 रन 1 विकेट पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर। नेट शिवन ब्रंट नॉट आउट रही 53 गेंदों पर 58 रन बनाकर, और फ्रेया कैंप ने 28 गेंदों पर 44 रन बनाए, एकमात्र बैटर जिन्होंने कुछ हौसला दिखाया। कैंप चली, उनकी ये गेंद स्टंप्स के पास से की थी, कलाइयों को ऊपर उठाकर, कोहनी को ऊपर उठाकर मोड़ा भर जगह निकाली और तेजी से दौड़कर दोनों बैटर ने अपने सिरे बदल लिए। ये जो लॉन्च फेज होता है 1 से 6 पावर प्ले में, कितने रन किस टीम ने ज्यादा बनाई है, ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले में औसतन 9.53 का औसत रहा है, इंग्लैंड का भी 8 और 9 के आसपास रहा है। दोनों शीर्ष पर रही हैं पावर प्ले की बैटिंग में, और गेंद की अंतिम समय तक प्रतीक्षा की, पंजों पर ऊपर उछली, कलाइयों को मोड़ दिया, 1 रन मिल जाएगा, 2 फील्डर हैं लेकिन उसको रोके उससे पहले। कैंप की ये गेंद लगभग 92 थी, स्लोअर डिलीवरी करने की कोशिश, स्टंप्स पे कर तो रहे हैं इंग्लैंड, लेकिन देखिए नज़रिए का कितना फ़र्क पड़ता है, आप किस सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं वो फ़र्क पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया का अपना अंदाज है खेल के मैदान पर, चाहे वो क्रिकेट हो, रग्बी हो, फुटबॉल हो, लगातार स्टंप्स के पास आकर गेंद कर रही हैं। बॉटम एज लगी है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, विकेट कीपर के पीछे गेंद गई है, बहुत ही फाइन, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका,
0: वॉवल सीम से की थी, गेंद की रफ्तार कम की थी लेकिन इतनी वाइड थी और इतनी नीचे रह रही थी और उसमें कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं थी, अपने बैट को दबाया उस वाइड गेंद पर, सिरा लगा, बॉटम एज निचला हिस्सा जिसको कहा जाता है, और उसको लगने के बाद लुढ़कती हुई गेंद चली गई लॉर्ड्स के उस ओर जहाँ की वो मीडिया सेंटर है। कैंप चली, 2 गेंदें शेष हैं इस ओवर में, लगातार धीमी गेंदें कर रही हैं, मिडल और लेग स्टंप की इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्शन में कितने रन आज इस पिच पर दोनों ही टीमों ने बनाए हैं। मूनी और लिचफील्ड की ये जोड़ी है, अब तक केवल 1 विकेट गिरा है, लिचफील्ड ने रन बनाए हैं और इस पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 50 किया था इस टूर्नामेंट में, ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में। गेंद की लंबाई कुछ ज़्यादा रख रहे हैं, कोई स्विंग तो है नहीं, नॉट स्विंग के लिए कोई ऐसी रफ्तार भी है, इस बार गेम

0: थोड़ी सी शॉर्ट थी, अपने आप को व्यवस्थित किया, कलाइयों को मोड़ दिया, फुर्ती में नजर आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ताबड़तोड़ आनंद फानन में इस मैच को खत्म कर देना चाहती है, ओवर समाप्त हो गया।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: बोलिए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: ऑस्ट्रेलिया गोइंग अलोंग एट लिटिल ओवर 10 रन्स इन ओवर 72 फॉर 1 एंड हियर इज एकल्सटन। First ball worked away on the onside. They've taken one. Think of the second and change their mind. Litchfield goes to 20. Australia 73 for 1 now. Required run rate just about a run a ball. And if Australia continue like this, unless there is a mini collapse and England can strike now and not just one wicket, I think England need a couple to try and come back into this game. Can Eccleston provide that? Left arm over. Experienced bowler, tossed up, turned out towards the wide-ish mid-on region for a single by Beth Mooney. More fielders in the deep now permitted, of course. Four fielders in the ring, five will be in the deep. Capsey is out at long on. Eccleston bowls and driven on the offside, but straight to Nat Siverbrunt at short mid-wicket. There is no run. 74 for one in the seventh over. Chasing 151 to notch up their seventh title. Australia this time making some room, pulled away fine, swept beautifully. Initially I thought it hadn't been timed, but it was placed and timed well by Litchfield, and that gave her four more runs.
6: Ye laga abha ka chauka.
5: Swept very well indeed. Proactive movement. In fact, that's been a feature of the Australian batting so far, has been the proactive footwork of the Australian batters, achieving angles that otherwise wouldn't be available. And England facing annihilation here. This one's inside out, driven out towards the deep cover boundary. She was looking to go a little bit straighter over extra cover, the ball taking the outside part of the bat, and as a result, just a single. 79 for one. Litchfield 25, Mooney 37, and Australia now require less than a run a ball. And we're not even completed halfway stage yet. Pushed away on the offside nicely by Mooney, in control. Very sensible cricket. 8 overs complete, 80 for 1.
0: ओवर समाप्त हुआ है आठवां, और किसी भी तरीके का इस अनुभवी बॉलर ने गति का परिवर्तन नहीं लिया अपने इस पहले ओवर में। एकलस्टन ने 51-52-53 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ही बॉलिंग की।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: अब बचे हुए रन केवल 5.92 के औसत से ही बनाने, यानी कि 6 से भी कम रन बचे हुए ओवर्स में उस गति से ही बनाने शेष हैं, क्योंकि पहले ही 10 के औसत से वो खेल रही हैं। पहली गेंद और उसको लगभग पुल

0: के अंदाज में बैकफुट पर संतुलित होकर खेल दिया, एक रन मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। 81 रन एक विकेट पर, टारगेट 151 का है। क्रिकेट से संबंधित हर व्यक्ति आपको इस समय लॉर्ड्स में दिख जाएगा, बड़े से बड़ा अधिकारी और छोटे से छोटा फैन, सब लॉर्ड्स की ओर ही तो आ गए हैं। कितना बड़ा अवसर है ये जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो भी लॉर्ड्स के मैदान पर। कंधे का इस्तेमाल किया पटका गेंद को गिब्सन ने, गिब्सन से लगातार बॉलिंग कराई है, नई गेंद का इस्तेमाल भी किया है गिब्सन ने, आज थोड़ा देर से तलब किया है। अब 70 गेंदों पर 70 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया। लिचफील्ड 25-19 गेंदों पर और मुनी ने 39 रन बनाए 26 गेंदों पर। यह 9वां ओवर है जिसकी तीसरी गेंद आ रही है। काफी स्टंप छोड़कर लेग स्टंप की गार्ड लेकर खेल रही है, सीधा ड्राइव किया, ऐसा एक बार को लगा कि टाइम नहीं कर पाई है, फील्डर ने बाउंड्री लाइन के करीब डाइव लगाई, उनसे रुकेगी नहीं, 4 रन्स।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: जैसे अब तो ये एक तरफा मुकाबला हो गया है, जैसा चाह रही हैं वैसा खेल ले रही हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स, और इसको पहले ही समझकर अपने आप को पोजीशन किया और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया बॉलर के पास से 4 रनों के लिए। और इस बार केवल एक प्लेसमेंट बहुत इत्मीनान से चलते हुए एक रन पूरा किया इससे पहले कि गेंद को उठाया जाए। ये 9वां ओवर चल रहा है, 86 रन अब एक विकेट के नुकसान पर। सोफी डिवाइन, टूहू और वरिष्ठ खिलाड़ी कुल मिलाकर 3 रिटायर हुए न्यूजीलैंड के, सूजी बेट्स भी रिटायर हुई, अलविदा कहा इस टूर्नामेंट में। कितने बड़े बड़े कैरियर समाप्त हुए। इस बार बिल्कुल स्टंप्स के करीब आ रही थी गेंद, शॉट तो थी लेकिन स्टंप से इतनी ज्यादा दूर नहीं थी, अपने पैर फैलाकर जगह निकाली उस स्ट्रोक के लिए और फिर खेला उसको ऑफ साइड में। 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद थी, 56, आप समझ सकते हैं एक बाएं हाथ का स्पिनर 53 की मील प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा था, और ये मीडियम पेसर अगर आप देखें तो ये बॉलिंग कर रही है 56 की स्पीड से। घूम कर खेला और रन लेने के लिए बाहर निकल आई, क्या इसमें रन आउट का अवसर होगा, अंपायर से पूछा जा रहा है अंपायर। आमतौर पर इस टूर्नामेंट में हमने देखा है प्रकाश, निर्णय ले लेते हैं तुरंत और बता देती हैं वहीं पर कि आउट है या नहीं है, तीसरे अंपायर के पास नहीं भेजती हैं और लगता है कि विकेट मिल गया है वहां पर। हालांकि निश्चित रूप से ये तय कर लिया जाएगा कि सही है कि या नहीं है, अंपायर का रिव्यू इस समय चल रहा है कि ये रन आउट है या नहीं है। फिसलाया, बैट को आगे बढ़ाया, अच्छी तकनीक, ठीक उस समय जब बैट आगे सरक रहा था, क्या ऊपर हवा में उठा है, क्या ग्लव से वो जो हटाया था वहां पर, बेल्स को जब हटाया था तब तक बैट अंदर पहुंच गया था। मुझे लगता है बैटर के पास एक अवसर बन गया है क्योंकि बैट ऊपर भी नहीं उठा है और जब वो हटाया था, तो भाई तकनीक जब आप अच्छी इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। पहले तो उन्होंने अपनी पूरी पहुंच में बैट आगे बढ़ा दिया और बिल्कुल नीचे घास पर चिपकाते हुए पिच के ऊपर रखते हुए उसको फिसला दिया, उनकी पहुंच बढ़ गई और इसलिए विकेट कीपर के पास जो एक अवसर था वो जाया होता रहा। हालांकि अभी प्रतीक्षा की जा रही है औपचारिक निर्णय की।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: 87 for 1, a close call for a run out, looking for the second run there, but going Australia's way. Lauren Bell back into the attack, replacing Eccleston, pulled away on the onside. That itself, with that single, the total moves to 88 now. And just watching that replay, it's very close thing. Short again from 88 for 1 is where the total has moved, now requiring runs at 5.8 and over. And Australia really in complete control.

0: Slower ball driven between the legs and past the fielder at mid-off. Four runs.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Phoebe Litchfield really peppering that long off straight boundary. It's probably her third or fourth boundary there, using her feet, keeper standing up, but that doesn't deter younger Phoebe Litchfield. And Lauren Bell's been taken to the cleaners, even though she tried to bowl a slower ball there. 92 now for one, needing just 59 more runs. Slower ball, full toss, hammered away, and that will be a one bounce four at
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Back to back boundaries, Litchfield on fire as well. Australia not just dominating, they are destroying England's bowling at the moment. It is unbelievable that in a World Cup final, having done the bowling bit, the Australian batters now just pulverizing the opposition with their super aggressive stroke play, and they have made the England bowling look very, very ordinary indeed. Here's Bell again, bowls, and this time and the stumps, not able to beat the fielder at mid-on, and the total stays 96 for one. 55 runs required for Australia to lay their hands on a seventh title and complete the, or rather stop the drought of silverware, ICC silverware that is, that they have had for the last couple of years. Here's Bell again in bowls to Litchfield, who's wristily driving it to wide-ish mid-on and will steal a single in front of the fielder coming in from there. 97 now for one. Litchfield 39 and Beth Mooney on 41. So these two really taking the attack to England. Great footwork, intent very obvious, not afraid, brave cricket. And as they always say, never judge a pitch till two teams have batted. Australia making this pitch look like a very good batting wicket, while England certainly struggled, and that's credit to Australia's bowlers. Here's Bell. Slower ball, cracked away into the deep cover region for a single by Mooney. She'll go to 42, and that is 10 overs bowled, 98 for one.
2: वोट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: बड़ी बात. जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
5: जीत की ओर कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया. अब सवाल ये नहीं लग रहा सबके जहनों में कि वो जीतेंगे या नहीं, सवाल ये है कि कितनी जल्दी जीतेंगे. तो अब सवाल ये भी है कि अब चैंपियन टीम वही होती है जो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले. और ऐसा नहीं है कि पिच कोई बहुत ज़्यादा बदली है, कई बार अपने को ढालना पड़ा है, इम्प्रोवाइज करना पड़ा है, अंतिम समय में स्ट्रोक को बदलना पड़ा है ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को. डाइव लगाते हुए बॉलर से छिटकी गेंद, अपने फॉलो थ्रू में अपनी बाईं तरफ जाती हुई स्मिथ ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई. एक रन मिल गया ऑस्ट्रेलिया को 99 पर. ये 11वें ओवर की पहली गेंद है. 100 रन पूरे होने जा रहे हैं, जीतने के लिए चाहिए 151, यानी कि अब 59 गेंदों पर मात्र 52 रनों की आवश्यकता है सातवीं बार T20 विश्व कप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को. स्मिथ की गेंद ओवर द विकेट, बिल्कुल स्टंप्स के पास से की थी. अब तो इधर उधर दाएं बाएं चारों तरफ रन बन रहे हैं और 100 रन पूरे हो गए ऑस्ट्रेलिया के. दूसरे गेंद पर ये दूसरा सिंगल, 10.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 100 रन. लिचफील्ड 26 गेंदों पर और मूनी 43 रन पर खेल रही हैं और लगातार अपने दूसरे अर्धशतक की ओर बढ़ रही है. पिछले मैच में 61 बनाए थे उन्होंने. ऑस्ट्रेलिया सभी सोच रहे थे कि जीतेगी, लेकिन इस तरह से इस अंदाज में जीत जाएंगे इसकी कल्पना नहीं की थी, ये देखते हुए कि इंग्लैंड नहीं छोड़ेगा अपने मैदान पर. और हालिया दिनों में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है. ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप रोक तो नहीं सकते. एक और सिंगल मिला है, इत्मीनान

0: 1-800-144-16 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: तो धीरे धीरे मंजिल मकसूद की तरफ कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब स्पष्ट विजेता नजर आ रही है क्योंकि केवल 4.75 के औसत से शेष रन उनको बनाने हैं। 113 एक विकेट पर, कुल 151 चाहिए जीतने के लिए। पहली बार एकलस्टन की फास्टर बॉल देखने को मिली, पहली बार उन्होंने गति परिवर्तन लिया और उस पर बीट भी किया ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंडर को। बहुत ज़्यादा टर्न नहीं था, अच्छा बाउंस उसको मिला। 92 क्लिक्स की वो गेंद थी, नहीं तो 80 के आसपास की वो करती रही हैं। अब यहाँ से ये आप देखें कि कौन प्लेयर ऑफ द मैच हो सकता है। मामला थोड़ा विकट है क्योंकि चार बॉलर्स ने एक एक विकेट लिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, चार ही विकेट गिरे इंग्लैंड के। दो फील्डर्स के बीच में तेजी के साथ दौड़कर, अच्छा तालमेल सूझबूझ के साथ सिंगल दौड़ती हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। और इसके साथ ही मूर्दी का अर्धशतक पूरा हुआ केवल 38 गेंदों पर, 50 रन, नौवा अर्धशतक है उनका विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड के खिलाफ पहला है और 31st विमेन T20 इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं उनका अपना ये है जिसमें उन्होंने ये करके दिखाया है। और इस टूर्नामेंट में मूनी का तीसरा अर्धशतक है। मूनी ने 74 रन बनाए नीदरलैंड्स के खिलाफ, पिछले सेमीफाइनल में 61 रन बनाए ओम जी। तो कुल मिलाकर मूनी ही मुझे लग रही हैं मैन ऑफ द मैच होंगी क्योंकि इन्होंने ही शुरू में बढ़िया बैटिंग करके इस मैच को एक तरफा किया। क्यों, बॉलिंग में कोई एक खिलाड़ी आप चुन नहीं सकते। बैट मूनी 38 गेंदों पे 50 रन बनाकर अपने तमाम अनुभव का लाभ अपनी टीम को देते हुए 7-10-74-0-22-61 ये स्कोर्स रहे हैं। वाइड का इशारा वेस्ट इंडीज के अंपायर द्वारा। अब 46 गेंदों पर मात्र 36 रन की दरकार है। लिचफील्ड पलटकर लेग साइड की फील्ड का मुआयना कर रही है, देख रही है कहां फील्डर है। धीमी गेंद को खेलने की कोशिश, जाके टकराई उनसे गेंद। क्या ये कोई ऐसी बात है, क्योंकि गेंद तो काफी सीधी थी लेकिन किसी तरीके का कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है दोनों ही तरफ की टीमों से। शायद कुछ हाइट कम हो या, लेकिन गई सीधी थी, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग थी। अगली गेंद को कलाइयों के सारे सामने की ओर ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास। अब आतुर हैं इस मैच को खत्म करने के लिए। हालांकि शैली शुरू से ही रही है, मुड़कर जब उसको ऑन साइड में खेलना चाहती थी निश्चित रूप से लेफ्ट हैंडर के ऑफ स्टंप को छोड़कर जा रही थी ये गेंद। सर्कल के अंदर गेंद रुकी नहीं, बाउंड्री पे चली गई, बाएं हाथ से गेंद को उठाया जाए तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही है। ये 13वां ओवर चल रहा है। लिचफील्ड अब अपने अर्धशतक पे 48 रन बनाकर वो खेल रही थी, अब उनके लिए ये अवसर है कि वो अपने अर्धशतक को पहुंच सकें। पार्टनरशिप 100 रन की पूरी हुई है 69 गेंदों पे, कमाल की साझेदारी। ओ बोल्ड कर दिया चार्ली डीन ने, विकेट ले ही तो लिया। और थोड़ा सा विलंब होगा ऑस्ट्रेलिया की जीत में लेकिन वो जो विकेट गिरा है वो बोल्ड साफ कर दिया। लिचफील्ड अपनी अर्धशतक से 2 रन से चूकी, वहां पर 35 गेंदों पर खेल रही थी और ये गेंद को अच्छा फ्लाइट किया था अबव द आई लाइन, उसको डिफ्लेक्ट भर करना चाहती थी और उनके मिडल स्टंप को ले उड़ी और वो गेंद, और इस तरह से ये दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का और 13वां ओवर समाप्त हो गया।
2: Forty-eight is what Phoebe Lichfield got. That partnership just going past 100 runs, 117 now for 2, and I suspect we'll see Ellis Perry coming into bat, unless of course the Australians decide that they want to change in the batting order. 117, Eccleston 2 overs done for 14, and Charlie Dean striking after that early wicket for Lauren Bell, where Georgia Vaughan dragged.

0: are in a hurry to finish this game. The way they're bowling, there's no fight. The stuffing, as they say, has been taken out of England's bowlers. Really, really ordinary bowling effort. I think it's just a question of formality. Now, here's Kemp in again. Two Mooney, who's moved to 62, pulls this one round, doesn't get hold of it, off the pad, over complete, 14 gone, 129 for two.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: शुरू से ही 10 का औसत रखा बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने, और उसका नतीजा यह है 3.67 की अब आस्किंग रेट रह गई है। आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो कितनी 16 वर्षीय बालिकाएं हैं जिनको कि डेब्यू दिया गया है और वो आज बड़े क्रिकेटर बन के तैयार है। न मालूम 15 वर्ष की उम्र का इतना वो क्यों उठाया जा रहा है, इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। सूर्यवंशी हालांकि डेब्यू कर चुके हैं, उनको एक अच्छे गाइड की आवश्यकता है। हर गेंद को सिक्सर नहीं लगाया जा सकता। बड़े खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से, सारे गुण उनमें मौजूद हैं, थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है। 129 दो विकेट पर, ओवर कितने हुए हैं भाटी? 14वां ओवर है, हो चुका है, इसका मतलब ड्रिंक्स मैदान पर हैं, हालांकि हमको नहीं नजर आ रही है। तो खेल तमाम संभावनाओं के साथ शुरू हुआ लॉर्ड्स के इस मैदान पर, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे और बड़ी हसरत के साथ, ऑस्ट्रेलिया पिछली दो बार जीत नहीं सका था। ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ, इंग्लैंड अपने यहाँ कभी हारा नहीं और ऑस्ट्रेलिया को कभी फाइनल में हराया नहीं, लेकिन दोनों ही टीमें विजय रथ पे सवार और परचम लहराती हुई पहुंची, कोई मैच हारी नहीं टूर्नामेंट में, और इसीलिए लगा कि टक्कर का मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा, रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर हो और वो भी नॉकआउट स्टेज में, तो मुकाबले एक तरफे हो जाते हैं। पिच कुछ धीमी कुछ नीची है और अभी भी है, ऐसा नहीं है सेकेंड हाफ में या दूसरी पारी में कुछ बदलाव आया है, लेकिन जब आपके इरादे मजबूत होते हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने को एडजस्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। पिच अभी भी कहीं कहीं बीच बीच में नीची हो जाती है, गेंद ग्रिप करती है, रुक कर आती है। पहले 6 ओवर में 62 रन बना डाले ऑस्ट्रेलिया ने, केवल एक खिलाड़ी को खोया और एक खिलाड़ी और खोया 7-14 के बीच में, और 67 रन और जोड़े उन्होंने। शुरू से मुनी हावी रहे, गेंद बॉलर्स के ऊपर उन्होंने जमदार प्रहार किए और बहुत ही शानदार बैटिंग करके दिखाई एक मुश्किल पिच पर। अगर ऑस्ट्रेलिया ये 151 रन बना लेती है आज, तो ये बेस्ट एवर रन चेज होगी T20 के फाइनल में, T20 के फाइनल में होगी। भारत जब ऑस्ट्रेलिया से खेला तो 171 जो बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को, वो भी रिकॉर्ड था, वो भी रिकॉर्ड चेज थी। लेकिन डीन, चार्ली डीन ऑफ स्पिनर, नए ओवर की शुरुआत करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया, फ्रंट फुट पे स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, 54 मील प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद थी और क्रॉस सीम से अच्छी फिरकी दी थी, कोई ड्रिफ्ट नजर नहीं आया। उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर से हवा है लॉर्ड्स के मैदान पर और इस गेंद को खेला बाहरी मोटे सिरी से लगकर गेंद कवर्स में गई, एक रन बहुत आसानी के साथ ले लिया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने। 130 दो विकेट पर, यह 15वां ओवर हुआ है जिसकी दो गेंदें अब तक हुई हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी हसरत के साथ दर्शक मैदान पर आए और इनमें जो ऑस्ट्रेलियाई समर्थक हैं उनको निश्चित रूप से हर्ष हो रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया दो अवसर गंवा देने के बाद पिछले सालों में अब फिर T20 का वर्ल्ड कप चैंपियन होने जा रहा है। 34 गेंदे 21 रन, स्टंप छोड़कर अलग खड़ी हो गई और फिर उसको ऑफ साइड में खेला, गेंद हवा में थी फील्डर के पास और किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, लेकिन वहां पर गेंद को जब ड्राइव किया था तो एक बार ऐसा लगा कि जैसे कोई कैच की संभावना हो सकती है, लेकिन गेंद को उठाकर रन आउट के लिए थ्रो किया क्योंकि कुछ विलंब के साथ बैटर वहां पहुंच रही थी।
0: काफी भागे।

0: निकल गई थी नॉन स्ट्राइकिंग छोर से अगली गेंद, और ऑफ स्टंप के साथ बैटर वहां पहुंच रही थी। काफी बागे निकल गई थी नॉन स्ट्राइकिंग छोर से अगली गेंद, और ऑफ स्टंप के काफी
1: क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल अभी हम दिल्ली से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11 बजे रात के 11 बजे हैं। कुछ ही क्षणों के बाद हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
2: महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Eccleston, Amy Jones having a word. They're thinking about it. Well, Nat Siver Brunt has gone upstairs, and why not? Because they've got nothing to lose at this stage, taking a review. 140 for two it is, as the third umpire now will review where things have gone. And we'll wait and watch. Here's the replay. This could be tight beneath. It looks like...
1: मैं कहना चाह रही थी एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास है ना. और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे. क्या सुंदर रचना है. आषाढ़ का महीना भी है. मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें.

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नवरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मन पसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना की हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप, राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है। इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल।

0: तुम क्षमा मैं भूल हूं, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए
0: जी
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है,
0: जी
1: तस्वीर
0: हाँ
1: बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार,
0: जी
1: और
0: हाँ
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है, असल में फिल्मकार।
0: जी हाँ बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की है।
1: इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे।

0: की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं, 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस। जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी, एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा। शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है। कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की,
1: जी
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशौरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी
0: जी
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में दून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी
0: जी
1: फिल्म के
0: जी
1: लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था।
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था, और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
1: जी 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालय फिल्म्स की स्थापना की, और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई, और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत। और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है।
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए

0: हकीकत का ये गीत हमने सुना, हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात

0: निशा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज।
1: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कॉम्पिटिशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोताओं, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं चेतन आनंद साहब की, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, और यकीन मानिए उस आवाज को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिल्मकार की आवाज हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा, और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका, और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2,000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
1: कर चले हम सीधा जान तन।

0: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं। इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
1: जयंत जी,
2: जी
1: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
2: अच्छा।
1: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतनानंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या किया था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
3: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो, कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आगे तो दर दर दर दर रोड क्रॉस कर देता था।

0: पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीजें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सेप्ट करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में।
1: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया,
0: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीजें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, छोटी छोटी चीजें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीजें उसने, बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है। स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं।
0: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे, और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में,
0: जी,
1: ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था,
1: जी
0: बहुत ही हिट था उन दिनों, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे,
1: जी हाँ
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे, और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है श्रोताओं। जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा, बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं।
0: जी,
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था,
0: जी
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा। जो आमतौर से लोग बहुत ज्यादा सीख कर गाते हैं, उस
0: जी
1: तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे खत्म करना है,
0: जी
1: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होना, इस तरह बचपन से मुझे काफी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊंगा
0: कामयाब होंगे।
1: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर BCOM तक पढ़ाई की, खींचा तानी करके।
0: अच्छा,
1: घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फला जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नजर नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं। तो मैंने फिर भी काफी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि आप कुछ भी हो, वक्त बर्बाद नहीं करना है,
0: मुंबई चले आना।
1: हाँ। बॉम्बे आने के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे, कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ। यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा, अब भी चलो तुमको अनु मलिक के यहाँ जाना।
0: किसने कहा था?
1: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू।

0: कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो। तो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया
1: अच्छा
0: रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग है फिल्म मर्द के लिए अमिताभ बच्चन।
1: अच्छा
0: तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया तो रिस्पांस इतना अच्छा था, क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और जाकर
1: जिक्र करते
0: हाँ कि अरे फला एक नया लड़का है उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अनु मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचमदा के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
1: अच्छा मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया,
0: नहीं
1: तो
0: इसका
1: कैसे मिला
0: इसका
1: था ये
0: तो
1: मौका?
0: कमाल है। आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और हूं और आगे भी रहूंगा।
1: रहेंगे
0: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं। क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर,
1: जी जी
0: लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशिल लाल नायर की एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बरसी है और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है।
1: अच्छा
0: कि रफी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन, तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कहिए या रफी साहब की चाहत थी क्या थी कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा। मुझे मुन्ना कहते हैं ना, प्रिट नेम है बट मोहम्मद अजीज मेरा नाम है, तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग
1: जी,
0: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है, तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर। इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं क्योंकि रोज का काम है उनका, वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एक तो सन्नाटा छा गया। वो
2: न फनकार तुझसा

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व. गाना जब बनता था ना, जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी. कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया? अच्छा
1: नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या.
0: जी.

0: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को,
1: जी
0: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें हैं, मिला के अमिताभ बच्चन है।
1: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
0: आपको बताओ, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए,
1: जी
0: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया।
1: जी
0: कोई
1: जी
0: जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ
1: क्या
0: पूरा हो
1: बात
0: गया। जी
1: है
0: बिल्कुल।
1: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है, वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था।
0: मैं एक दफा गया गया था बिहार, तो वहां पे कोई एसडी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था,
1: जी
0: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की,
1: अच्छा
0: और तो वहां तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने
1: जी
0: किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहां मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए नए लड़ जाए ये सब,
1: जी जी
0: बिहार का सिचुएशन देखकर
1: जी
0: पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब, जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला, देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो।
1: अच्छा
0: वहाँ गया
1: जी
0: मैं
1: हाँ
0: 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर, और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अदनाए गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को एक किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज दे कहाँ है, और गाने के बोले रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में बताइए।
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था। वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा। इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं, एल्बम 60-70 हैं कवालियों के,
0: जी,
1: नात मनकबत जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी
0: जी हाँ
1: संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है, वो
0: अच्छा
1: सारे हनुमान चालीसा सारा। टाइटल भी आपने सुना होगा,
0: हाँ
1: मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है
0: जी
1: ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं।

0: इतने मुश्किल, पूरा चौपाइयाँ दोहे जो जो थे वो सारे वो सब मैंने गाया।
1: जी
0: मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
1: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए, कौन कौन से नहीं।
0: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए।
1: अच्छा
0: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं,
1: जी,
0: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो इसमें चार सिंगर हैं। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं चार चार पांच पांच गाने एक फिल्म में गाता था।
1: जी
0: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2-2.5 हजार है और 4 हजार के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने,
1: जी जी
0: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10 हजार के ऊपर गाने हैं मेरे,
1: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए हैं?
0: 17 या 18।
1: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
0: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब की रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है। क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते हैं।
0: मगर मनीषा जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस
1: वापस
0: आएंगे
1: आएंगे
0: विविधा का अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को आपके मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

जमाने को दिखाना है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बरसात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।